0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: और आइए आपको जानकारी दे दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे स्टूडियो में उपस्थित होंगी ज्योति आनंद। 6:02 पर फिल्मी सॉन्ग लेकर वो उपस्थित रहेंगी स्टूडियो में। 7:02 पर हाजिर हो जाएंगी रेनु भट्ट फिल्म संगीत लेकर। 8:02 पर ज्योति आनंद एक बार फिर उपस्थित होंगी स्टूडियो में। और 9:02 पर रेनु भट्ट। 10 बजे पूजा आनंद हाजिर होंगी।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
3: म्यूजिक मस्ती।
1: दिन में 11 बजे आकृति कुकरेंद्री हाजिर होंगी स्टूडियो में। और 12 बजे पूजा आनंद हाजिर होंगी एक बार फिर स्टूडियो में।
8: मंगल भवन मंगल हारी
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

प्रातः के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केक की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ट पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अवैध सोना और चांदी ले जा रहे 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी और गोल्फ टेस्ट मैच के 3रे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्ण और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत है आप सभी का। बहुत ही खूबसूरत गीत सजा कर लेकर आया हूँ, आइए आनंद उठाते हैं इस प्यारे से गीत का।

लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आकाशवाणी रेनबो के साथ यहाँ पर हम जुड़ चुके हैं 6:16 कार्यक्रम सुप्रभात, किसके साथ? ज्योति के साथ। जी हाँ, ज्योति आपके साथ है। और बिल्कुल आप सा कोई नहीं, मुझसा कोई नहीं, हम सब यूनिक हैं, हम जैसा कोई कोई नहीं है, मगर बस हमारे नजरिए अलग होते हैं, देखने की जगह अलग होती है। मानते हैं ना? तो बस लाइफ में ऐसे ही हम करते हैं, कभी कभी हम ना अड़ जाते हैं, मैं सही, सामने वाला कहता है नहीं मैं सही, मगर क्या होता है ना कि हम दोनों सही होते हैं, बस हमारे देखने का नजरिया और देखने की जगह अलग होती है। तो आप टेबल के कौन से साइड पे हैं, बात करेंगे आज इसी के बारे में सुप्रभात में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6।

चाय तो अक्सर पी होगी और चाय पे चर्चा भी अक्सर की होगी, की है ना। और कभी कभी वो चर्चा जो होती है ना वो बहस में बदल जाती है और दोनों व्यक्ति कहते हैं कि देखो हम जिस टॉपिक पर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं मैं सही हूँ, मेरा नजरिया सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, मगर सामने वाला कहता है नहीं मैं सही हूँ। और जब ये अनबन में बदल जाती है ना तो चाय का मजा थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो लाइफ में जब हम ऐसे चाय पीते हैं और हम चाहते हैं कि चाय का मजा कभी खराब ना हो तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी बात बोलता है और उस पर अडिग ना हो जाए मगर टेबल की दूसरी तरफ भी देखें। तो कभी कभी चाय का प्याला लेकर एक कुर्सी से दूसरी तरफ आ जाएं ताकि आपको टेबल की दूसरी तरफ क्या नज़रिया है या वहाँ से क्या नज़ारे दिख रहे हैं वो आपको पता लगे। थोड़ी सी गहरी बात है मगर शायद समझ गए हैं आप। तो इसीलिए लाइफ में ना ये ज़रूरी है कि हम दूसरे का नज़रिया भी समझें और सिर्फ अपनी ही बात पे ना अड़े रहें। तो चलिए फिर से चाय का मज़ा लेते हैं। टेबल के जिस भी तरफ हैं चाय का मज़ा लीजिए और दूसरे के विचारों का और दूसरे के ओपिनियन का भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना चाहिए। क्या पता हो सकता है वो इंसान सही कह रहा हो। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप सुप्रभात कार्यक्रम ज्योति के साथ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ऐसा हमें भी अक्सर लगता है ना कि हमें कोई सुन नहीं रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा, जो हम कह रहे हैं, जो हमारा ओपिनियन है, जो हमने जजमेंट तैयार की है वो बिल्कुल सही है। तो कभी कभी हम ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मगर अगर हम टेबल के किस तरफ बैठे हैं, अगर हम ये थोड़ा सा सोचेंगे कि सामने वाला जिस तरफ बैठा है, अच्छा चलो यहाँ तो हमने

अगर देखें शायद वहां से कहानी कुछ और ही दिखाई देगी। जैसे कि एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और हम कहते हैं ये मेहनत नहीं करता है, ये पढ़ने से जी चुराता है, लेकिन शायद वो किसी परेशानी से गुजर रहा हो। कोई इंसान चुप रहता है तो हम कहते हैं इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये बात ही नहीं करता है, शायद वो अपने अंदर की कोई लड़ाई लड़ रहा हो। कोई बहुत ज्यादा हंसता है तो हम कहते हैं कितना खुश मिजाज है, शायद वो अपनी परेशानियां छिपाना सीख चुका है। इसीलिए जिंदगी में हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी जरूरी है कि हम रुक जाएं और पूछें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मुझे भी यही चीज दिखाई देती।

ध्वजा और सामने वाले से पूछे कि आप ठीक हैं, उसे एक गिलास ठंडा पानी दे दें और यकीन मानिए वो भी आपकी तरह शांत हो जाएगा और बात भी करने से बच जाएगी। तो जैसे हमने अपने आपसे सवाल पूछा कि अगर हम उसकी जगह होते तो क्या मुझे भी वही चीज़ दिखाई देती, क्योंकि हमारा नज़रिया हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता है। और यही सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए, जब ज़िंदगी आपके मन के मुताबिक नहीं चल रही होती है तो क्या आप सिर्फ समस्या की तरफ देख रहे हैं या कुछ और उसके पीछे कारण है। तो इसीलिए टेबल के दूसरी तरफ जाकर कोई नया रास्ता भी तलाश रहे हैं, क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए परिस्थितियां बदलना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपना नज़रिया बदल लेंगे ना तो सब चीज़ें काफ़ी ठीक हो सकती हैं, फिक्स हो सकती हैं। तो अगली बार किसी से बहस हो जाए या किसी को जज करने का मन करे या ज़िंदगी से कोई आपको शिकायत हो तो एक पल रुकिएगा और खुद से पूछिएगा कि मैं टेबल के किस तरफ बैठा हूँ। हो सकता है सच आपके सामने नहीं टेबल के दूसरी तरफ बैठा हो। अब मुझे इतना तो पता है कि जब भी आप टेबल पर बैठकर चाय पियेंगे ना तो आपको ये कहानी, ये बातें और ये टॉपिक जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में ज़रूर आएगा और आप फिर से सोचेंगे कि हाँ, इतनी भी बहस करनी ज़रूरी नहीं है और हमेशा ये कहना कि मैं ही सही हूँ ये भी ज़रूरी नहीं है, और कोई थोड़ा कम सही हो सकता है, कोई थोड़ा ज़्यादा सही हो सकता है। नज़रिया है अलग अलग।

आपने चाय बना ली होगी और आप पी भी रहे होंगे और इस बातचीत को, कार्यक्रम सुप्रभात को आप एंजॉय भी कर रहे हैं। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर। ज्योति आपके साथ है, कार्यक्रम सुप्रभात। और इस गाने में कितनी खूबसूरत बात है ना कि कुछ भी सोच लो मगर करने वाला तो जो है ना वो रब ही है, भगवान है, ईश्वर है। और हमारे सोचने से वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लाइफ हमारे कंट्रोल में है नहीं वैसे बिल्कुल भी, इट्स सो अनसर्टेन। तो इसीलिए हम ऐसी ही बातें सोच कर, अपने आप को समझा कर, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा समझदार होकर ही हम खुद को भी शांत रख सकते हैं, सामने वाले को भी शांत रह सकते हैं और इस तरह से हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे। और हमेशा अपनी बात साबित करने से पहले एक बार सामने वाले की जगह खड़े होकर हमें ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत नहीं हैं लेकिन सामने वाला भी गलत नहीं है। तो बस बहस जीतना आसान है लेकिन किसी दूसरे का नज़रिया समझ लेना ये बड़ी जीत है। तो अगली बार जब आप कहने वाले हो ना कि मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो बस थोड़ा सा रुकिए और देखिए कि टेबल के दूसरी तरफ से भी देखा जा सकता है।

अभी बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तारा रम पम पम एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं। 6:55 हो चुके हैं और मैं लूंगी आपसे थोड़ी सी देर के लिए विदा, क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं रेणु भट्ट लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और 8 आपसे मैं मिलूंगी, उसको आगे कंटिन्यू करूंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिक। और बस उसके बाद फिर से आपके साथ रेणु जुड़ेंगी लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आज आपसे कौन मिलने आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। आप तब तक सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, पेश हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाज शास्त्र की पेपर 10 सितंबर को होगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। दिल्ली सरकार ने टीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अवैध सोना और चांदी ले जा रहे दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमेरिकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में क्षमता से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलट जाने से मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में 153 यात्री सवार थे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गोल टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आपके साथ हूँ मैं रेणु भट्ट लेकर आई हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और हम जब घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब चीजें अच्छी होती हैं, होने की तरफ हम प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी चीज आपके साथ होती है ना, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक चीज आपको जरूर देके जाती है, वो है एक्सपीरियंस। और उस चीज का, उस अनुभव का, उस एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ भी नहीं है, यानी कि जो चीज आपके पास है उसका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट तो जरूर है बॉस। और ये प्लस पॉइंट हमें अपने अंदर लेकर आने हैं, और जब आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे ढेर सारी चीजें आपके पास जुड़ जाती हैं, और जब जुड़ जाती है तब इंसान कहलाता है एक्सपीरियंस, अनुभवी। ढेर सारी बातें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन उससे पहले

और अब जब सुबह हो चुकी है और तो उठना तो लाजमी है, अपने अपने काम के लिए निकलना भी ज़रूरी है और उसकी तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम है ना आपको अपडेट रखने के लिए हम आपको बता दें कि आज कौन से व्यक्तित्व को याद करना ज़रूरी है। हम बात करेंगे अमृतलाल नागर जी की, जिनकी आज जयंती है। 17 अगस्त 1916 में गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटक, रेडियो नाटक और रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य, कई तरह के क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और हास्य व्यंग लेखन भी इन्होंने किया। उपन्यासकार के तौर पर इनकी सर्वाधिक ख्याति इन्हें प्राप्त हुई। और अगर जब हम बात करते हैं साहित्य की, वैसे लिखना इज़ नॉट ईजी, बहुत बहुत मुश्किल है। जो भी हम सोचते हैं, अपनी बातों को, अपने भावों को हम लिख कर बता सकें, ये बहुत बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। और जब बात करते हैं बाल साहित्य की और व्यंग्य की, ये एक ऐसी विधा है जिसमें हाथ बहुत आसानी से आजमाया नहीं जा सकता और बहुत गहरी बात व्यंग के माध्यम से चुटीले तरीके से कह देना एक अपने ही तरह की कला है। और हम इनके कुछ रचनाओं की बात करेंगे, साझा करेंगे आपके साथ।

इनकी रचना है मानस का हंस, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, एकदा नैमिषे रणे पीड़िया, और खंजन नयन, चैतन्य महाप्रभु, और जैसे कई इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इन्हें इनको मिले हुए पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियतलाल नेहरू पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, सुधाकर रचत पदक, बटुक प्रसाद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी कृतियों ने हिंदी साहित्य की गरिमा बढ़ाई है और इनके 3 रंगमंचीय नाटक और 25 से अधिक रेडियो फीचर और बहुत सारे निबंध हैं जो अभी तक हम कह सकते हैं कि प्रकाशित नहीं हुए हैं। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही जिंदा दिल था और बहुत ही विनोदी वृत्ति के थे और बहुत ही आराम से सारी चीज़ें कह देते थे। तो इनकी आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं, इन्हें याद करते हैं और इन्हें याद करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे आपको बस एक ही काम करना है, हमारे साथ यूं ही बने रहना है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

और ऐसे ही अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है चेहरे पे स्माइल का रहना। और अब हम आपको बता दें कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, क्या हुआ था आज के दिन ऐसा जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। तो चलिए अब हम जानते हैं। आज ही के दिन सन 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हो गई थी। और आज ही के दिन सन 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करने वाली रेडक्लिफ रेखा को सार्वजनिक किया गया था। सन 2008 में अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। और आज 1909 में महान भारतीय क्रांतिकारी अमर शहीद मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश सरकार ने लंदन में फांसी पर चढ़ाया था। और इस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज इनकी पुण्यतिथि है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे ये। और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए भारत माता के जितने भी शूरवीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उसमें इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। महान देशभक्त तो धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी रहे और आज इनकी पुण्यतिथि है। हम इन्हें नमन करते हैं और हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और जितने भी व्यक्तित्व हम आपके साथ साझा करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि इनसे हम कुछ बातें ऐसी सीखें जो हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएं और हमें एक बेहतर नागरिक बनाने की ओर, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बेहतर इंसान बनने की ओर हमें प्रेरित करें, तो हम अपने अंदर ये चीज़ें लेकर आएँ। तो चलिए आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक, और फिर हम गाने के बाद वापस आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी

0: एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: तो देखिए, आपको बार बार बताया जाता है कि साइबर दुनिया में जब आप जाते हैं, जब आप इसका हिस्सा बन जाते हैं, जैसे आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया अपने फोन पर, आप साइबर वर्ल्ड का हिस्सा हैं, इस वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा हैं, जो आभासी है, जो दिखाई नहीं देती। लेकिन कई बार आपके सामने चीज़ें ऐसी आती हैं जो बिल्कुल रियल लगती हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए ही है और मुझे तो इसी की ज़रूरत थी। लेकिन बाय द टाइम आप उस चीज़ में क्लिक करते हैं या उस चीज़ को ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप एक तरह के ट्रैप में फंसते जाते हैं। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना। आपको बार बार बताया जाता है, कई तरीके से समझाया जाता है कि जितनी भी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं या आपके लिए आ रही हैं, वो हर चीज़ बहुत, कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बस वही बात है कि जो भी चीज़ आपके सामने आए, बहुत अट्रैक्टिव आपको लग रही हो, बिना वजह, बिना मेहनत के आपके सामने अचानक से आ गई, तो वो आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा संयम से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत, अगर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो बहुत अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन आपको सडन कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने ब्रेक हुई है और आपको लगा कि आप फंस गए हैं किसी चीज़ में, आपको बहुत अर्जेंसी हो गई है, ऐसी भी आपको पैनिक नहीं करना है। कोई भी किसी भी तरह के ऐसे झूठे फ़ोन कॉल्स में भी आपको नहीं आना है, आपको ईमेल में भी नहीं फंसना है, आपको मैसेजेस के चक्कर में भी नहीं फंसना है। हर चीज़ को क्रॉस चेक करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ तुरंत आपके पास आ जाए, रुकिए, थमिए, पॉज लीजिए, सोचिए, थोड़ा सोच करके फिर रिएक्ट कीजिए। तुरंत पॉज वाला, रुकने वाला आप जो स्टेप है ना, उसे आप स्किप मत कीजिए, सीधे रिएक्शन मत दीजिए, थोड़ा रुकिए, थमिए, किसी समझदार इंसान से बात करें, दो चार लोगों से बात करके तब किसी चीज़ को आप आगे करें। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR रेणु भट्ट के साथ, और आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक में लेकर आई हूँ सोनू निगम की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे आपके साथ कि आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। मैसेजेस के थ्रू तो आप पहुँचा ही रहे हैं, आप कर सकते हैं हमें मेल। आपको मेल करना है feedback@rainbow.com पर, feedback@rainbow.com पर आपको मेल करना है और बताना है हमको कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। जरूर शेयर करें। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तब भी आप हमसे शेयर कर दीजिए। एक मेल भेजने में आपका क्या जाता है, पर उस मेल से हमारा दिन जरूर अच्छा बन सकता है। तो चलिए, इस जो आदान प्रदान है ना, खुशी को देने वाला, उसको बढ़ाते हैं, गाना सुनते हैं।

और अब हम आपके साथ कुछ और व्यक्तित्व के बारे में बातें साझा करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। और हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक पंडित जसराज की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हमारे देश में शास्त्रीय संगीत कला सदियों से चली आ रही है और इस कला को न केवल मनोरंजन का बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। और एक ऐसी ही आवाज़ थी ख्याति प्राप्त पंडित जसराज जी, जिन्होंने मात्र 3 वर्ष की छोटी सी आयु में कठोर वास्तविकताओं की इस ठंडी दुनिया में अपने दिवंगत पिता से विरासत के रूप में मिले 7 स्वरों के साथ कदम रखा था। इन्हें हम आपको बता दें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। बहुत छोटे थे जब प्रकृति ने इनके सर से पिता का साया छीन लिया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्हें अपने पिताजी से ही मिली थी। उनके बाद परिवार के लालन पालन का भार उनके बड़े भाई यानी कि महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी ने की और ये अपने साथ बालक जसराज को तबला वादक के रूप में अपने साथ ले जाया करते थे। इन्होंने फिल्मों में भी गायन किया है और पहली बार इन्होंने 1966 में आई फिल्म लड़की शहाद्री में अपनी आवाज़ दी थी। हम इन्हें नमन करते हैं और आप सभी के साथ एक और व्यक्तित्व के बारे में बातें साझा करेंगे और उनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है। आप पहचान गए होंगे हम बात कर रहे हैं दशरथ माछी जी की। और ये बिहार के गया में करीब गहलोर गांव के पास एक गरीब मजदूर थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और सिर्फ एक हथौड़ा और छैनी लेकर दशरथ माछी ने अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट कर एक सड़क बना डाली थी। 22 साल लगे थे उन्हें ये कार्य करने में और जब उन्हें वो ये ऐसा कर रहे थे लोगों ने उन्हें बहुत ताने दिए। उन्होंने कहा एक ऐसी चीज़ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसके पीछे एक संकल्प है, एक वाक्य उनके साथ हम कह सकते हैं, दुर्घटना उनके साथ ऐसी हुई जिन्हें जिसकी वजह से वो अंदर तक खिल गए और उन्हें लगा कि ये चीज़ ये कार्य मुझे करना चाहिए। इनकी पत्नी फाल्गुनी अपने पति के लिए खाना ले जाते समय पहाड़ के दर्रे में गिर गई थी और उनका वहाँ पर निधन हो गया। ऐसा कहा गया कि अगर सही समय पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तो शायद वो बच जाती और ये बात दशरथ माझी के मन में घर कर गई और तब उन्होंने संकल्प लिया कि वो अकेले अपने दम पर पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जो उन्होंने किया भी। लेकिन धीरे धीरे शुरू में तो उनको बहुत ताने पड़े लेकिन बाद में लोगों ने उनकी मदद भी की, उनको खाना भी दिया और उनको औजार खरीदने में मदद करी।

आज उनकी भी जन्म पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं। और एक और हम नाम आपके साथ साझा करेंगे, वो है पुलिन बिहारी दास का, महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता प्रेमी थे वो, और इनको भी हम नमन करते हैं और कार्यक्रम में हम आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात, हम कुछ बातें इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की इन्होंने स्थापना की और कई क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके सम्मान में विशेष पदक दिया जाता है जिसका नाम है पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक। और हम इन सभी व्यक्तित्व को नमन करते हुए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपसे कहेंगे कि समय हमारे पास कम जरूर है, क्योंकि कुछ ही पलों में आप स्पोर्ट्स पल्स भी सुनेंगे, लेकिन अभी भी कई बातें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है साथियों। जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे

0: अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: वेलकम बैक। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर जल भराव की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो कहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऐप के थ्रू बहुत ही आराम से ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं नगर निगम के ऐप 311 पर, और साथ ही इनके हेल्पलाइन नंबर 155305 पर भी आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं और पंप की व्यवस्था को लेकर आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपकी जल भराव आपके आसपास ऐसी कुछ समस्या आती है तो उसको आप जरूर पॉइंट आउट करें। और अपने सभी सुनने वालों को हम ये भी बता दें कि पिंक टिकट की सुविधा 31 अगस्त तक जारी रहने वाली है। 1 सितंबर से महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में जो मुफ्त सफर है वो अनिवार्य होगा सहेली कार्ड के माध्यम से। जो पिंक सहेली कार्ड है उसके थ्रू ही आप फ्री में यात्रा कर सकते हैं, अदरवाइज वो जो पिंक कार्ड में पास मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। और मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति, कुछ ही देर में आपसे दोबारा मिलने आऊंगी दिल के तराने गाने नए पुराने में ढेर सारे गीतों के साथ, ट्रैक्स के साथ, जो आपको झूमने पे मजबूर कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स पल्स शिवेंद्र के साथ, और ज्योति आनंद के साथ सुनेंगे आप गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर 8:02 पर। मैं रहूंगी दिल के तराने गाने नए पुराने में 9:02 पर। पूजा आनंद के साथ आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आर 10:02 पर। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हैं हम आपके पास। स्पोर्ट्स पल्स यानी खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से, दिल से, शिद्दत से महसूस करने की हमारी कोशिश का नाम है। और बहुत ज्यादा समय होता नहीं है, कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें और कुछ खिलाड़ियों से अगर बातचीत करवा सकें तो संभवतः हम कामयाब हो जाएं। और प्रयास हमेशा से ही रहता है और खेल का मैदान हमेशा की तरह गतिविधियों से भरा पड़ा है और जीवंत है। तमाम मुकाबले चल रहे हैं, कुछ मुकाबलों का आगाज होने वाला है, कुछ मुकाबले अंजाम तक पहुंच रहे हैं और कुछ मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है साथियों, ग्लोबल लेवल के टूर्नामेंट्स जिनकी शुरुआत हो गई है और या जिनकी शुरुआत हो रही है। पिछले सप्ताह जब हम कार्यक्रम में आपके साथ थे तब हमने जिक्र किया था वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का, जो कि आज से यानी सोमवार के दिन से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है। और भारत में इस साल होने वाला ये दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है बैडमिंटन का। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, आप सभी जानते हैं भारत का सिग्नेचर टूर्नामेंट है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। और उसके बाद अब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। बड़े लंबे अंतराल के बाद भारत में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगमन हुआ है। 2009 में इससे पहले हैदराबाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी और उसके बाद अब दिल्ली में काफी लंबे अरसे के बाद इस टूर्नामेंट की वापसी हो रही है। सबसे प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप नेदरलैंड्स में चल रहा है और यह भी एक संयोग है कि इस बार पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो एक ही साथ एक ही समय पर नेदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। वहां पर भारतीय शुरुआत अच्छी रही है। भारत ने वेल्स को पहले मैच में 3-1 से पराजित किया है और भारतीय महिला टीम चीन की टीम से 2-2 से बराबरी पर खेली है पहला मैच। इनफैक्ट चीन की टीम ओलंपिक मेडलिस्ट है और उस लिहाज से भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी सराहनीय कहा जा सकता है। भारत अब पुरुष वर्ग में इंग्लैंड से खेलने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान से भारत का मुकाबला होगा। भारत ने विश्व कप हॉकी की जब हमने बात की है या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की है, वर्ल्ड कप की बात की है, तो एकमात्र बार 1975 में भारत ने विश्व कप हॉकी का खिताब जीता था। पिछले प्रोग्राम में भी हमने इसका जिक्र किया था। एक साइक्लिकल प्रोग्रेस थी भारतीय हॉकी टीम की उस जमाने में, 1970 के दशक की हम बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड कप में भारतीय टीम मेडल जीतने में कामयाब हुई थी। 1971-1971 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता विश्व कप में, 1973 में भारत ने सिल्वर मेडल जीता और 1975 में भारत ने एकमात्र बार विश्व कप का खिताब जीता था। इस बार भारतीय टीम का आगाज, भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही है और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में भी भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप और हॉकी वर्ल्ड कप की हमने बात की। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका में है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और कुल मिलाकर के जो ये WTC टाइटल है यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक जो साइकिल है, नॉट टाइटल, टाइटल के लिए तो टीमें इस समय जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय टीम को 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसमें से 2 टेस्ट मैच हैं जो श्रीलंका के साथ खेल रही है, 2 टेस्ट मैच उसको इसके अलावा और खेलने हैं और वो बाहर जाकर के खेलने हैं न्यूजीलैंड में, वही न्यूजीलैंड की टीम जिसने भारत को भारत में 3-0 से हराया था टेस्ट सीरीज में। और इसके अलावा 5 टेस्ट मैच भारत खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से अपनी ही सरजमीं पर। तो इसलिए ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है जहां भारत 2 बार फाइनल में पहुंचा और दोनों बार खिताब जीतने में कामयाब नहीं हुआ, उसके लिहाज से ये जो श्रीलंका के साथ भारतीय टीम टेस्ट मैच खेल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भारतीय

0: टीम ने पहले टेस्ट मैच में जो कि ग्वाल में खेला जा रहा है, कल जब खेल समाप्त हुआ था, 116 ओवर की बल्लेबाजी की भारतीय टीम ने 460 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। बारिश की वजह से भी बाधा पड़ी है इस मुकाबले में और समय तो जरूर बर्बाद हुआ है क्योंकि दो दिन में केवल 116 ओवर हो पाए हैं। इसी बात से समझा जा सकता है एक दिन में 90 ओवर स्टिपुलेटेड होते हैं टेस्ट मैचेस के दौरान। और केएल राहुल ने भारतीय टीम की ओर से 82 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने बेहतरीन सेंचुरी मुकम्मल की 167 रन। उनके नाम पर एक यूनिक डिस्टिंक्शन जुड़ गया साथियों, भारत के स्वाधीनता दिवस के दिन शतक जमाने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 15 अगस्त को उन्होंने अपना शतक पूरा किया था। विराट कोहली ने इससे पहले एक कारनामा करके दिखाया था, हालांकि संभवतः अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो शायद वो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में था। और ये दूसरा ही टेस्ट मैच है जो कि 15 अगस्त के दिन भारतीय टीम ने अपने टेस्ट मैचेस के इतिहास में खेला है। 600 टेस्ट मैच भारतीय टीम खेल चुकी है। टेस्ट मैच खेलने के हिसाब से भारतीय टीम अब तीसरे पायदान पर है सबसे ज्यादा जो टेस्ट मैच खेलने वाली टीमें हैं उनमें। तो देवदत्त पडिकल ने 167 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल जो कि कप्तान के तौर पर पहली जीत की तलाश में हैं, इंग्लैंड में उन्होंने पहली बार भारतीय टीम का टेस्ट सीरीज में नेतृत्व किया था, सक्षम नेतृत्व था, बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन था, वो श्रृंखला बराबर रही थी। शुभमन गिल बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, गोल में 16 रन बना करके आउट हुए। ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने अर्धशतकीय पारी खेली, 51 रन बनाए। रविंद्र जडेजा अनुभवी खिलाड़ी 13 रन पर आउट हुए। मानव सुथार ने 24 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 11, कुलदीप यादव ने 12 रन का योगदान दिया। तो भारत ने 460 रन बना लिए हैं और स्थिति तो भारतीय टीम की बेहतर दिख रही है। ध्रुव जुरेल जो कि एक विकेटकीपर बैटर की भूमिका में टीम में आते हैं, उनका क्या कहना था अपनी टीम के प्रदर्शन के बारे में, आइए सुन लेते हैं।
1: प्लान तो था कि जितना हम जल्दी थोड़ा रन बना सकते हैं, प्लान ये नहीं था कि फ्रॉम द बॉल वंस वी आर गोइंग बॉन्कर्स। प्लान ये था कि सेंसिबल क्रिकेट करके कितने रन हम बना सकते हैं और कितनी अच्छी पार्टनरशिप लोअर ऑर्डर के साथ मैं ऋषभ भाई जो भी नीचे बैटिंग कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जितना मैंने देखा है इंडिया में भी देखे हैं, विकेट बहुत जल्दी चेंज होता रहता है और डिपेंड करता है वेदर पे कि वेदर क्या है। कभी कवर्स आ जाते तो मॉइस्चर आ जाता है, कभी सन निकलता है तो ड्राई हो जाता है। हमारा काम है सर, हमें करते रहना है। सेटिस्फेक्शन जब मैच जीत जाएंगे तब ऑलरेडी आ जाएगी।
0: जी हाँ, सेटिस्फेक्शन जब मैच जीत जाएंगे तब और अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा कहना है ध्रुव जुरेल का। वैसे टीम का अभी तक जो भारतीय टीम का प्रदर्शन है गोल में वो तो अच्छा रहा है। अब वो स्पिनर्स का किस तरीके से श्रीलंका स्पिनर्स का सामना करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। देवदत्त पडिकल ने जो 167 रन की पारी खेली उसके बारे में भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक क्या फरमा रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: So happy for him. He actually was waiting for his opportunity. तो जैसे वो वहां पे और यहाँ पे दोनों इनिंग खेला है, it's really encouraging because I feel it's a young team but very promising guys who are waiting for their opportunity. The way Devdutt, when I was in NC also, way he was preparing, he was working on his initial, he was working on a back foot game. When we expect that there will be a turn, we try and work on step out, sweep or back foot game. And I think he has done well, but it's not just preparation now. A lot of credit goes to him.
0: जी हाँ, बहुत तैयारी की है। सुतांशु कोटक कह रहे हैं देवदत्त पडिकल के बारे में और बिल्कुल क्रेडिट तो उनको जाने ही चाहिए जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है। एक और क्रिकेट की खबर बड़ी बेहतरीन और सनसनीखेज अंदाज की खबर है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में खेले गए टेस्ट मैच में हरा दिया है और इतिहास रच दिया है और साथ ही एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। जिस तरीके से हमने बात की देवदत्त पडिकल ने भारत के स्वाधीनता दिवस के दिन शतक जमाया, उसी तरीके का कुछ रिकॉर्ड क्रिकेट की जो रिकॉर्ड की जो किताब है ना उसमें पन्ने बड़े अजीबोगरीब अंदाज में जुड़ते रहते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, यानी सबसे कम टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले और उस लिहाज से वो पहली टीम बन गई है जिसने सबसे कम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। डार्विन में 9 विकेट से हारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाया 198, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए माफ कीजिएगा 198, दूसरी पारी में 284। बांग्लादेश ने पहली पारी में ही 426 रन बना लिए थे और उनको बड़ा आसान सा लक्ष्य रखा था, 57 रन बनाए उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर, 9 विकेट से मैच जीत लिया और बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में ये एक सुनहरा अध्याय कहा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हराना।
3: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में। हमने बात की थी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की और वहां पर भारतीय खिलाड़ी तमाम भारतीय खिलाड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज से इस टूर्नामेंट का

0: आगाज हो रहा है। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार मेडल जीत चुकी है और इस बार भी उन पर निगाहें हैं। इस साल एक खिताब जीता है, जापान ओपन का तो पीवी सिंधु ने खिताब जीता था। सिंगापुर ओपन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी विजेता रहे थे। पिछले दो टूर्नामेंट ये जोड़ी नहीं खेली क्योंकि सात्विक को शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो इंजरी से वापसी कर रहे हैं। सात्विक इस टूर्नामेंट के बारे में, अपने प्रदर्शन, संभावित प्रदर्शन के बारे में और भारत में खेलने के बारे में क्या फरमा रहे हैं, आइए जरा उन्हीं से सुन लेते हैं। ये हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, भारत के डबल्स स्पेशलिस्ट।
1: It's always special playing in front of home crowd. It's not about World Championship. Even India Open, we always loved playing here. Because when we started playing international tournaments, we rarely get a chance to play in India. Before it used to be PBL, so we used to get play in front of our people. But I think this is one more chance in the year. We played India Open here, but we couldn't go to the deepest tournament. But I think this is more special and it will be challenging for us. Obviously, coming back from injury, had a break, then playing World Championship in India, it's quite challenging, but we love taking challenges, so we are really excited for it.
0: Yeah. सात्विक कह रहे हैं वी लव टेकिंग चैलेंजेस, और जाहिर सी बात है खिलाड़ी जब कोर्ट पर उतरते हैं, मैदान पर उतरते हैं, खेल के मैदान पर, प्लेइंग एरिना पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनका सिर्फ एक चीज पीछा करती है, वो है चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करके ही वो पोडियम फिनिश करने में कामयाब होते हैं। भारत की युवा पौध भी इस टूर्नामेंट पे अपनी चुनौती पेश करती हुई नजर आएगी और उसकी एक अहम कड़ी है तन्वी शर्मा और उनके साथ हैं उन्नति हुडा। उन्नति हुडा बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं और उन्होंने हाल के वर्षों में इंटरनेशनल बैडमिंटन सर्किट में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने को लेकर कितनी उत्साहित हैं उन्नति हुडा, आइए उनसे ही सुनते हैं।
2: It's my first World Championships and it's happening in India. I am really excited and looking forward for each match at a time. I prepared well, mentally and physically, the basic skill work and on-court practice.
0: जी हाँ, तो तैयारी अच्छी की है उन्नति हुडा ने बता रही हैं और ऑफ कोर्स एक्साइटेड हैं। तो जैसे हमने कहा था कि चैलेंजेस हर खिलाड़ी उनको ओवरकम करने का प्रयास करता है और उसका लक्ष्य रहता है पोडियम फिनिश करना। एक और खिलाड़ी हैं भारत के जिनका लक्ष्य है पोडियम फिनिश करना और वैसे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोडियम फिनिश कर चुके हैं और वो हैं लक्ष्य सेन, जिन पर पुरुष वर्ग में भारतीय प्रशंसकों की हमेशा निगाहें रहती हैं। लक्ष्य सेन पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जब खेले हैं और अभी जब अपने देश में वो इतना बड़ा प्रीमियर टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं अपने घरेलू दर्शकों के बीच में, पिछले कुछ दिनों से भारतीय खिलाड़ी आईजीआई स्टेडियम में तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे थे, तो लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में अपने संभावित प्रदर्शन के बारे में और पिछले रिकॉर्ड के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जब फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप था मेरा, आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एंड इवन लास्ट के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने खेले, आई थिंक दोज इवन सम ऑफ देम वर गुड, सम ऑफ देम वर मतलब उतने अच्छे नहीं थे, बट आई फील यहाँ पे स्पेशली इंडियन प्लेयर्स को इट गिव्स अस एन एडवांटेज ऑफ द होम क्राउड, और लोग यहाँ पे काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आई थिंक मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये टूर्नामेंट खेलने के लिए, एंड स्पेशली ये इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो यस मैं चाहता हूँ अपना बेस्ट दूं।
0: जी हाँ, जो भारत के खिलाड़ी हैं उनका प्रयास है कि वो अपना बेस्ट दें और लक्ष्य सेन भी उनमें शामिल है। त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएगी। आज अपने मुकाबलों का वो आगाज करेंगे पहले दौर में और पीवी सिंधु जो कि 9th सीडेड हैं वो भी इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करेंगे। साथियों, इस साल भारत में पांच भारतीय खिलाड़ियों ने बीडब्ल्यूएफ सर्किट में टूर्नामेंट जीते हैं। देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स, तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन, पीवी सिंधु ने जापान ओपन, सात्विक चिराग ने सिंगापुर ओपन और अश्मिता चालिहा पिछले सप्ताह ही कोरिया मास्टर्स। तो पीवी सिंधु भारत की ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल जीते हैं साथियों, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और अगर वो छठा पदक इस बार जीत लेती हैं तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल मेडल सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी ने अगर जीते हैं, 2 खिलाड़ियों ने, तो 6 मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट को लेकर के, वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर के क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
3: डेफिनेटली बहुत स्पेशल है क्योंकि इंडिया में हो रहा है, वो एक्साइटमेंट है कि बहुत साल के बाद इंडिया में हो रहा है। आई थिंक 2019 में जीती हूँ, उसके बाद 7th ईयर, सो होपिंग दिस टाइम जापान ओपन वो विन से बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, तो यू नो आई होप आई कीप द सेम कॉन्फिडेंस एंड वही कॉन्फिडेंस से इधर भी आई होप आई डू वेल। लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, इट्स जस्ट दैट मेरे लिए बस 1 मैच एट अ टाइम, होपफुली लेट्स सी। इंडियन क्राउड तो बहुत सपोर्ट मिलने वाला है उनसे, रियली हैप्पी दैट यू नो वी आर प्लेइंग अटेंडिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन इंडिया एंड गेट टू प्ले एट द होम ग्राउंड एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा ज्यादा सपोर्ट भी रहेगा एंड आई होप आई गेट अ मेडल हियर टू।
0: हम भी उम्मीद करेंगे कि पीवी सिंधु अपने पदकों की संख्या में इजाफा करें वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और चलते चलते बर्थडेज का हमारा जो सेगमेंट है थियरी ऑनरी, फ्रांस के खिलाड़ी और दुनिया के महान खिलाड़ियों में शामिल आज अपना बर्थडे मनाते हैं। वासुदेवन भास्करन का भी आज बर्थडे होता है। 18 अगस्त को मंची छिल्ला जो कि कबड्डी के खिलाड़ी है वो अपना बर्थडे मनाते हैं। साथियों अब समय नहीं है तो स्पोर्ट्स पंच में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। फिलहाल शिवेंद्र गुरमती नमस्कार।
4: Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
5: Sports Pulse.
6: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

8 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा आज शुरू हो रही है। यह यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 15 से 19 अगस्त के बीच 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं और आम जनता के बीच मृदा और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मिट्टी और जल संरक्षण के लिए रील प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतिभागी 30 से 60 सेकेंड की इंस्टाग्राम रील अपलोड करके इसमें भाग ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अवैध सोना और चांदी ले जा रहे 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशेनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशेनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में क्षमता से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलट जाने से मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में 153 यात्री सवार थे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गोल्फ टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। तो ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome back. आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर और यही वो जगह है जहां आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है. मंडे का दिन है और आज के दिन हमारा मन पता नहीं हमें क्या क्या कहता है, इतने बहाने बनाता है ना. थोड़ा सा और सो लेते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, हाफ डे कर लेते हैं. क्योंकि दो दिन की छुट्टी के बाद, आराम करने के बाद, अक्सर मंडे को हमारा दिल ऐसा ही कुछ कुछ कहता है. मगर हम मन की नहीं मानेंगे, मन को अपनी करवाएंगे. और मंडे का आज प्यारा सा दिन है और आकाशवाणी रेनबो के साथ हम हैं आपके साथ. और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके लिए बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं मैं, साथ में खूबसूरत से गाने भी. और आज के दिन को अगर हमें कल से बेहतर बनाना है तो उसकी शुरुआत तो हमें आज से अभी से करनी होगी ना. तो बस करिए शुरुआत और आज के मंडे मॉर्निंग को, आज के दिन को और खूबसूरत बनाते हैं आकाशवाणी रेनबो के संग.

गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है. और अगर आपको भी बारिश का इंतज़ार है तो आज हो सकते हैं. और काफ़ी लोगों को बूंदों से बातें करना, बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है. और मगर जब ज़्यादा हो जाती है तो वाटर लॉगिंग होती है और फिर दिक्कत भी होती है. तो हमें दोनों सिचुएशंस में कैसे मैनेज करना है ये हमें पता होना चाहिए. और अगर आज के मौसम की बात करूँ तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में हल्की हल्की सी बारिश भी हो सकती है. और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री रह सकता है और मिनिमम 33 डिग्री. और अभी फिलहाल तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट है, अच्छा है. मौसम में मतलब हवा में इतनी ह्यूमिडिटी अभी फील नहीं हो रही है. जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हो सकता है. और जैसे मैंने कहा कि बारिश की संभावना है कहीं कहीं किसी किसी इलाके में, तो बस तैयार रहिएगा. अगर इंजॉय करना है तो इंजॉय कीजिएगा, और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना खूब ध्यान रखिएगा. आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके लिए दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड. तो बस बने रहिए मेरे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर.

बूंदों से बातें करने में मजा तो बहुत आता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसे कि बारिश आ रही है और आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ कर दिया है और बूंदें पड़ रही हैं और बस पड़ रही हैं और आपको मजा आ रहा है? करके देखिएगा। जैसे मैंने बताया कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, संभावना है, कहीं नहीं हो सकती है, मगर मानसून चल रहा है तो आज नहीं हुई तो कल तो हो ही जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो उमस है वो भी फील हो सकती है, फील होगी हमें। कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी उमस हो जाती है, और मगर ये बूंदों को इंजॉय करने के साथ साथ इन्हीं बूंदों से अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है। यानी कि जब बाहर निकलें तो ऑफकोर्स अपने साथ रेनकोट या आप छाता रख सकते हैं, जो बहुत हैंडी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बैग में आ जाती है, और जब कभी बारिश बहुत तेज़ बरस जाती है तो आपको ही हेल्प होगी। और साथ ही साथ पानी आप उबाल कर पिएं, ये ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। घर का ताज़ा गर्म खाना खाएं, बाहर का ना खाएं, और अपने आसपास पानी ये ना जमा होने दें, और मच्छरों से बचने के सारे उपाय अपनाएं, क्योंकि जितनी बूंदें ये अच्छी लगती हैं चेहरे पर पड़ती हुई, उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें और बीमारियाँ भी लेकर आती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इस खूबसूरत से गाने के बाद आपको बताऊँगी कि अपने आप को आप अपग्रेड कर सकते हैं। एक ही कार्ड से आप काफ़ी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, नोएडा मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, साथ ही साथ NCMC की बसेज में भी। तो वो जानकारी मिलेगी।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग बोलते हैं आपको, आपकी आज की सुबह बहुत अच्छी हो, गुड मॉर्निंग। और आपके मैसेजेस हमेशा जुड़े हैं और एक लिसनर हमारी बता रही हैं कि मैं चाय पी रही हूं आपके साथ। तो बिल्कुल, हम तो यहां पे अभी स्टूडियो में नहीं पी सकते हैं, तो बस इमेजिन कर लीजिए और आप चाय का लुत्फ उठाइए। और आज सुबह हमने काफ़ी अच्छी बातें की थी चाय की चर्चा पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और आपको बता दूं कि अब हमें, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए होती है, मगर हमें पता ही नहीं होता हमें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो 15 अगस्त को आज़ादी के दिन पर ही दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC और नोएडा मेट्रो यानी कि NMRC के सारे मुसाफिरों को सफ़र के लिए 2 कार्स रखने के झंझट से आज़ादी मिल गई है। ये तो आपको पता ही होगा, मगर जिनको नहीं पता है उनके लिए अपडेट है। और अब आप एक ही मेट्रो कार्ड के थ्रू आप यात्रा कर सकते हैं। और NCMC कार्ड लॉन्च किया गया है और पहले दिन ही मेट्रो नोएडा मेट्रो के स्टेशंस पर बहुत ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा मुसाफिरों ने इसे खरीदा। और इस कार्ड से आप एक्वा लाइन पे, ब्लू लाइन पे और देश के अन्य मेट्रो रेल नेटवर्क्स पर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस कार्ड को सफ़र कर सकते हैं।

और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो उसकी सुविधाएं हैं जो एनसीएमसी के द्वारा है, उसमें भी आप भुगतान कर सकते हैं। सो एनसीएमसी तकनीक वाली सिटी बस सेवाओं में भी ये मोबिलिटी कार्ड जो है वो मान्य होगा, और दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले सभी कार्ड्स से भी नोएडा मेट्रो में सफर किया जा सकता है। और अभी तक 88,000 से ज्यादा कार्ड भेजे जा चुके हैं, और दिल्ली मेट्रो के जितने भी स्टेशन हैं उसमें से आप किसी भी स्टेशन पर जाकर 300 रुपये देकर इस एनसीएमसी कार्ड को बनवा सकते हैं। 100 रुपये जो है वो कार्ड के साथ होंगे और 200 रुपये का उसमें टॉप अप होगा, तो 100 रुपीज़ कार्ड के चार्जेस हैं। और उसके बाद इसको लेने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बताना होगा, सही मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं, ताकि उस पर जो OTP आएगा उसको आप बताएंगे और 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपके हाथ में आपका ये नया कार्ड आ जाएगा। और उसको आप मैक्सिमम जो है वो चार्ज करा सकते हैं 2,000 रुपीज़ तक, और मिनिमम 200 रुपीज़ का चार्ज होगा। और ये कार्ड जो है वो 4 साल के लिए वैलिड है, इसके बाद आप इसको चेंज कराना होगा। और जिन भी पैसेंजर्स के पास नोएडा मेट्रो का पुराना वाला कार्ड है वो इसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। और साथ ही जो यात्री हैं उनसे सामान्य टिकट से भी मेट्रो में आप यात्रा कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया गया है 9599030188, जिस पर अगर आप हाई भेजेंगे तो आगे से आपको जानकारी आ जाएगी, आपको जिस स्टेशन से जहां तक की यात्रा करनी है वहां का QR टिकट UPI कार्ड आपको मिल जाएगा, जिससे आप पेमेंट करके उसे हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं, और अच्छी बात है ना कि एक ही कार्ड से आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, क्योंकि एडमिशन टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन है कहाँ सीट मिलेगी, लास्ट चांस है, कौन सी लास्ट डेट्स हैं, तो वह सब बताऊंगी इस गाने के बाद। बस यूं ही बने रहिए मेरे साथ, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में ज्योति के साथ।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और अगर हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बच्चों तक बात पहुंचा दें, क्योंकि हर जगह एडमिशन्स की होड़ लगी है और लास्ट डेट ना निकल जाए। हालांकि कुछ डेट्स एक्सटेंड भी की गई हैं, सो सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में ये अपडेट्स चल रहे हैं, चाहे DU हो, चाहे IPU हो, चाहे IGNOU हो। तो अभी फ़िलहाल आपको बता दूँ कि IPU में 17 कोर्सेज में CUET से के बेस पर दाखिले हो रहे हैं, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET स्कोर के बेसिस पर UG कोर्सेज में अप्लाई करने का मौका अब 18 अगस्त तक कर दिया गया है। यानी कि आज 17 अगस्त है और कल 18 अगस्त तक आपके पास लास्ट चांस है। तो आपने अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, और CUET UG के मेरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा, और इसकी आखिरी तारीख 18 है, 18 अगस्त यानी कि कल। तो जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें और अपनी जो भी ज़रूरी नीड है इसके लिए वो पूरी करें। इसके अलावा DU स्टूडेंट्स जो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके लिए भी अपडेट है। DU ने खासतौर पर उन CBSE स्टूडेंट्स को मौका दिया है जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम्स दिए थे और हाल ही में उनके रिजल्ट आए हैं, और ये स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले DU ने इन स्टूडेंट्स को मिड एंट्री के जरिए जो है वो एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने का मौका दिया था, मगर CBSE के जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े लेट आए, इस वजह से कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया था। तो अब आप इसके लिए भी कर सकते हैं, आपको ये मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा IGNOU की भी एक और अपडेट है जो बताऊंगी आपको इस गाने के बाद। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में है ज्योति आपके साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो पर ज्योति को गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। और एक और काम की खबर जो आपको सुननी है वो ये है कि इग्नू, जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अब आप सिर्फ एक साल में MA कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स डिग्री जो पहले दो साल में करनी होती थी वो आप एक साल में कर सकते हैं। मगर इसके हाँ ऑफकोर्स कुछ कंडीशन हैं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत इग्नू ने इस सेशन के लिए यानी कि 2026 के सेशन के लिए एक वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू दिया है। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, जैसे कि इससे पहले आपका जो UG प्रोग्राम है ना, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो चार साल का होना चाहिए, जिसमें आपका ऑनर्स या रिसर्च के साथ आपने पूरा किया होना चाहिए। तो अगर आपके पास तीन साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपको MA पूरा करने में दो साल लगेंगे, मगर अगर आपने चार साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है, जिसे FYUP कहते हैं, 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आपने वो किया है तो आप मास्टर्स जो आपकी है वो एक साल में कर सकते हैं। और नौ विषय हैं जिसमें ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये एक साल का कोर्स है जिसमें कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA उर्दू और MA संस्कृत शामिल हैं, और MCOM में भी ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको अप्लाई करने से पहले आपको आपके पास अपार ID होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको सब्जेक्ट्स भी बता दिए, तो कंडीशन आपको बता दी है। अगर अपनी मास्टर्स आप पूरे करना चाहते हैं एक साल में, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने चार साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है, और अब उसमें आपकी जो मास्टर्स है वो एक साल की होगी। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप ज्योति के साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। एक और खूबसूरत गाना आपके लिए आ रहा है।

दिल्ली में अगर स्मार्टली ट्रैवल करना है तो कुछ स्मार्ट चॉइसेस तो करनी पड़ेंगी। और दिल्ली की महिलाओं के लिए जो बड़ी राहत देते हुए डीटीसी ने और हमारी दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसेस और क्लस्टर बसेस में जो मुफ्त सफ़र करते थे उसके लिए जो आपको वो एक कागजी पिंक टिकट, गुलाबी टिकट जिसे कहते हैं, उसकी व्यवस्था को 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाना था, लेकिन इसकी समय सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाया है ताकि आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो अब आप जो नए नियम हैं, जो नए रूल्स हैं, वो आप जान लीजिए। ये फीमेल्स के लिए जानना जरूरी है क्योंकि उन्हीं के काम आता है। तो पहले आप 31 अगस्त 2026 तक पहले की तरह कागजी पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा आपकी जारी रहेगी, मगर उसके बाद नहीं। और स्मार्ट कार्ड की जो अनिवार्यता है वो 1 सितंबर 2026 से बसों में मुफ्त सफर करने का जो लाभ है उसको लेने के लिए आपको पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना आपका अनिवार्य होगा। और 1 सितंबर से यदि किसी महिला यात्री के पास ये वैलिड स्मार्ट कार्ड नहीं होगा तो उन्हें सामान्य किराया देकर टिकट खरीदना होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो सफर है वो यूं ही स्मूथ और स्मार्ट रहे। और इस डिजिटल कार्ड को बनवाने के लिए आपको दिल्ली का रेजिडेंट होना जरूरी है और उसके लिए आपको आपका प्रमाण पत्र देना होगा जैसे कि आधार कार्ड। और दिल्ली में रहने वाले 12 वर्ष और उससे ज्यादा आयु की सभी महिलाएं इसके लिए वैलिड हैं, मतलब पात्र हैं और आप इसको बनवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा और ये डेट्स नोट कर लीजिए क्योंकि इन डेट्स के बाद ये आपका जो कार्ड है और ये पिंक टिकट है ये वैलिड नहीं रहेगी।

ये जो हमारे हाथों में मोबाइल है ना, ये हमें कितना प्यारा है ना, मगर इसको टाइम टाइम पर आप क्लीन करते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे हम अपनी फिंगर्स टच करते हैं, हाथ टच करते हैं, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ टाइडी नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने फोन को टाइम टाइम पर क्लीन करते रहें, क्योंकि ये हमारा ऐसा साथी बन चुका है। साथ ही साथ जितने फायदे स्मार्टफोन के हैं, उतने ही ज्यादा हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकते हैं, और आजकल तो साइबर जालसाज अलग अलग तरीके और बहाने ढूंढते हैं। तो एक किस्सा मेरे पड़ोसियों के साथ हुआ, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि एक ऐसे ओल्ड कपल थे, और उन्हें स्मार्टफोन ज्यादा उन्हें नहीं पता कि किस चीज पे क्लिक करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसे ही साइबर फ्रॉड ने बैंक और IGL गैस कंपनी का कर्मचारी बनकर उनसे काफी ज्यादा लाखों का उनका नुकसान हो गया है, क्योंकि उनको एक लिंक आया था, APK लिंक, उस पर उन्होंने क्लिक किया। तो अपने घर वालों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आसपास वाले लोगों को ये जरूर जागरूक करें कि इस तरह से किसी भी अननोन सोर्स से आए हुए लिंक पर आप क्लिक ना करें। और साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपके फ़ोन पे OTP आता है, वो आप शेयर कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अलर्ट रहें, अवेयर रहें। बस मेरा काम था आपको याद दिलाना। तो आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, तो कीप टेलिंग देम और उनको ये जागरूक करते रहें। मैं चलती हूँ अभी, फिलहाल आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर, क्योंकि रेणु आ चुकी हैं स्टूडियो में लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने, सबके साथ आगे का सफर चलते हैं।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालय की लगभग 18,66,000 करोड़ की रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। झारखंड में जीपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 24वें दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। भारत कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक से पहले आज पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। पूंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया गया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अवैध सोना और चांदी ले जा रहे 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमेरिकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू होगी। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गोल्ड टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। ये थे इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट, दिल के तराने गाने नए पुराने में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे डांसिंग नंबर्स जो आपको थिरकने पर मजबूर करते हैं, जो कुछ ऐसे समय में पुराने गाने जो आपके दिल और दिमाग में तो हैं पर हो सकता है कहीं पर वो यादों की धूल पड़ गई हो उनमें, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि जब आप उन्हें सुने तो आप समय में पीछे जाएं और उन सभी मेमोरीज का आप ताज़ा करें, इंजॉय करें, उसे दोबारा जिए। आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक के साथ शुरुआत करें, लेकिन हाँ बीच में तीन रेट्रो गानों का तड़का जरूर लगेगा, तो आप बस हमारे साथ यूं ही बने रहें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर दिल के तराने गाने नए पुराने।

0: देखिए, तुम जितना भी गजब का हो उसे और गजब का बना सकते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके. एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स बने ही हमारे लिए. जब हम सड़क पे निकले अपनी गाड़ी पर और स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि हम सड़क पर वाहन अच्छे से चलाएं. अच्छा, वाहन अच्छे से चलाना तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जितने भी लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं ना, रोड क्रॉस करते समय भी उतनी ही गंभीरता से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. हाथ दिखाकर किसी भी गाड़ी को रोक करके हम ये सोचे कि हम रोड क्रॉस कर लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. तो जब आपको सही समय मिले रोड क्रॉस करने का, जब ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो और ट्रैफिक ना हो, तब आप जाएं. लेकिन एकदम से आप रोड पर चले गए, कहीं पर से भी आप आ गए और आपने हाथ दिखाया, चलते गाड़ी को रुकने में समय लगता है, तो वहां पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसा आप कुछ ना करें. दिल्ली की सड़कों का हाल क्या, मैं आपको बता दूं. अगर आप दादरी मेन रोड पर हैं, डेफिनेटली आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, 24 मिनट का डिले है. और अगर आप दिल्ली रोड पर हैं तो भी आपको थोड़ा हल्का ट्रैफिक मिल रहा होगा. नजफगढ़ कापसेड़ा रोड पर भी आपको हल्का ट्रैफिक मिल रहा है. मेहरौली बदरपुर रोड पर हैं तो भी आप 11 मिनट के डिले पर हैं. और अगर हम और भी बात बताऊं मैं आपको, तो द्वारका फ्लाईओवर पर भी आप रुक रुक कर चल रहे हैं. कालंदी कुंज ब्रिज पर आप डेफिनेटली ट्रैफिक पे फंसे हुए हैं. द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी आपको हल्का ट्रैफिक मिल रहा है. करियप्पा मार्ग पर भी आपको हल्का स्लाइड ट्रैफिक है. लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर भी आपको 15 मिनट का डिले मिलेगा. इसके अलावा अगर आप कोई भी बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं कि दिल्ली की सड़क पर आपको कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है, यहाँ पर से मुझे पता चल रहा है कि काफी जगह पर ट्रैफिक है, तो आप हमें जरूर मैसेज करें और बताएं व्हाट्सएप पे 9868107070 पर. 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप करना और बताना है कि दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है, कहां पर आपको एकदम स्मूथ ट्रैफिक मिल रहा है. और अगर आपको एकदम स्मूथ ट्रैफिक नहीं मिल रहा तो कहां पर आपको रुक के जाना पड़ रहा है, या आप कहीं पर डाइवर्ट कर रहे हैं रास्ता, कोई अल्टरनेटिव रूट ले रहे हैं, बिंदास आप हमें बता सकते हैं. और अब समय है कि मैं आपके साथ शेयर करूं एक रेट्रो ट्रैक. बेहद खूबसूरत ट्रैक है ये और बहुत बहुत पसंद है ये मुझे भी, और मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगा. और एक बहुत ही आइकॉनिक इसमें सेंटेंस है, आई गेस इस म्यूजिक से आपको पता चल गया होगा. नहीं पता चला तो बस थोड़ी सेकेंड्स और फिर आपको पता चल जाएगा.
1: Wait, wait, wait! You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babosity! What?
2: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
2: Right! My name is Anthony Gonsalves.

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: सो क्यूट।
0: राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन।
2: नो।
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रेणु भट्ट और आप सुन रहे दिल के तराने गाने नए पुराने। क्या आप सोचते हैं हमारे प्रोग्राम से लेकर, क्या फीडबैक देना चाहते हैं? आपकी बातों का, आपके कमेंट्स का, फीडबैक्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपको करना है हमें ईमेल करेंगे आप feedback@fmrainbow@gmail.com पर। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको मेल करना और बताना है कि क्या सोचते हैं, कैसे लगते हैं हमारे प्रोग्राम्स आपको।

0: अच्छा, वैसे दोस्ती तो आपके और हमारे भी बहुत ज्यादा खास है। बताओ, आप इस मूवी में जितनी अच्छी दोस्ती अमिताभ और फरहान अख्तर की थी, क्या उससे कम है हमारी दोस्ती? नहीं ना, हमारी दोस्ती बहुत खास है, बहुत अनमोल है, और बेस्ट पार्ट इज कि समय के साथ ये और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अच्छा, अगर आपको कोई भी मेल आता है कि आपकी लॉटरी लग गई, सही नहीं है, कोई आपको मेल आता है, कॉल आती है कि आपका कुछ पार्सल कहीं पे पकड़ा गया है आपके नाम से, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो जो भी चीज़ें आपके साथ होती है ना, यहाँ पर अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत होती है, और ये हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम किसी भी ट्रैप में फंसे। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट पर बात की जाएगी आज 1:02 पर रेनबो हेल्पलाइन में, और हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉ वर्सेज वर्चुअल ट्रैप। और आपको पे सारी जानकारी देने वाले हमारे एक्सपर्ट जो रहेंगे संजय कुमार गिरोत्रा, आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और सर्टिफाइड मीडिएटर हैं, तो आप जरूर अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाएं, आकृति रहेंगे आपके साथ। और हम आपको बता दें रेडियो डॉक्टर के आज के टॉपिक के बारे में भी, फिलारिया कॉजेज सिम्टम्स एंड क्योर पर बात करी जाएगी आज, और एक्सपर्ट रहने वाले हैं डॉक्टर एस के रसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस कम्युनिटी मेडिसिन LHMC न्यू दिल्ली। और आप अपनी कॉल समय भेज सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर है 2342108023421082, ये हमारे नंबर है, 011 ऐड करना ना भूलें। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता है, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें मैसेज करके भी अपनी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं, और कॉल करके भी अपनी क्वेरीज आप हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी मीडियम आपको सूटेबल हो, आप उनका उपयोग जरूर करें।
1: चोरी हो गई, चोरी। एक नटखट नैनो वाली देखो, चंचल चपल किशोरी। अरे नटखट नैनो वाली देखो, चंचल चपल किशोरी। कनक कटोरी चांद चकोरी, कर गई दिल की चोरी। हाय कर गई दिल की चोरी, चोरी अरे कर गई दिल की चोरी।

अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपको अपने साथ अम्ब्रेला जरूर रखना। ना ना ये गलती मत करना कि आप अपने साथ रेनकोट या फिर अम्ब्रेला ना रखें, क्योंकि अगर बाय चांस बारिश हो गई तो आप भीग सकते हैं। और आज ये प्रिडिक्शन है बारिश का, आज कल आगे आने वाले दो चार दिनों के लिए प्रिडिक्शन है बारिश का, बूंदाबांदी का, या फिर आपको झमाझम बारिश भी देखने को मिल सकती है। हम दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की ओर नजर डालें तो 35 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। करंट टेम्परेचर दिल्ली में 32 डिग्री सेल्सियस पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा 71 डिग्री है। तो आपको अपने आप को बचाना है, और अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो पानी आपको पीते रहना है और बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में नहीं रहना है, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से भी बचाना है। तो सारे आप उपाय करके रखें और अपने अपनों को भी बचाएं। और अभी आप बने रहें हमारे साथ, यानी कि आकाशवाणी के FM रेनबो के साथ। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, रेणु भट्ट के साथ।

ऑल इज़ वेरी वेल, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। अगर आप दिल्ली में हैं और अभी बाहर हैं तो हवा का आनंद ज़रूर ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम्स आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। 10:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम, मैचलेस म्यूजिक का पूजा आनंद रहेंगे आपके साथ। आकृति के साथ सुनेंगे आप बॉलीवुड ट्रिल्स 11:02 पर, और पूजा रहेंगे आपके साथ प्ले इट कूल में 12:02 पर। और हर घंटे हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, ताकि आप रहें अवेयर और अप टू डेट। और मैं अभी आप सबसे ले लेती हूँ इजाज़त, आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। फिर मिलूंगी आपसे, गुड बाय एंड टेक केयर।

जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

प्रस्तुत है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। पूंछ जिले की

मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा आज शुरू हो गई है। ये यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है और गोल टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। ये अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार थे।

बॉलीवुड के चटपटी अटपटी मजेदार और जायकेदार खबरों को लेकर आते हैं हम आपके लिए बॉलीवुड ट्रेल्स में आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।

और बॉलीवुड की गलियों से पहली अपडेट हम तक आ रही है रणवीर सिंह की अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री रचने के बाद बॉलीवुड के पावर हाउस बने एक्टर रणवीर सिंह अब एक बिल्कुल ही अनदेखी और रोंगटे खड़े करने वाली दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह की मच अवेटेड एंड ऑफ द वर्ल्ड एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर प्रलय, इस फिल्म की शूटिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। मुंबई में इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट इंडियन सिनेमा यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस जॉनर में इतने ग्रैंड स्केल पर बनने वाली अपने आप में ये पहली फिल्म मानी जा रही है। धीरे धीरे लाइक लार्जर देन लाइफ विजुअल्स, भारी भरकम एक्शन ही नहीं है बल्कि बहुत कुछ इस फिल्म में होगा, इस तरह की अपडेट्स हम तक आ रही हैं। और जो स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी और एक और बड़ी फेमस सीरीज थी लुटेरे, उसका डायरेक्शन जिन्होंने किया था, जी हाँ, वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर जय मेहता इस फिल्म की कमान संभाल रहे हैं। और लोका में ख़ास पहचान बनाने वाली लोकप्रिय अदाकारा कल्याणी प्रियदर्शन इस फिल्म में रणवीर के साथ बहुत ही अहम किरदार में नज़र आएंगी। फिलहाल महीनों तक चली प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल प्रेपरेशन के बाद फिल्म के कैमरे अब मुंबई के अलग अलग इलाकों में असली लोकेशंस पर रोल हो रहे हैं। और मेकर्स का ये भी मानना है कि सिर्फ वीएफएक्स के भरोसे रहने की बजाय असली जगहों पर शूटिंग करने से एक रॉ फीलिंग जो है वो आती है। फिलहाल प्रलय, जिसमें रणवीर सिंह मेन किरदार में हैं, उसकी शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड रील्स और बॉलीवुड रील्स में आपके साथ हूं मैं आकृति और बॉलीवुड की अगली अपडेट लेकर आ रही हूं मैं आपको इमरान हाशमी की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। इमरान की आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, काफ़ी अच्छी रिस्पांस जो है इसको मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर। और इस बीच जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विशेष भट्ट, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो इमरान की जन्नत का तीसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। स्क्रिप्ट पर काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आवारापन 2 की अगर हम बात करें तो रिलीज़ के बाद 100 करोड़ के ग्रॉस को वो पार कर चुकी है और इसी की सक्सेस से गदगद होकर जो प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, उन्होंने इमरान की हिट फिल्म जन्नत की तीसरे पार्ट यानी कि जन्नत 3 को बनाने का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा था कि काफ़ी समय से उस पर काम चल रहा है, रिलीज से पहले ही इनफैक्ट जन्नत 3 पर काम होना शुरू हो गया था। जन्नत फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें, साल 2008 में शुरू हुई थी। पहली फिल्म में इमरान हाशमी ने अर्जुन दीक्षित का किरदार निभाया था और उसमें उनके ऑपोजिट सोनल चौहान नजर आई थी। अच्छी खासी कमाई की थी फिल्म ने। उसके बाद 2012 में फिल्म का दूसरा पार्ट आया था, इसमें भी इमरान हाशमी जो थे वो लीड रोल में थे और उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस के तौर पर ईशा गुप्ता नजर आई थी और फिल्म का हिस्सा रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अयूब भी इस फिल्म में थे। दूसरे पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा काम किया था। अब देखते हैं जन्नत 3 जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है वो कब तक आती। जैसे जैसे इस फिल्म की बातें ऑफिशियली वेरीफाई होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: हिमालय की गोद से लेकर
10: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
9: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
10: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
9: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
10: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
9: तो सुनना ना भूलें
10: रेनबो डेस्टिनेशंस
9: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेंड्स। जी हाँ, 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, सभी जगह आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल बॉलीवुड ट्रेंड्स में अगली अपडेट हम तक आई है ओटीटी रिलीज के बारे में। जी हाँ, अगर आपको भी फिल्म हॉल में देखना पसंद नहीं है और आप घर बैठे ही फिल्म्स को, सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो ये जो वीक है आपके लिए ख़ास हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते ओटीटी पर बहुत ही कुछ रिलीज़ हुआ है। लाइक कॉकटेल 2 रिलीज़ हुई है, रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर, कृति सेनन स्टारर कॉकटेल 2 जो है ओटीटी पर हाल ही में रिलीज़ हो गई है। सिनेमा हॉल्स में 19 जून को इसी साल रिलीज़ हुई थी और ये 2012 में आई कॉकटेल फिल्म का सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने लीड रोल निभाया था। कॉकटेल 2 जो है आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसके अलावा संजय दत्त, नवाशी चक्रवर्ती, अमित साध और त्रिधा चौधरी स्टारर आखिरी सवाल, ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, ये भी हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग और निखिल नंदा ने इसको प्रोड्यूस किया है। इसमें भी आपको भरपूर सस्पेंस और एक्शन देखने को मिल सकता है। और एक और फिल्म रिलीज हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, कांगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। मनोज तापड़िया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल जून में ही रिलीज हुई थी और अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज हो चुकी है। देशभक्ति और रोंगटे खड़े करने वाले साहस और कभी न टूटने वाली हिम्मत का जीता जागता सबूत है। तो टाइम मिले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाइए और इन लेटेस्ट रिलीज को बॉलीवुड के एंजॉय कीजिए।

11:45 और बॉलीवुड रील्स में अब वो पल आ चुका है जब हम आज का बॉलीवुड सरताज सवाल अनाउंस करने वाले हैं, और इस सवाल का सही जवाब हम तक सबसे पहले जो पहुंचाएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, वो बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। तो सवाल पेश है आपके लिए कि जन्नत फ्रेंचाइजी की फिल्म में लीड हीरो की भूमिका किसने निभाई है? आपने हमें बताना है कि जन्नत फ्रेंचाइजी की फिल्म में लीड हीरो की भूमिका किसने निभाई है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जन्नत फिल्म जो है 2008 में रिलीज हुई थी, फिर जन्नत 2 2012 में आई थी, और अब जन्नत 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके बारे में हम आपको आज ही के प्रोग्राम में बता भी चुके हैं। एक हिंट और दे देती हूँ कि ये जो हीरो हैं, लीड हीरो, ये अभी हाल ही में फिल्म जो रिलीज हुई थी आवारापन 2, उसमें भी लीड रोल में थे। तो बताइए हमें जन्नत फ्रेंचाइजी की फिल्म में लीड हीरो की भूमिका किसने निभाई, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है।

विशेष भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: जी हाँ, एब्सोल्युटली, कानून जो हमें सुरक्षा देता है, लेकिन वही कानून अगर गलत हाथों में चला जाए तो वह ही डर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार भी बन जाता है। डिजिटल अरेस्ट इसी डर का इस्तेमाल करने वाला एक बहुत ही खतरनाक साइबर फ्रॉड है, और इसीलिए रेनबो हेल्पलाइन में आज 1 बजे हम लोग बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉ वर्सेस वर्चुअल ट्रैप। और हमारे एक्सपर्ट संजय कुमार गिरोत्रा, जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली में और सर्टिफाइड मीडिएटर हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे। स्टूडियो में कर चुकी हैं पूजा प्लेट कूल लेकर, तो 12:02 पर सुनिएगा इस प्रोग्राम को, और 2:02 पर आशियाना प्रोग्राम में शालिनी खंडेलवाल आपके साथ रहेंगे। और फिलहाल इंतजार होगा आपको हमारा आज का बॉलीवुड सरताज बन कौन रहा है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि जन्नत फ्रेंचाइजी की फिल्म में लीड हीरो के रोल में कौन थे, और आप लोगों से बहुत से सही लोगों के सही जवाब आए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल का सही जवाब जो कि है इमरान हाशमी बताने वाले हैं, अंशुल गुप्ता जो कि बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। जनन त्यागी साहब का सही जवाब आया है राजकुमार के संतानी, पंकज का महाराष्ट्र से, कान्हा मेरठ से, अमित राजा टेलर मेरठ से, शंकर गोवा पंजिम से, सुकलाल बाला, इमरान हाशमी बताने वाले हैं अभिषेक कुमार। इसके अलावा नौशाद चौधरी साहब का भी सही जवाब हम तक आया है, इम्तियाज जवाहर कैंप से, और निकिता पारेकर पुणे से, कृष्ण कुमार मिश्रा दिल्ली से,

का देवभूमि उत्तराखंड से इमरान हाशमी मताने वाले सोनल चौहान, मनोज कुमार, दिनेश नाहर सिंह साहब, बसंत तोमर साहब और इसके अलावा ये सही जवाब हम तक पहुंचाया है रविंदर ने। लेकिन आज की सबसे बड़ी बधाई जाती है अंशुल गुप्ता को आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: Wow, that song was spectacular. Thank you so much. Do you know the special heavy rock guitar part that you hear? Yes, the famous guitar solo on Michael Jackson's song Given to Me was actually done by Slash. You were wondering. Well, do you know this song also, a part of the album Dangerous, was never, ever played live. That's why Jackson never sang the song on television or during a live public event. And it was, of course, single only in that movie. And this hard rock track was never added to the set list for the Dangerous World Tour or any subsequent tours. But this performance by Slash is so spectacular. It gives this song that certain edge that was so needed to make it so dangerous. Right now, let's take a break. Stay close, stay tuned. I'll be back in just a couple of seconds. Remember, you tuned in to the Play It Cool show, live only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. रेनबो 102.6 पर
2: उमंग सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: like an animal. At the moment, I've got messages coming in, pouring in actually. And this one's coming in from Roland. He says, you know what, forgot to tell you earlier, but my favorite book would be the Holy Bible, the most widely read book in the world and my favorite. Well, my all-time favorite movie I'd love to share with all of you is, of course, Titanic. I saw it on the 30th of May, 1998, and I've never forgotten it. For the first time, I saw it and I was dumbstruck forevermore. Well, that's Roland for us. And he says, thanks for playing MJ. I'm sure that everyone loved that song given to me. Heard it after a long time, but a lovely track indeed. And time for a break. So stay close. More messages on the other side. Don't go anywhere.
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
10: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
9: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
10: हैं? इतनी जल्दी?
9: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: Lovely track there. Well, okay, I'm in love with this quote. If you can overthink the worst, why can't you overthink the best? Ponder on that. I'll be back soon.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा आज शुरू हो गई है। यह यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है और गोल्ड टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट्स पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे कहना यही चाहती हूं कि आज हमारा जो ये स्मार्टफोन है ना, केवल बातचीत का मीडियम नहीं है। इसमें हमारी फोटोज हैं, इसमें हमारी बैंकिंग डिटेल्स हैं, इसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और हमारी इनफैक्ट एक तरह से कह लीजिए कि पूरी तरह की डिजिटल आइडेंटिटी है। ऐसे में अगर कोई इसी फोन पर आपको कॉल करे और आपको कानून का डर दिखाए और पैसे की मांग करे तो क्या करना चाहिए? घबराना नहीं, समझना जरूरी है। रेनबो हेल्पलाइन में हम आज जानेंगे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली धोखेबाजी और इससे जुड़े कानूनी सच और साइबर अपराधियों के हथकंडे। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉज वर्सेस वर्चुअल ट्रैप। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री संजय गिरोत्रा, जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में और साथ ही साथ सर्टिफाइड मीडिएटर हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
2: नमस्कार
1: जी। और सुनने वालों को मैं बताऊंगी, रोज आए दिन जो है इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। आज भी मैं सुबह अखबार में पढ़ रही थी कि किसी बुजुर्ग से 95 लाख की धोखाधड़ी जो है हो गई, डिजिटली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इस विषय में आपके अगर कोई सवाल हैं, आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे साइबर क्राइम क्रिमिनल्स जो हैं वो कौन कौन सी कॉमन टेक्टिक्स

0: यूज करते हैं, इनके साइबर फ्रॉड हो गया है तो क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? मेरे जहन में तो बहुत से सवाल हैं, आपके जहन में भी कुछ इस तरह के सवाल हैं तो आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन करके भी अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं जो है 1800111026 या फिर आप हमारे स्टूडियो का लैंडलाइन भी हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइए 011 और फिर डायल कीजिए 2342-1080 एंड 2342-1082। और संजय जी से आपके सवाल पहुंचे उससे पहले मेरे सवाल तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत लंबी फेहरिस्त है मेरे पास। डिजिटल अरेस्ट संजय जी होता क्या है ये?
1: देखिए मैडम, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक क्रिमिनल्स की बनाई गई टर्म है जिसको हम अरेस्ट बोलते हैं। द वर्ड अरेस्ट जिसको कहते हैं, अरेस्ट इज बेसिकली ओनली फिजिकल, नॉट नेवर डिजिटल और वर्चुअल। ये क्रिमिनल्स जो हैं वो साइबर क्रिमिनल्स, ये उनका अपनाया गया हथकंडा है और उन्हीं की इजादगी का ये टर्म है। रियलिटी में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई टर्म इंडियन लॉ में है ही नहीं। इस तरह की कोई टर्म नहीं है, ना किसी इंसान को डिजिटल या वर्चुअल तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट जो है वो सिर्फ फिजिकल ही होती है और प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही होती है।
0: अच्छा, तो यानी कि जो कितनी बार पुलिस ऑफिसर या सीबीआई ऑफिसर या फिर ईडी ऑफिसर या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम से वर्दी पहन के कई लोग जो हैं वीडियो कॉल के माध्यम से कई लोगों को कहते हैं कि अब आप डिजिटली अरेस्ट हैं, तो ये सब फ्रॉड है? ऐसा हाँ, वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता?
1: बिल्कुल, देखिए ये बड़ा क्लियर है कि कभी भी कोई अरेस्ट वीडियो या वर्चुअल के थ्रू नहीं हो सकती है। अगर ये आपको कहा जाए कि आप वीडियो के थ्रू अभी अरेस्ट किए गए हैं तो ये पहला रेड फ्लैग है। ठीक है, इट्स फर्स्ट द रेड फ्लैग, इमीडिएट आपको अटेंटिव हो जाना है। और आजकल अच्छी चीज ये है कि अभी आज ही मैं अभी मॉर्निंग में कॉल कर रहा था तो मुझे पहले आए मैसेज अगला कॉल स्कैमर का हो सकता है। तो ये अच्छा लगा मुझे एक चीज से हमारी पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ती रही है। बट स्टिल इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए आज जो टाइम है ये हमारा जो आज की जो दुनिया है पूरी नेट इंटरनेट के थ्रू चलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे हैं। आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिमिनल्स इस चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं। और अनफॉर्चुनेट ये है कि एक्चुअली जो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं इसका कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअल में ये हमारे मेरे फियर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इंसान, हर इंसान के अंदर कुछ डर होते हैं
0: जी,
1: वो अथॉरिटी को लेके या किसी किसी भी क्राइम को लेके, और या हमसे कभी कोई गलती भी हो सकती है। तो इन्हीं गलतियों को और ये जो क्रिमिनल्स हैं वो बेसिकली साइकोलॉजिकली हैंडल करते हैं, आपके दिमाग को वश में करने की कोशिश करते हैं। तो उनका टारगेट एक्चुअल में पैसा पे पहुंचने से पहले फर्स्ट आपके माइंड को कंट्रोल करना है। वो आपकी अलर्टनेस को मतलब खत्म करना चाहते हैं, वो आपके दिमाग को सुन कर देना चाहते हैं, इतना ज्यादा आपको डरा दिया जाता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। बाकी जैसे आप
0: श्रोताओं के सवाल आएंगे वो हम पूछते रहेंगे, और डिजिटल अरेस्ट के बारे में जरूर जानिए क्योंकि जैसा संजय जी कह रहे हैं कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो डर पैदा करते हैं और उसी डर का फायदा उठाकर वो कितने ही पैसे जो हैं लूट लिए जाते हैं। आज ही के अखबार में एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि देश में 2 साल के अंदर साइबर हमले जो हैं वो 85% बढ़ गए हैं, 85% जो हैं वो हमले बढ़ गए हैं, और हर दिन साइबर अपराध की 8,000 से ज्यादा घटनाएं तो दर्ज होती हैं, और कई तो ऐसी होंगी जो कि शायद नहीं हो पाती होंगी, लोग डर के मारे इस चीज को आगे भी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही अहम है कि हम इस विषय में अपने आप को जागरूक रखें, अलर्ट रहें। संजय जी से इन्हीं सवालों को हम जानेंगे कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो किस तरह की साइकोलॉजिकल टेक्टिक्स को अपनाते हैं वो भी आपसे पूछूंगी। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉज वर्सेस वर्चुअल ट्रैप। क्या सचमुच के लॉज हैं, लीगल कानून क्या कहता है, या वर्चुअल ट्रैप है? संजय गिरोत्रा साहब जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में और सर्टिफाइड मीडिएटर हैं हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, और आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूं कि जब डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द हम सुनते हैं तो एक डर सा पैदा हो जाता है। क्या डिजिटल अरेस्ट वास्तव में भारतीय कानून में गिरफ्तारी का कोई तरीका है या सिर्फ अपराधियों द्वारा यूज किया जाने वाला एक डरावना सा शब्द है? रेनबो हेल्पलाइन में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मिथ और रियलिटी के बीच फर्क क्या है, यही समझ रहे हैं हम, ताकि अगली बार अगर इस तरह की कोई कॉल आए तो हम डरे नहीं, हमारे पास हो सही जानकारी। आज का विषय है डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉज वर्सेस वर्चुअल ट्रैप, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट श्री संजय गिरोत्रा जी, जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में और सर्टिफाइड मीडिएटर भी हैं। आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं 9868107070 पर, और फिलहाल अनन्या शर्मा ने एक सवाल हम तक पहुंचाया है संजय जी कि क्या पुलिस वाकई में वीडियो के थ्रू अरेस्ट कर सकती है किसी को या बिल्कुल फेक होता है ये डिजिटल अरेस्ट?
12: देखिए, मैं बड़ा क्लियर शब्दों में कहूं, कभी भी वर्चुअल या वीडियो के थ्रू कोई अरेस्ट नहीं होती है। एक अरेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, भारतीय न्याय संचार संहिता के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर सेक्शंस के अंदर अरेस्ट की जाती है। जैसे सेक्शन 35 है जिसके अंदर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट की पावर है सेक्शन 41 के अंदर, और ये अरेस्ट हमेशा फिजिकल होता है।
11: अच्छा,
12: बिल्कुल क्लियर। कभी भी अगर आपको फोन करके ये कहा जाए कि आपको वीडियो कॉल पे आइए और उसके बाद ये बताया जाए कि आप अब अरेस्ट पे हैं, सो इट इज अ रेड फ्लैग कि वीडियो के थ्रू कोई अरेस्ट नहीं होती है। और इन क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा अभी कि बेसिकली ये लोग दिमाग को कंट्रोल करने के ऊपर काम करते हैं पहले, क्योंकि एक बार आपका दिमाग उनके कंट्रोल में आ जाता है फियर की वजह से, उसके बाद उनके लिए काम आसान हो जाता है फियर क्रिएट करना। सो आप वो सब चीज़ें बिलीव करने लगते हैं, फिर उसके बाद आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जाते हैं कि जो आप, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल्स ऐसे ही किसी को अटैक नहीं करते इस तरह के, वो और प्रॉपर होमवर्क करके आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक अंबाला का केस हुआ था जहाँ पे एक सीनियर सिटीजन कपल थे और उनका पूरी लाइफ सेविंग 1.5 करोड़ की पूरी डिजिटल अरेस्ट के थ्रू ले ली गई। उस लेडी ने जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली कंप्लेंट सेंड की और उसके बेस पे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने उसको सुओ मोटो कोग्निजेंस लेके इसको एक रिट पिटीशन मान लिया।
11: अच्छा।
12: जिसके बेस पे अब पूरा बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और एक रीसेंट ऑर्डर अगस्त 4, 2026 को इस बारे में आया जिसके अंदर बहुत सारी फ्रेमवर्क बनाने के लिए सजेशन किए। तो मैं दोबारा एक बार वापिस इनके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि बिल्कुल आप एश्योर्ड रहिए कि कोई भी अरेस्ट जो है वीडियो या वर्चुअल के थ्रू नहीं होती है। अरेस्ट इज ऑलवेज ओनली फिजिकल, इफ इट इज सो इट इज अ फ्रॉड।
11: बल्कि आप मुझे थोड़े और रेड फ्लैग्स बताइए, कैसे पता चल रही, क्या साइकोलॉजी होती है जो साइबर क्रिमिनल जो होते हैं किस तरह की कॉमन टेक्टिक्स को यूज करते हैं?
12: देखिए, उनकी पहला टारगेट ये होता है कि आपको आइसोलेशन में करना।
11: अच्छा।
12: क्योंकि अगर आप किसी से डिस्कस करेंगे वहां पे आप नहीं फंसेंगे, तो वो आपको एक तो पहले ये कहेंगे कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताइए और आपने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब

0: अरेस्ट एक्चुअल में होती है, उस अरेस्ट के अंदर देर इज ए प्रॉपर प्रोविजन सेक्शन 47 BNSS यानी कि भारतीय न्याय संचार संहिता के अंदर आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हो सकता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वो भी बता दें कि ये जी आपके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 48 है जो आपको रिश्तेदारों या फ्रेंड्स को आपके जो अपने हैं उनको इन्फॉर्म करने का परमिशन देता है, वो कह रहे हैं कि आप आइसोलेट हो जाओ, दिस इज अ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, वो आपको दूर करना चाहते हैं उनसे, ठीक है। और आपको अरेस्ट करने के कानून में है कि 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, यहाँ तो वो एक दो दिन तक कॉल्स चलाते हैं सामने आप। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि आपके सामने डीप फेक कोई मजिस्ट्रेट ही बैठे हुए, ठीक है। सो इसमें यह होगा कि अगर आप उसमें मान लीजिए उस कॉल को नहीं डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं जो, तो फिर आप उसमें जाइए कि आप कौन से पुलिस स्टेशन से हैं, कौन सी कोर्ट से हैं, ठीक है, मुझे आप एड्रेस बताइए, मैं आ जाता हूं वहां पर मेरे अगेंस्ट, ठीक है, जो है, लेकिन मैं आप, और उसके बाद जब वो एड्रेस की बात आएगी तो वो आपको अवॉइड करना शुरू करेंगे। इवन इफ मान लीजिए वो कहते हैं हम बॉम्बे कोलाबा पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट फ्लाइट पे आ जाऊंगा। एक बार आप उस फोन से बाहर आ गए ना तो आप उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट है कि, और ये इन लोगों की इन लोगों ने उसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर काम भी काफी किया होता है, तो दे नो कि किस तरह से इनको ट्रैप करना है। और अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग कई बार मैंने सुना हुआ देखे कर यार लोग कैसे पागल बन जाते हैं। सो
1: एजुकेटेड लोग मतलब
0: देखिए, और मतलब लेकिन ये सरप्राइज है कि अब जैसे मैं एक और केस बताता हूँ आपको, यूएस से रिटर्न हुए एक बड़ा, एक नोटेड केस था, आज तक का सबसे बड़ा केस है इंडिया का।
1: अच्छा।
0: उसमें करीब 14-15 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से ले लिया गया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो यूएस डॉक्टर कपल थे जो यूएसए से इंडिया में सेटल होके आए थे, और उनको ऐसे ही 2-3 दिन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बना के रखा गया और बहुत बड़ा उसका न्यूज बना था। सो ये कोई गारंटी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं या इंटेलिजेंट हैं तो शायद हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो मेन ये है कि हमको केयरफुल होना है कि हमको ये चीजें ध्यान रखनी है, और जो भी रेड फ्लैग्स हैं जैसे प्रिकॉशंस हैं दे नीड टू बी टेकन।
1: मतलब हमें खुद को एजुकेट करना होगा कि किस तरह की टेक्टिक्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे कि संजय जी बता ही रहे हैं कि जब हम डर जाते हैं तो फिर हम जो सद्बुद्धि है वो कहीं चली जाती है। पैंथर तोमर साहब हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं। एक तो संजय जी बताइए कि स्कैमर्स जो हैं उनके पास हमारा नाम, फोन नंबर, आधार कार्ड जैसी पर्सनल डिटेल्स कैसे मिलती है उन्हें?
0: देखिए, आज का टाइम वास्ट टेक्नोलॉजी का टाइम है। हम आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कितनी पॉजिटिव चीजें भी कर सकते हैं, हमारे हर प्रोफेशन में हर तरह से काम आता है। तो आप इसको अदरवाइज लीजिए कि जो क्रिमिनल माइंड है वो इसको नेगेटिवली यूज करता है। और ये टेक्नोलॉजी का ये है कि हर चीज अल्टीमेटली तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास फिर वो साइबर एक्सपर्ट भी होते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स जो बहुत महारत, तो उसके लिए वो ये चीजें हासिल कर लेते हैं
1: जी।
0: और उसके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है या उसके लिए जो भी इलाज है उसके करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो लोग भी उनके फिर तरीके ढूंढ लेते हैं
1: जी।
0: ये है
1: जी जी। और एक सवाल और आया है कि डिजिटल अरेस्ट होने पर सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए?
0: देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक बार आप हो गए, मैं जैसे आपको कहा, वंस यू हैव रियलाइज्ड, द मोमेंट यू रियलाइज कि इट इज आई एम बीइंग टोल्ड कि मैं डिजिटली अरेस्ट के अंडर हूं, आप उस फोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए।
1: अच्छा,
0: डिस्कनेक्ट करना है आपने, आपको निकलना है वहां से बाहर
1: किसी भी तरह से, आपको डिस्कनेक्ट,
0: हाँ, डिस्कनेक्ट करना है,
1: कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ? क्योंकि वो तो घंटों,
0: क्योंकि जितना आप कंटिन्यू करेंगे आप उनके ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, ठीक है। और मतलब मैं ये कहूंगा कि आज के जमाने में जो अननोन नंबर हैं
1: जी,
0: उनको किसी भी अननोन नंबर को लेते टाइम ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ कॉल किसी को भी आ सकता है। इवन मैं आपको, मैं 7 या 8 दिन पुरानी बात बताता हूँ, अपने ही बताता हूँ। एक मेरे को कॉल आया, उस वो एक अननोन नंबर था। अब अच्छा। कभी कभी हम लोग अननोन नंबर ऐसे भी उठा लेते हैं कि कहीं हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव कहीं फंस गया हो कोई उसे, तो मैंने उसको बोला तो उसने इमीडिएटली मुझे बोला कि महाराष्ट्र से किसी कोलाबा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ मैं, और बिल्कुल वो उसी स्टाइल में बोला कि तो मैं आई इमीडिएटली मेड आउट कि ये होगा, और मैंने उसको आगे कुछ भी कहने की बजाय आई डिस्कनेक्टेड, क्योंकि

0: अगर क्या होता है ना कि आप उससे उनसे उनका पर्पज यह है कि ये आपसे बात करें, आर्गुमेंट करें, और वहां पे शायद आपको कुछ ऐसी चीजें कही जाएं, क्योंकि क्या है ये लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी केसेस देखे गए हैं वो वाले केसेस देखे गए हैं जहां पर अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा था, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में सीनियर सिटीजन्स थे,
1: जी
0: ठीक है, और उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। अब ऐसे जो लोग हैं वो जब आप बात करना शुरू करेंगे तो आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें बोलेंगे जो आपकी करेक्ट होंगी, और वहां आपके फंसने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, ट्रैप में आने के चांसेस।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए मैं, जैसे कहा, मैं एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए
1: जी
0: कि आपको गिरफ्तार वीडियो या वर्चुअल के थ्रू नहीं किया जा सकता। और कभी ऐसा भी हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो कहें जी आपने ये, आपसे ये क्राइम हो गया या आपने गलती कर दी है। इवन इफ आपने गलती कर भी दिया तो उसके लिए एक प्रोसीजर है,
1: जी
0: लीगल प्रोसीजर है, लॉ में प्रोसीजर है, पुलिस स्टेशन का। आप बोलिए ठीक है, मैं, आपने अपना नाम बताइए, पुलिस स्टेशन बताइए, मैं आ जाता हूँ, जो भी होगा मेरे से जो
1: आके
0: गलती
1: बात
0: हो गई है
1: करेंगे।
0: तो मैं वहां जाके आकर इसको टैकल करूंगा। और जब आप एक बार उस फोन से बाहर निकलेंगे फिर आपको खुद ही रियलाइज होने लगेगा, करे यार मैं तो, मेरे को तो फूल बनाया जा रहा था, आई वॉज बींग मेड फूल।
1: जी बिल्कुल। कुछ सवाल आए हैं, आंसर यूं तो आप दे ही रहे हैं इसके। राजीव मेहता साहब का दिल्ली से आया है कि अगर कोई हमें ये क्लेम करता है कि वो पुलिस से है और मैं किसी क्रिमिनल केस में फंस गया हूं, तो कैसे वेरीफाई करें उनकी आइडेंटिटी। एक और अमित साहब का भी चंडीगढ़ से ये सवाल आया है कि ये जनरली पुलिस की यूनिफॉर्म में या ऑफिशियल्स के बैकग्राउंड में फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं। संजय भाटिया जी का भी इसी से जुड़ा सवाल है कि कैन अ जेन्युइन पुलिस ऑफिसर एवर आस्क अ पर्सन टू रिमेन ऑन अ वीडियो कॉल फॉर सेवरल आवर्स। यूं तो आप बता ही चुके हैं लेकिन एक बार फिर से।
0: देखिए मैं लास्ट वाला, इन्होंने जो बोला था, कैन ए जेन्युइन पुलिस ऑफिसर आस्क यू ऑन रिमेन ऑफ वीडियो कॉल,
1: फॉर सेवरल
0: नॉट
1: आवर्स,
0: एट
1: या
0: ऑल,
1: नॉट एट ऑल,
0: नॉट
1: ऑल
0: एट ऑल,
1: राइट।
0: ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लियर एक रेड फ्लैग है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए आपको एक ऑर्डनरी कॉल एक पुलिस स्टेशन से आ सकती है, एक ऑर्डनरी कॉल कि आपका ये कोई मैटर है, ठीक है, आपके अगेंस्ट ये FIR वगैरह है, ये आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक नॉर्मल कॉल नहीं आ सकती एक पुलिस स्टेशन से,
1: जी
0: लेकिन आपके पास फिर इन सब चीजों को तरीके है ना वेरीफाई करने के लिए। देखिए अभी जैसे एक क्वेश्चन आपने वेरिफिकेशन वाला भी बताया था,
1: हाँ
0: ठीक
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: तो आपको सीधा उस, जो कि जो भी जेन्युइन पुलिस ऑफिसर आपको फोन करेगा
1: जी
0: उसने अपनी आइडेंटिटी तो छुपानी नहीं है,
1: हाँ
0: ठीक है।
1: हाँ हाँ
0: मान
1: हाँ
0: लीजिए जेन्युइन है तो
1: हाँ
0: आप उनसे पूछिए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा ठीक है, अगर मेरा है ये क्राइम तो ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं आपको मिलता हूँ आकर। और ये नहीं कि मतलब कि कोई भी वो प्लेस कहे तो हमने चले जाना है,
1: जी जी
0: तो मेरा मतलब है कि उन चीजों को फिर
1: बिल्कुल
0: हमने वेरीफाई करना है अपने लेवल पे।
1: हाँ
0: और आज की डेट में पूरे इंडिया में
1: जी
0: हम कहीं पे भी FIR भी वेरीफाई कर सकते हैं।
1: हाँ
0: अच्छा इसके अलावा, और मैं जैसे अब बहुत मॉडर्न ऑपरेंडी एक्चुअली क्या यूज किए जाते हैं आजकल, जैसे आपको पता है आधार के अगेंस्ट आपके फोन नंबर वगैरह ले लिए
1: होते
0: जाना, उसके
1: हाँ
0: लिए भी बड़े अच्छे तरीके हैं हमारे पास। देखिए टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक पोर्टल है
1: अच्छा
0: जिसपे आप जाके ये देख, अपना मोबाइल नंबर डाल के ये देख सकते हैं कि आपके मोबाइल एक OTP आता है
1: अच्छा
0: और उसके आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के साथ में कितने और मोबाइल अटैच हैं।
1: ओके
0: इवन ये है UID की साइट पे जाके आपके फोन के साथ कितने अटैच हैं ये भी
1: हाँ
0: आप पता कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के तरीके बहुत सारे हैं, और आजकल इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में कभी कभी हमको बहुत अर्जेंट सलाह होती है तो हम ChatGPT वगैरह से भी पूछ लेते हैं कि मेरे साथ मतलब मैं इसको कहाँ से वेरीफाई करूँ, वहां से भी आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। सो अब थिंग इज के जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्लस हैं और बहुत सारे माइनस
1: माइनस
0: भी
1: भी
0: हैं।
1: हैं।
0: जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके उनकी काट भी ढूंढी जा रही है, लेकिन हमको इसी तरह की दुनिया में ही रहना है। और
1: रहना है, इसीलिए अलर्ट होके जागरूक होके रहना है। विवेक अरोरा साहब का एक सवाल है जिसका जवाब आपने अभी अभी दिया कि अगर कोई कॉलर हमें कहता है कि देर इज अ वारंट अगेंस्ट मी, तो मैं कैसे चेक करूं कि वो वारंट जेन्युइन है या क्या है।
0: देखिए एक तो जो वारंट है, वारंट इज इश्यूड बाय अ कोर्ट, ठीक है, और वारंट फिजिकल बनता है। अगर आपने किसी ने लिख के दे दिया यू आर इश्यूड हेयर बाय इश्यूड वारंट अगेंस्ट यू, दैट इज
1: जी
0: नॉट अ वारंट, ठीक
1: हाँ
0: है। और वो, हाँ, वारंट की कॉपी आपको जरूर फोटो खींच के भेजी जा सकती है, ठीक है। अब उसमें हमेशा कोर्ट का नाम लिखा होता है प्रॉपर,
1: अच्छा,
0: ठीक है, मेंशन होता है,
1: हाँ,
0: तो वो आप कोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। नो, अब आज के टाइम में तो मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में हर चीज इजीली अवेलेबल है, तो हमको बस अपने आप को अलर्ट रखना, अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं आने देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। रोहित सेठी साहब का दिल्ली से ये सवाल है, और जैसा आपने कहा कि अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं आने देना, तो इनका सवाल है कि क्यों लोग जो हैं स्कैमर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते हैं, जबकि उनको लगता भी है कहीं कहीं कि ये सस्पिशियस है, फिर भी क्यों होता है?
0: मैं इस पे दोबारा आता हूँ
1: जी।
0: जैसे कि हम लोग कई बार हम लोगों का सर्कल, जैसे हम लोग सभी एजुकेटेड हैं, तो
1: हाँ,
0: तो हम लोग कभी कभी कई लोग बातें करते हैं कि हम यार ये लोग कैसे फंस जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि नहीं वो उनका जैसे एजुकेटेड लेवल वो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। जो भी हमने केसेस देखे हैं मैक्सिमम एजुकेटेड लोगों के हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि जो क्रिमिनल्स है ना, जो इन चीजों में काम करते हैं, वो शायद उस चीजों में बहुत ट्रेंड होके आते हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजी पे काम करते हैं, फियर पे काम करते हैं। हम लोगों को बचपन से हम लोग जैसे पुलिस से एक फियर रहता है, या कोर्ट से एक फियर रहता है, इन जजेस इन्हीं चीजों को, या आज के टाइम में अगर आपसे कोई मिस्टेक मान लो हो गई, आपसे ये कह दिया जाए कि आपके इवन ऐसा कहा जाता है कि कस्टम में आपका एक पार्सल मिला है,
1: ये
0: उसके अंदर ड्रग्स हैं,
1: सो
0: इन फियर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। तो फिर कह रहा हूँ कि उनका अटैक्स मतलब सीधा आपको आइसोलेशन पे करना और किसी को नहीं बताना और आपकी रेपुटेशन पे अटैक करना, अदरवाइज ये आपको इन्फॉर्मेशन वहां दे दी जाएगी। तो इस कारण है कि कई बार क्योंकि कैसे आ जाते हैं, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये लोग पूरा होमवर्क करके आते हैं, ये ऐसे ही किसी को भी अटैक नहीं करेंगे, ये हाँ, जैसे अब जैसे केसेस मैंने आपको बताया 13 करोड़ 15 करोड़ निकल गया,
1: बिल्कुल
0: उनको ऐसी थोड़ी, उनको उन्होंने कहीं पे शायद महीनों की
1: जो वी कह रहा होगा
0: पूरे कई महीनों की उनकी रेकी की होगी, एक एक चीज उनके पास होगी, और जहां पे उनको डाउट होना शुरू हो तो उनके बारे में एक एक चीज, अब उनको लगेगा कि शायद इतनी इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब सही ही होगा,
1: राइट।
0: सो मेनली वही कह रहा हूँ ना, दे वर्क ऑन योर फियर, ये वर्क ऑन योर माइंड, और बस ये है कि कभी भी कोई भी गिरफ्तारी आपकी वर्चुअल या वीडियो के थ्रू
1: नहीं हो सकती, ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, इस बारे में कॉन्फिडेंट रहिए। रेनबो हेल्पलाइन में आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉज वर्सेस वर्चुअल ट्रैप। संजय गिरोत्रा साहब जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में, हमारे साथ स्टूडियो में एज एन एक्सपर्ट उपस्थित हैं, और आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूं कि कानून हमें सुरक्षा देता है, लेकिन कानून का डर जब गलत हाथों में चला जाए तो वही डर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। डिजिटल अरेस्ट इसी डर का इस्तेमाल करने वाला एक खतरनाक साइबर फ्रॉड है। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम समझ रहे हैं कि क्या है रियल लॉज और कैसे पहचाने कि हम वर्चुअल ट्रैप में फंस रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हमारे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। नए जुड़ने वालों को बता दें कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर पहुंचकर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और श्री संजय गिरोत्रा जी, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और साथ ही साथ सर्टिफाइड मीडिएटर हैं, हमारे साथ हैं। संजय जी, नितिन का सवाल आया है हम तक अमृतसर से, और वो कहते हैं कि अगर हम फ्रॉड जो स्कैमर हैं उसको ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं पैसा, तो फिर अब क्या किया जाए? अब वो थोड़ा सा आप हमें बताएं।
11: देखिए, इसमें एक चीज मैं कहूँगा कि अब ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, अब अवेयरनेस के बावजूद भी फ्रॉड होते हैं और हो जाते हैं। तो पहला स्टेप है आपको साइबर क्राइम जो आपका मतलब 1930 हेल्पलाइन है, इसके अंदर आपको इमीडिएटली इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद साइबर क्राइम पोर्टल जो है उसमें आप इस मैटर को रिपोर्ट कीजिए और इमीडिएटली अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए।
10: अच्छा,
11: और इसमें एक चीज और है इम्पोर्टेंट, एक 60 मिनट्स का गोल्डन रूल है।
10: ओके,
11: जितनी जल्दी हम रिपोर्टिंग कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारे पैसा रिकवर होने के भी अच्छे चांसेस होंगे। गारंटी नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हम रिपोर्ट कर पाते हैं उस चीज को उतना जल्दी, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि जो भी पैसा ट्रांसफर होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से ट्रांसफर होता है, तो वो बैंक्स, RBI और ये एजेंसीज मिलके कहीं पे आपको किसी स्टेज पे वो पैसा रोक सकते हैं। कभी कभी अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मैक्सिमम देखा गया है देवर मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व, मतलब जो स्कैमर्स के जो अकाउंट होते हैं एक अकाउंट कभी नहीं मिलता, मल्टीपल अकाउंट। तो बहुत सारे अकाउंट्स को कभी क्या होता है, जैसे 50 लाख ट्रांसफर हो गया तो उसमें से उन्होंने 20 लाख रिकवर कर लिया, 25 लाख रिकवर कर लिया। सो थंब रूल यह है कि जितनी जल्दी आप इसको रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसा रिकवर होने के चांसेस रहेंगे।
10: जी, डिजिटल अरेस्ट की दिशा में सरकार किस तरह के कदम उठा रही है?
11: हाँ देखिए, अभी जैसे मैंने आपको एक मैटर बताया था, अंबाला में एक केस हुआ जिसमें एक सीनियर सिटीजन कपल थे और वो जो मैडम थी लेडी, उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को लिखा।
10: अच्छा,
11: और एक सुप्रीम कोर्ट, अगर जो लोग लीगल लैंग्वेज थोड़ा समझते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की, अपने देयर ऑन देयर ओन उन्होंने उस कंप्लेंट को एज रिट पिटीशन मान लिया और उस रिस्पुटेशन के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया और बिल्कुल लेटेस्ट 4 अगस्त 2026 को अभी इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर आया है जिसके अंदर 14 गाइडलाइंस हैं जिसके अंडर काम किया जाएगा। उसके अंदर सबसे पहला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 4 वीक का टाइम दिया गया है कि उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाना है कि इसको इन अकाउंट्स को म्यूल इनको म्यूल अकाउंट जो बोलते हैं जो फ्रॉड के फ्रॉड्स के अकाउंट्स होते हैं और उनको प्लस उनका पैसा डेबिट होने से के रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं 4 वीक्स के अंदर आरबीआई ने इसमें अपना प्रेजेंटेशन देना है।
10: अच्छा।
11: और एक बड़ा अच्छा प्रपोजल उनका है वो अभी प्रपोजल की स्टेज में ही है सारी चीजें कि एक प्रपोजल है किल स्विच। एक किल स्विच प्रपोज किया गया उसके अंदर कि ये एक्सप्लोर की जा रही पॉसिबिलिटी कि क्या जो आपकी जो मोबाइल कंपनीज हैं अगर कोई कॉल अनएक्सपेक्टेडली लंबी चलती चली जा रही है तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर बन सकता है कि 1 घंटे बाद या उस थोड़े कुछ टाइम के बाद उस कॉल को ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट कर दिया जाए और जेन्युइन कॉल होगी तो वो दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। सो इससे मतलब एक ये भी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है।
10: ओके।
11: इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये स्टेट गवर्नमेंट से ये मांगा गया है कि क्या इसमें कैसा सिस्टम बन सकता है कंपेंसेशन टू विक्टिम्स।
10: अच्छा।
11: क्योंकि ये लेवल इतना बड़ा हो चुका है मैडम के और बहुत लोग इनोसेंट लोग इसमें सफर कर
10: फंस रहे हैं।
11: जैसे आपको मैंने बताया लाइफ टाइम सेविंग्स लोगों की चली गई।
10: बिल्कुल।
11: तो ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसको अभी ये सब चीजें प्रपोज्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी गवर्नमेंट ने इसमें जवाब देने हैं, बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से मतलब करने की कोशिश की जा रही
10: है। मतलब ये संज्ञान में है ये बातें और इस दिशा में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ मिलते जुलते सवाल हैं, जैसे कि सुनीता राव साहब का मैसेज है, अरविंद मल्होत्रा का मैसेज है, कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन जो हैं उनको

0: को आती हैं, तो उनको बताना जरूरी है कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या रेड फ्लैग हो सकते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट एक
1: जी.
0: चैलेंज है सीनियर सिटीजन को, क्योंकि सीनियर सिटीजन का थोड़ा सा लिमिटेशन रहती है टेक्नोलॉजी को लेके, वो कभी कभी फोन भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं. लेकिन सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनकी प्रोटेक्शन और हमारी प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली के लिए, सो उनको ये हमारी ड्यूटी होगी, हम यंगस्टर्स जो बच्चे हैं के अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस बारे में अच्छे से अवेयर
1: अवेयर करें,
0: करें.
1: जागरूक कीजिए. स्वाति गुप्ता भी यही पूछ रही हैं कि अगर किसी फैमिली मेंबर को इस तरह का कोई कॉल आता है तो हम उनको बिना डराए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. ये स्वाति जी का सवाल है.
0: हाँ देखिए, इस तरह का कोई भी कॉल, जैसे कि अगर पहली चीज मैं फिर कहूंगा एक प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है. आजकल ये बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, और लेकिन जब तक हमारे हम लोगों के पर्सनल लेवल पे ये चीजें नहीं होंगी तो मुश्किल होगा. तो अब इस तरह से अगर कोई कॉल आता है तो जैसे कि मैंने बताया जो जो चीजें हैं कि वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं हो सकती है, कोई पैसे की अगर बात की जाती है तो, या ये कहा जाता है कि आप अलग हो जाओ, किसी से बात मत करो,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये सब चीजें उनको समझानी होगी. जो भी आपके
1: हाँ.
0: रिलेटिव हैं, वल्नरेबल जो रिलेटिव हो सकते हैं, है ना.
1: निशा बंसल जी भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रही हैं कि अगर कॉलर हमें कहता है कि ना तो फैमिली में बात करनी है, ना लॉयर से, ना पुलिस से, तो हम क्या करें. तो आप
0: वो
1: बार बार
0: इमीडिएट
1: बता
0: रेड
1: चुके
0: फ्लैग है. अगर वो
1: हैं.
0: कहता है, देखिए मैं
1: जी.
0: फिर बोलूंगा, पुलिस ऑफिसर मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट जो होता है उसके अंदर आपको राइट है अपने लॉयर को कांटेक्ट करने का, अपने रिलेटिव्स को बताने का.
1: बिल्कुल.
0: अगर वो कहा जा रहा है कि आप किसी को नहीं बताएंगे और कॉल वीडियो पे चल रही है, ये मान लीजिए कि ये फ्रॉड
1: कि
0: है
1: फ्रॉड ही हो रहा है, स्कैम आपके साथ हो रहा
0: और
1: है.
0: आप इससे बाहर निकल जाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होने वाला है, आपको
1: जी
0: इमीडिएट बाहर निकलना है.
1: जी जी दिव्या अरोरा जी का सवाल है कि सर थोड़ा सा आप वकील हैं, हमें बताएं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशंस हमें किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए. गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से अगर कुछ आता है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं करनी चाहिए.
0: देखिए गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से, एक
1: फोन
0: मिनट,
1: पे नहीं करनी चाहिए टाइप्स.
0: देखिए जैसे कि बहुत बार ये आम तौर पे एक कॉमन कॉमन स्कैम है ओटीपी, है ना. ये इसके लिए एक तो हमको खुद भी इस मामले में भी, लेकिन सीनियर सिटीजन को एजुकेट करना जरूरी है, ठीक है. और ऑब्वियसली अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है, अपनी आपके जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है वो आप किसी से शेयर मत कीजिए. और देखो इवन बैंक्स भी ये कॉल कर कहते हैं कि हम लोग आपसे कभी भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं
1: नहीं
0: पूछेंगे
1: करेंगे.
0: जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल आपके जो बैंक का जो पासवर्ड है वो कभी भी वो नहीं, या आपका डेबिट कार्ड की डिटेल है वो कोई भी ऑथेंटिक एजेंसी होगी वो नहीं पूछेगी. और
1: जी.
0: अगर कोई स्लाइट सा भी ऐसा लगता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, आप इमीडिएटली रिफ्यूज कीजिए. ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ठीक है, हो सकता है वो जेन्युइन हो, कोई बात नहीं,
1: हाँ,
0: लेकिन आप मतलब आप प्रिकॉशन तो लेना उस चीज के लिए.
1: एब्सोल्युटली. राधिका मेहता कहती हैं कि सर व्हाट इज द सेफेस्ट रिस्पॉन्स अगर कोई हमें थ्रेटन कर रहा है अरेस्ट करने के लिए, तो क्या सेफेस्ट रिस्पॉन्स. आई थिंक आप बार बार बता रहे
0: कोई
1: हैं.
0: बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई
1: जी
0: नहीं, वो
1: जी
0: क्योंकि वो अलग कॉलर है.
1: हाँ.
0: देखिए सेफेस्ट रिस्पॉन्स मैं फिर वही कहूंगा, जो अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, देखो अरेस्ट जो होती है ना उसमें थ्रेट नहीं होता, अरेस्ट ही होते फिर वो, ठीक है. आपके अगेंस्ट ये क्या है, कहिए मैं, आप हमको एड्रेस बताइए,
1: जी.
0: पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताइए, कोर्ट जहां से बोल रहे हैं आप, हम वहां पर आते हैं, हम वहां पर आके बात कर लेंगे, जो भी होगा हमसे गलती हुई है कोई बात नहीं. तो आप जितना उनको डिटेल में अगर पूछेंगे कि पुलिस स्टेशन वगैरह, तो वो वहां से फिर उनको फिर परेशानी होनी शुरू हो जाएगी. और उस चीज को आप वेरीफाई, उसके बाद फोन कनेक्ट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं
1: वेरीफाई
0: कौन सा
1: कर
0: पुलिस स्टेशन
1: लीजिए.
0: है, कौन सा पुलिस ऑफिसर है. डेजिग्नेशन जेन्युइन पुलिस ऑफिसर को अपना डेजिग्नेशन बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं है.
1: हाँ बिल्कुल. विकास जैन साहब कहते हैं कि सर ये डिजिटल अरेस्ट के स्कैमर्स जो हैं वो कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स या फ्रेजेस को कॉमनली यूज करते हैं.
0: देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं, कॉमनली जो वर्ड्स उनके लिए यूज होते हैं,
1: जी
0: आपका जैसे कि आपका एक पार्सल
1: हाँ.
0: कस्टम्स में मिला है जिसमें ड्रग्स हैं, ठीक
1: जी
0: है,
1: जी
0: और आपके फोन से ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, जो इलीगल ट्रांजेक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन हैं, ये कॉमन चीजें वो यूज करते हैं. और जो हमेशा ऐसी होंगी जिससे आप इमिडिएटली डर जाएं।

जी, रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉज वर्सेस वर्चुअल ट्रैप के बारे में। श्री संजय गिरुद्रा साहब जो कि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में हमारे साथ हैं और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं 9868107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे यही कह रही हूं कि क्या पुलिस आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर सकती है या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको घंटों कैमरे के आगे बैठे रहने का आदेश दे सकता है या फिर कानून के नाम पर कोई आपके पैसे को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। अगर इन सवालों के जवाब में आपके अंदर कुछ हिचकिचाहट है तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेनबो हेल्पलाइन में आज हम समझ हैं डिजिटल अरेस्ट को, रियल लॉस क्या है वर्सेस वर्चुअल ट्रैप, और इसकी हकीकत क्या है डिजिटल अरेस्ट की, इसके पीछे छिपा वर्चुअल ट्रैप कैसे काम करता है, यही सब सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं श्री संजय गिरोत्रा साहब। आप हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। सर, एक सवाल हम तक आया था कि अगर हमने फ्रॉड के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया है अपना पैसा तो बैंक क्या किस तरह से एक्शन लेता है इसके बारे में?
1: देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर जितना जल्दी एक्शन होगा उतना एक्शन इफेक्टिव हो सकता है। बैंक्स की जहां तक बात है, देखिए पैसा जो है डिफरेंट स्टेजेस में ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां से बैंक के हाथ से बिल्कुल निकल चुका होता है, ठीक है, जहां पे कंप्लीट पैसे का विड्रॉवल हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से जितना जल्दी हम काम कर पाएंगे उसमें, जितना इसमें मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट।
0: जी जी। और एक सवाल है कि सिद्धार्थ का कि क्या सर कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट एजेंसी हमें कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओटीपी के लिए पूछ सकती है?
1: बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल, ये भी एक रेड फ्लैग है
0: जी।
1: कोई भी ओटीपी आपको कभी भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, इवन बैंक्स कहते हैं आपका भी कोई ओटीपी वो लोग अपना आपसे मांगते हैं। तो लेकिन मैं जैसे

0: कहा ना इनको कि बेसिकली इसमें क्या होता है, अथॉरिटी आपको फियर दिखाया जाता है और अर्जेंसी अर्जेंसी क्रिएट कर देती है कि ये अर्जेंट है, और फिर आपको आइसोलेट किया जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है, कंप्लायंस कराया जाता है आपसे और
1: जी
0: पैसा ऐंठा जाता है।
1: जी
0: ये
1: जी
0: बेसिकली उनका पर्पज रहता है, और आपको सोचने का टाइम नहीं देना चाहते, वो किसी से कंसल्ट करने का टाइम वो दे नहीं देना चाहते।
1: और बस प्रोग्राम अब अपनी समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते क्या एडवाइस आप हमको देना चाहेंगे टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स?
0: देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कानून को समझिए, आपको लॉज के बारे में ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी गिरफ्तारी एक प्रोसीजर से होती है,
1: जी
0: ठीक है, और गिरफ्तारी हमेशा फिजिकल होती है, ना कि वीडियो के थ्रू। अगर कोई इंसान आपको बहुत अर्जेंटली डराने की कोशिश कर रहा है और अथॉरिटी के साथ रहने की कोशिश कर रहा है, और वीडियो कॉल से आपको निकलने नहीं देना चाहता या कॉल से निकलना देना चाहता, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और कोई भी अननोन जो फोन है उसको हमेशा है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन डाउट से देखना जरूरी हो गया है आज के जमाने में, क्योंकि हमको कई बार ऐसा होता है कि अननोन फोन लेने भी पड़ते हैं, हो सकता है हमारे किसी रिलेटिव का फोन हो और जल्दी कहीं कोई फंसा हो। बट बी केयरफुल कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को आज ही, मैं मॉर्निंग में कॉल कर रहा था तो मुझे एक मैसेज आया कि वो इस पे ही आ रहा था। कभी कभी ये इमीडिएट होते हैं, मैसेज क्यों आ रहे हैं,
1: जी जी
0: अगला
1: जी
0: कॉल स्कैमर का हो सकता है ये बोला
1: हाँ
0: उन्होंने,
1: हाँ
0: ठीक है,
1: हाँ
0: तो ये मान के चलिए कि अगला कॉल स्कैमर का एक्चुअल में हो सकता है।
1: एक्चुअली हो सकता है बिल्कुल. और व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं आजकल कितने तरह के हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: अननोन नंबर से आए किसी भी लिंक को आप बिना सोचे समझे नहीं ओपन कीजिए. वो एक सेकंड की गलती जो है, आपके आपने जैसा कहा, जन्मों की जमा पूंजी को आप खो सकते हैं.
0: बिल्कुल
1: अलर्ट रहने की जरूरत है. संजय जी ने हमको आज यही बताया, डिजिटल अरेस्ट, रियल लॉस वर्सेज वर्चुअल ट्रैप, इसके बारे में आज हमने बातचीत की. और थैंक यू वेरी मच संजय जी फॉर बींग विद एस.
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
1: और इसी के साथ मैं आकृति भी आज की प्रोग्राम से विदा लेते हुए यही कहना चाहूंगी कि मुझे तो आज ये समझ में आ गया है कि डिजिटल अरेस्ट की सबसे ज्यादा जो जिस वजह से होता है वो होता है डर. जो डर है उसको वो ट्रैप कर लिया जाता है. अलर्ट और अवेयर रहना है, डरना नहीं है. और साथ ही साथ याद रखना है कि कोई भी असली कानून हमें वीडियो कॉल पर डराकर या धमकाकर या तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है. अगर ऐसी कोई भी सस्पिशियस कॉल आती है तो घबराहट में कोई भी कदम ना उठाएं, कॉल को तुरंत काटें. संजय जी ने हमें बताया, संबंधित ऑफिशियल से ऑफिशियली जाकर वेरीफाई करें, और क्योंकि साइबर अपराधी हमारे डर को ही सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं और हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है. अलर्ट रहिए, सेफ रहिए और डिजिटल वर्ल्ड में वाइजली कदम उठाइए. आकृति को दीजिए विदा. नमस्कार.

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे की एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने अपनी ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग की घटना में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एमआर अर्जुन हरिहरन अमसाख रुरन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना। और दोस्तों, आशियाना में हम बात करते हैं परिवार की और कैसे इस परिवार में जो परिवार के लोग हैं उनके साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस पर होती है ढेर सारी बातचीत। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन की, कि कैसे परिवार में डिसिप्लिन ज़रूरी है और कैसे घर के सभी सदस्यों को डिसिप्लिन किया जाए और क्या है इसका महत्व।

बिल्कुल दोस्तों, जब परिवार में हम सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और कहीं ना कहीं जब परिवार का कोई भी एक व्यक्ति साथ नहीं होता तो उसकी कमी तो महसूस होती ही है। लेकिन यहाँ ज़रूरी ये भी है कि वक्त जो है वो निकल ना जाए, इसलिए ज़रूरी है वक्त को बांध कर रखना। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम वक्त को बांध कर रख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अनुशासन के साथ जीना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो घड़ी है ना, वो बड़ा मायने रखती है। क्योंकि अनुशासन का मतलब हर बात पर रोक टोक या सख्ती नहीं है, बल्कि जो हमारी डेली की जिम्मेदारियां हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको समय पर करना है। जैसे चाहे वो समय पर उठने की बात हो या फिर अपना सामान सही जगह पर रखने की बात हो, भोजन की टाइमिंग हो या फिर घर के जो छोटे छोटे से नियम है कि अगर सब लोग साथ में बैठे हैं तो मोबाइल को रख दें दूर। ये जो छोटी छोटी सी आदतें हैं ना दोस्तों, ये बच्चों को और बड़ों को दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी हैं और ये दोनों के ही अंदर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करती हैं।

0: रोहन बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। दोस्तों आज आशियाना में हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, यानी कि घर में डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए। और पता है घर में डिसिप्लिन तभी इफेक्टिव होगा जब नियम ना सबके लिए समान होंगे, यानी कि ऐसा ना हो कि आप बच्चों को तो कह रहे हैं कि खाते टाइम मोबाइल नहीं चलेगा लेकिन आप खुद मोबाइल में लगे हुए हैं। आपको भी उस नियम को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमारे बिहेवियर को देखते हैं और उसे देखकर ही सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो भी डिसिप्लिन्ड हों तो उसे सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद उसका पालन करें। घर के कुछ सरल से नियम होते हैं, उनको आप मिलकर तय कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं कि उनका पालन आप भी करें, और तभी पूरा परिवार उन नियमों का पालन करेगा। फिलहाल ये बढ़िया सा गाना आपके लिए प्रोग्राम आशियाना में, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

क्योंकि उन्हें समझाना ज़रूरी है कि किसी नियम के पीछे क्या कारण है। अगर आपने घर के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे डिसिप्लिन रहें और घर के बाकी लोग भी, तो ज़रूरी है कि आप बच्चों को समझाएं, उनसे बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर होमवर्क का समय आपने डिसाइड किया है और आपने पढ़ाई के साथ साथ खेल और आराम के लिए भी, जिससे बच्चों को पर्याप्त समय मिले, इसलिए आपने एक टाइम टेबल बनाया है। लेकिन हाँ, कभी कभी आप बच्चों को छोटे छोटे ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे कि वो पहले होमवर्क करना चाहते हैं या फिर नाश्ते के बाद, कुछ पेट पूजा करने के बाद, कुछ ऐसे ऑप्शन देने से होता क्या है ना, बच्चों में डिसीजन लेने की एबिलिटी डिवेलप होती है और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का भी विकास होता है कि हाँ, काम इम्पॉर्टेंट है, पहले होमवर्क इम्पॉर्टेंट है, पहले उसको किया जा सकता है। हो सकता है बच्चा पहले भूखा हो तो वो दूसरा ऑप्शन चुने, लेकिन हाँ, आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं और प्यार से उनसे अपने मन की बात, यानी कि वो रूल्स, वो डिसिप्लिन की आदत उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अनुशासन जो है ना, वो डर से नहीं होता बल्कि समझ से, बेहतर तरीके से उनके जीवन में वो अपना सकते हैं।

मन तो कुछ ऐसा ही होता है कि कभी कभी वो एक तय ढांचे में ढलना नहीं चाहता है, एक ही रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करें, ऑफिस तो रोज़ रोज़ होता है मंडे टू फ्राइडे, और तो सुबह की भाग दौड़ भी होती है, स्कूल भी होता है, और अगर रात में देर तक जागें तो सुबह सुबह उठने में होती है परेशानी, और उसका पूरा असर ना पूरे परिवार के टाइम टेबल पे पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात को समय से सोएं, जिससे कि सुबह समय से उठ सकें। पढ़ाई, काम, भोजन और एंटरटेनमेंट के लिए भी एक आप कॉमन सा रूटीन बना सकते हैं। हर दिन एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई टाइम टेबल बना लेते हैं, कोई एक तय समय निर्धारित कर लेते हैं, तो उससे मदद तो मिलेगी। हाँ हाँ, ये बात तो है कि कभी कभी रूटीन बिगड़ सकता है, कभी कहीं जाना पड़ सकता है, तो परेशान न हो, बच्चों को दोष न दें, और हाँ, अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं, बल्कि अगले दिन की शुरुआत करें एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जनगणमन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जनगणमन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF।

0: वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।
4: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
3: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
4: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
3: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
5: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
9: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
3: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
9: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
3: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
9: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
3: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
9: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
3: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
9: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
3: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
9: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
3: जी दादी।
4: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
2: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
3: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
2: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
9: जी।
2: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
9: जी जी, अभी लाई।
6: लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ। शाबाश।
3: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
6: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
2: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। शाबाश।
3: जी दादाजी।
4: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
2: कैसी तबीयत है बेटा?
3: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
2: बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो, दवा पी लो, चलो उठो उठो। शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
4: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
3: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
5: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए, कुछ आराम आया बेटा, है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
3: जी दादाजी।
6: चलो चलो।

0: करने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
1: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
2: ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो साहब।
2: चल सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब
2: इसको हंटर मारो।
3: साहब
4: जी सर।
3: साहब
5: कमाल जी, कमाल जी से कमेंगे।
1: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
6: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
6: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
0: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी जी, मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पहरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो, साहब साहब साहब ऐसा मत करो।
2: चलो हटो,
3: साहब साहब साहब।
2: ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो साहब।
2: चल सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब
2: इसको हंटर मारो।
3: साहब
4: जी सर।
3: साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब साहब सा

0: corbata, ना।
1: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
2: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
1: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
2: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
3: भाई कान्हू।
4: जी भैया।
3: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
4: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
3: क्या हुआ?
4: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
3: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
4: हाँ भैया।
3: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
4: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
3: तो फिर
4: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
3: हाँ, ठीक कहा तुमने।
4: हाँ,
3: ऐसा ही करेंगे।
4: जी भैया।
2: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
1: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
2: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
1: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
5: अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीन जब्त कर
6: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
7: सही बोले, सही
6: कहे। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
8: हाँ, सही कहा।
6: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है, सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
3: तो भैया सही बात
5: कह रहा है, बहुत सही कह रहा है।
6: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
0: बताओ भैया, हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
6: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
7: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
6: अब करो या मर जाओ,
7: अब करो या मर जाओ।
6: अबुआ राज अबुआ किसुम,
7: अबुआ राज अबुआ किसुम,
6: अबुआ राज अबुआ किसुम।
2: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिद्धो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: सेहत सिर्फ बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन को पूरे उत्साह के साथ जीने का नाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैं हूं आपकी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। एक छोटा सा मच्छर, लेकिन बीमारी का असर बहुत बड़ा। फाइलेरिया ना सिर्फ शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि एक गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया की, जानेंगे ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज और सबसे महत्वपूर्ण इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एस के रोसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: शिल्पा जी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को भी मेरा हार्दिक नमस्कार।
1: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फाइलेरिया रोग क्या है।
2: देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर आज वार्ता करने के लिए बुलाया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फाइलेरियासिस है, ये एक बीमारी है जो हमारे भारतवर्ष के लगभग 20 राज्यों की समस्या है, और 20 राज्यों में भी अधिकतर जो 10 राज्य हैं उसमें ये काफ़ी एक थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस की बीमारी है, कहीं ना कहीं इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। अब आपने पूछा फाइलेरिया है क्या। बेसिकली फाइलेरिया एक परजीवी रोग है, यानी पैरासिटिक डिजीज़ है, जो कि दो सूक्ष्म कृमि होते हैं जो हमारे शरीर को इफेक्टेड कर सकते हैं, विक्टोरिया बनकरप्टाई और ब्रुजिया मलाई। मगर से लगभग 94% केसेस में विक्टोरिया बनकरप्टाई है जो कि हमारे को ये करता है, और ये मच्छरों के काटने से, मच्छर में भी एक खास किस्म का मच्छर क्यूलेक्स जो उससे ये फैलता है। यदि मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं तो ये किसी भी, और वहाँ से ये खून को चूसते हैं, फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को कुछ समय पश्चात, लगभग 2-3 हफ्ते के बाद में जब वे स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके अंदर ये बीमारी फिर उसके अंदर डाल देते हैं, उसके शरीर पहुँच जाते हैं। और मुख्यतः बीमारी जो क्या करती है, हमारे शरीर के लस्सी का तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको अफेक्ट करती है। तो उसके परिणाम भी अलग अलग स्टेज में अलग अलग रूप में होते हैं इसके।
1: तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं कि कैसे पता लगेगा कि फाइलेरिया है।
2: देखिए, जब ये मच्छर आपको काटता है और आपके शरीर में, इसको थोड़ा लाइफ साइकिल समझने की थोड़ा जरूरत है कि लाइफ साइकिल क्या है, जो ये फाइलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो फाइलेरिया, एडल्ट माइक्रो फाइलेरिया जो होता है, उसका जो मेल और फीमेल होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और फिर फीमेल जो माइक्रो फीमेल फाइलेरिया पैरासाइट है वो जब काफ़ी सारे माइक्रोफाइलेरिया रिलीज करता है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, और उसको ही जब कभी क्यूलेक्स मॉस्किटो सक करता है, फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है उस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का, और फिर वो थर्ड स्टेज लार्वा जब उसमें डेवलप होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर, वो जब किसी मनुष्य को काटता है तो वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और यूजुअली इस पूरे प्रोसेस में जो मच्छर के अंदर लगभग 2-4 हफ्ते का समय लगता है जिसमें ये पूरा वो उसको अफेक्ट करता है। मगर मनुष्य में जब ये वापस माइक्रोफाइलेरिया थर्ड स्टेज लार्वा इंजेक्ट करता है, उसके इंजेक्ट करने से और उसके बीमारी के डेवलप होने में कभी कभी 6 साल, कभी 8 साल, कभी 10-12 साल तक लग सकते हैं। तो तुरंत आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या आपको हुआ, मगर प्रारंभिक अवस्था में जब कोई शुरुआती लक्षण जो होते हैं, इसमें बुखार हो गया, हाथ पाँव में दर्द हो गया, जहाँ पूरे शरीर में हल्की सी सूजन हो सकती है, और लंबे समय तक यदि रहेगा, खासतौर से जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम है जहाँ पे आपका लसीका तंत्र होता है, उसमें एक एक दर्द रहेगा उसके अंदर, उसमें एक आपको लगेगा कि हाथों में या कहीं पैरों में पूरा जो सिस्टम है वहाँ लाली सी आ जाएगी, और बाद में ये वो अवस्था है जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड हो गया। एक दूसरा फाइलेरिसिस था, उसको बोलते हैं ओकल्ट फाइलेरिसिस, वो कहीं ना कहीं उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम, हमारे सांस से संबंधित समस्या ज़्यादा होती हैं, जिसमें ईसिनोफिलिया हो जाएगा, आपको दमे जैसा अवस्था होगी, सांस फूलने लगेगी, वो ओकल्ट फाइलेरिसिस बेसिकली वो शुरुआती लक्षण है। मगर बाद में जब विकराल रूप हो जाएगा उसका, तो विकराल रूप में क्या होगा कि वो हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, लसीकरण तंत्र के विभिन्न नलिकाएं जो होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके अवस्था से उसमें बाद में हाइड्रोसील अंडकोशों में वृद्धि हो सकती है, या किसी महिला के जननांग या किसी पुरुष के जननांग में सूजन आ सकती है, हाथ पैर सूज सकते हैं, और बहुत ही गंभीर अवस्था होती है इसमें, बोलते हैं एलिफेंटियसिस, हाथी पांव। आपने देखा होगा कई दफे पैर बहुत मोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैर में एक फफोले से पड़े हुए हैं, या फफोले नहीं मतलब पूरा ऐसा लगता है खाल बहुत मोटी हो गई है, वो अवस्था पहुंच जाती है एलिफेंटिस। आपने देखो कई बार स्टेशन पे कुछ लोग उसको एक गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं उस बीमारी को, भीख मांगने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, मगर वो एक वैसी स्टेज है कि वो उस अवस्था तक पहुँच गया तो फिर वो थोड़ा लाइलाज हो जाता है, उसका इलाज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एलिफेंटिस का। ये इसके लक्षण इस रूप में होते हैं विकरालता के हिसाब से।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पर, इस पर बातें हम और भी करेंगे, जानेंगे इस बीमारी के इलाज के बारे में और ये क्यों हो जाती है, क्या है इसके बारे में। इससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के रसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम फाइलेरिया पे बात कर रहे हैं, तो इसके लक्षण के बारे में आपने बताया है, तो क्या इसके लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं या कुछ देर बाद दिखाई देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
1: हाँ, हेलो।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था। जैसे कि अभी आपने बताया कि उसमें लक्षण होते हैं, कहीं सूजन हो गया या फिर लालिमा टाइप का हो जाता है, तो मेरा ये सवाल है कि मलेरिया और फाइलेरिया दोनों का कुछ कुछ सिम्टम इसी टाइप से रहता है क्या? उसमें कैसे हम लोग मालूम चल जाएगा कि ये फाइलेरिया हुआ है या मलेरिया हुआ है?
2: आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम अमित उपाध्याय है,
2: हम बिहार से बोल रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, ये जो बरसात का मौसम है ना, इस मौसम में विभिन्न प्रकार के बुखार होते हैं, उसमें मलेरिया भी हो सकता है, फाइलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है। आपका प्रश्न था मूलतः कि मलेरिया और फाइलेरिया के बुखार में अंतर क्या होगा। देखिए, मलेरिया का जो बुखार होता है ना, उसमें अमूमन क्या होता है कि जाड़ा देकर बुखार आता है, बिल्कुल कपकपी आएगी, हाथ पैर में एकदम बहुत भीतर ठंड लगेगी, रजाई उड़ाएंगे बहुत ज़्यादा उसको, और फिर अचानक से उसको बहुत तेज बुखार आएगा, और फिर जब बुखार आएगा तो खूब सारा पसीना निकलेगा, और उसके बाद में कहीं जाके फिर वो लगभग 2-3 घंटे का ये पूरा साइकिल होता है। इसको मतलब 3 स्टेज होती हैं कि कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। तो ये मलेरिया में यूजुअली इस तरह की चीज़ होती है। फाइलेरिया में क्या है कि जब ये जो लक्षण है, ये इस तरह के क्लियर कट लक्षण इस तरह के नहीं है। इसमें बुखार भी आएगा, उसमें पूरे शरीर में दर्द थोड़ा सा हो सकता है, मतलब इतना दर्द नहीं होगा, मगर कहीं कहीं कहीं ना कहीं जो आपको बुखार होगा उसमें हाथ पांव में दर्द, हल्की सूजन, जहाँ पर आपको जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे आपका बगल की कांख हो गई या आपकी जो जांघ की गिल्टी हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी फाइलेरिया के अंदर, मगर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्टेज। यूजुअली अब आपका कुछ प्रश्न था, इसमें कुछ पूछा।
0: हाँ जी, मैंने पूछा था कि इसके लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं, कुछ दिनों बाद दिखाई देते हैं।
2: यही मैं इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाते हुए जवाब देना चाह रहा हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जो सिम्टम इतनी जल्दी इसके नहीं आते हैं, क्योंकि जो आपको मच्छर ने काटा और उसके सिम्टम आने तक, इसके सिम्टम आने में कई दफ़े 5 साल, कभी 6 साल, कभी 8 साल तक लग सकते हैं, तो तुरंत उसका कुछ मालूम नहीं पड़ता। मगर धीरे धीरे अंदर कहीं वो फाइलेरिया का जो लार्वा है, वो कहीं ना कहीं आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम है, आपके जो शरीर का लसीका तंत्र है, उसको प्रभावित करता है, और यूजुअली धीरे धीरे धीरे धीरे अल्टीमेटली वो स्टेज आती है कि उसमें क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन ग्रुप में कई अलग चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाथी पाँव या इस तरह के लक्षण आ जाएंगे, हाइड्रोसिलाई, मगर वो जो लक्षण आ जाते हैं फिर वो इररिवर्सिबल होते हैं। यूजुअली उसके अंदर फिर परिवर्तन नहीं आता है, फिर वो एक फिक्स हो गया, वो आपके जो डेवलपमेंट हो गया, जो आपका हाथी पाँव यदि हो गया, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में काफ़ी डैमेज कर देता है, वो स्टेज आ जाती है। जी,
0: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: जी, नमस्कारम।
0: नमस्कारम, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: फाइलेरिया, हाथी पाँव, फील पाँव, इसके वैक्सीनेशन के बारे में कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद।
2: जी गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, मगर अफसोस ये है कि इसका वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं है कोई भी, और इसमें जो अभी फिलहाल ये है कि इसकी इसके लिए जो दवाइयां ही इतनी प्रभावी हैं, यदि उसको दवाइयों को यदि आप लिया जाए तो वही इसका इतना प्रभाव देती हैं कि वो आराम से इसका इलाज हो सकता है, और इसमें वैक्सीनेशन का भी फिलहाल कोई है नहीं हमारे पास में अभी इसको कहीं। जी,
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। इनके दो प्रश्न हैं, ये लिखते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस वन कैन टेक फॉर फाइलेरिया एंड हाउ इट इज डायग्नोस्ड एंड व्हाट्स द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट।
2: आपने सागर जी, प्रश्न क्या है बेसिकली, आपका पूरा कार्यक्रम ही आपने पूरा समेट लिया अपने प्रश्न के अंदर। आपका पहला प्रश्न है कि, चलो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, शुरुआत से लेता हूँ, डायग्नोसिस। देखिए, डायग्नोसिस जो उसका कैसे कर सकते हैं, इसमें इसके अंदर एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ ये है कि जो माइक्रोफाइलेरिया का जो लार्वा होता है ना, माइक्रोफाइलेरिया जो शरीर में निकलते हैं, जो जब ये दोनों मेल फीमेल लार्वा जो हमारे शरीर में होते हैं और जो बड़े हो जाते हैं, इसके अंदर फिर माइक्रोफाइलेरिया कई सारे डेवलप होते हैं इसके अंदर, इनका एक खास चीज़ होती है, मतलब कुदरत को एक, मैं वाकई में एक चीज़ कई सारी चीज़ मानता हूँ कि कुदरत बहुत ही अजीब चीज़ है, वो हर चीज़ हर किसी का ध्यान रखती है। ये क्योंकि मच्छर रात के समय काटता है और इसको माइक्रोफाइलेरिया की अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है तो वो माइक्रोफाइलेरिया के लार्वा जो है, माइक्रोफाइलेरिया जो निकलता है वो भी रात के समय ब्लड में आएगा। रात के समय 10 बजे से लेकर रात के 2-2:30 बजे तक वो ब्लड में आता है। मतलब कितना सामंजस्य आपस में है कुदरत का कि वही उसी टाइम में वही समय है जबकि रात को मच्छर काटेगा तो वो उस टाइम ही, तो उसको हम बोलते हैं कि यूजुअली इसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करके नाइट ब्लड सैंपल लेते हैं जब कोई डायग्नोसिस करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको रात में तो किसी को जांच नहीं, रात में तो कोई आएगा नहीं जांच करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कई दफ़े दिन में यदि जांच करनी होती है तो एक गोली होती है वो उस गोली को खिला के वो सारे माइक्रोफाइलेरिया जो होते हैं वो ब्लड में निकल आते हैं, फिर आप खून की जांच करके उसको जांच कर सकते हैं। मगर अभी नई नई तकनीक भी आ गई हैं जिसमें कि हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या स्ट्रिप टेस्ट के माध्यम से हम वैसे दिन के समय भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये तो हो गया डायग्नोसिस की बात। दूसरा है प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन बरत सकते हैं। देखिए ये बीमारी तो जब है कि मच्छर के काटने से होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो सकती, मगर ये इसके लिए मच्छर के बीच में उपस्थिति आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अगर आप मच्छर ही ना पैदा होने दें तो जाहिर सी बात है बीमारी का समूल नाश हो सकता है। बल्कि इसी बीमारी का नहीं, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में
0: कई बीमारी
2: होती हैं। मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एडीज हो गया, और सब ये एडीज क्यूलेक्स एनोफिलीज जितने मॉस्किटोज हैं ये सब विभिन्न प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं। तो यदि हमारा उद्देश्य हो कि मच्छर को पैदा ही ना होने दें, अगर ये उद्देश्य हो तो हम कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो कृपया करके पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल कहीं भी जहां कहीं आप पानी खट्टा देखें, जहां कहीं देखें पानी खट्टा है, गंदा पानी, क्यूलेक्स मॉस्किटो का एक खास चीज है ये गंदे पानी में पैदा होता है। गंदा पानी मतलब कि जो गटर का पानी है, नाली है, उनमें पैदा होता है ये जो मच्छर है। तो कहीं भी यदि आपको लगता है कि नाली में पानी खट्टा है उस पानी को बहा दें, या कहीं भी आपको अगर पानी कहीं दूसरी जगह इकट्ठा है तो उसको भी आप देखें पानी की जितना हो सके पानी गंदे पानी को वहां इकट्ठा ना होने दें। तो कोशिश करें कि मच्छर पैदा ना हो। दूसरी तरीका हो सकता है कि आप अपना पर्सनल प्रोटेक्शन, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कैसे अपने आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब मतलब वैसे तो बड़ा अजीब लगता है कि बरसात के मौसम में यदि आपसे कहा जाए कि पूरे शरीर ढककर रखिए अपना, क्योंकि बरसात के मौसम में वैसे ही आर्द्रता बहुत होती है, नमी बहुत होती है, उस समय पसीना भी बहुत आता है, मगर यदि आप अपने पूरे शरीर के अंगों को ढककर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और नीचे मोजे तक अपने पहने कपड़े पड़े पहने ताकि आपको मच्छर काटने ना पाए, तो कहीं ना कहीं उसका, या दिन में कभी आप मौका लगे तो अपने जो मॉस्किटो को भगाने वाली क्रीम होती है वो लगा कर रखें। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। हमें याद है बचपन में बिना मच्छरदानी के रात को हम सोते नहीं थे, मगर अभी वो एक फैशन कह लो क्या कह लो वो सब खत्म हो गया है वो मगर कहीं ना कहीं मच्छरदानी का उपयोग यदि करते हैं तो आप मच्छर काटने से बच सकते हैं। तो तीसरी चीज ये है कि आप अपने, और फिर चौथी चीज है कि विभिन्न प्रकार की चीजें आजकल बाजार में उपलब्ध हैं जो मच्छर को भगा सकती हैं।

0: और आप सरकारी एजेंसीज को बोल सकते हैं कि वो आपके घरों में आकर, क्योंकि ये मच्छर जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मच्छर जो है ये घर के अंदर रहता है, घर के अंदर रह के काटता है, तो कहीं ना कहीं, और जो रहता भी तो घर के अंदर ही रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी एजेंसियों को बोलेंगे तो आपके घर में आके इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, DDT या कुछ भी आपके घर में जो स्प्रे कर सकते हैं, या इंसेक्ट पायरेथ्रल इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, वाके स्प्रे कर सकते हैं और उसका इफेक्ट काफी समय तक रहता है, तो आप उनको बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मच्छर आपके घर पर नहीं होंगे। तो दूसरी चीज होगी प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन बरतें। तीसरी चीज आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब सागर जी ने पूरे प्रश्न में, अपने प्रश्न में पूरी कार्यक्रम का सार समो दिया है, सागर बन गया है उनके प्रश्न। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यह है कि इसके अंदर बहुत ही साधारण सी दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध हैं, और वो उसको नियत समय तक, नियत दिन में 2 बार या 3 बार, इसमें 2 या 3 तरह की गोलियां होती हैं, ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सी गोली देते हैं और आप किस इलाके में आते हैं। ऐसे इलाके में जहां पर 2 गोलियों देनी, या कोई इलाका जहां पर 3 गोलियां देनी है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है, और कितने समय दे देनी डॉक्टर आपको बताएंगे। और मगर इसमें एक और चीज है, कहीं ना कहीं इसमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहा है वो कार्यक्रम का महत्व बहुत है, जिसमें हम बोलते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि सर्व जन दवा सेवन, ताकि सभी लोग एक साथ उस दवा को लें। मगर वो ये जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हर जगह नहीं है, जहां जहां इसका विकराल रूप है, जहां जहां एक पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस इसका है, इस बीमारी का, तो वहां पर इसमें ये दवाइयां विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो ग्राउंड लेवल पे कार्य काम कर रहे हैं, उनके द्वारा दवाई दी जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इसके बारे में हमें बताया, एमडीए के बारे में, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताइए कि इसे कैसे बचाव के लिए अभियान है सरकार द्वारा, और इसे कैसे बचा जा
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है?
0: जी मैं मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि मैंने इसमें काफ़ी जगह मैं इसमें गया हूँ, और बहुत जगह मैंने इसके अंदर काम किया है मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं इसका एक, ये जो कार्यक्रम है ना, इसमें मुझे एक चीज़ वाकई में एक लगता है कि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा बहनें कितना काम करती हैं, मैंने ये देखा वाकई में, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जिस तरह से बेचारी काम करते हैं सभी लोग, मतलब जो आपका मेडिकल ऑफिसर से लेकर, मलेरिया ऑफिसर से लेकर, और जो विभिन्न एजेंसियां जो काम करती हैं इसके अंदर, ये सिर्फ साल में 2 बार, पहले साल में 2 बार होता था कि जो नेशनल डिवर्मिंग डे, जिस दिन एक राष्ट्रीय कृमि रोग निदान दिवस मनाया जाता था, जिसमें कि जो पेट में कीड़े होते हैं उसके लिए एक दवाई दी जाती थी, 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये दी जाती थी, उसी के साथ मिलाकर ये उन्हीं दोनों के साथ में ही 2 बार ये प्रोग्राम चला है, जिसमें सर्वजन दवा सेवन का प्रोग्राम किया था कि सभी को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एल्बेंडाजॉल जो गोली दी जाती है, जो कीड़ा मार की दवा थी, इसमें साथ में इसकी फाइलेरिया की दवा भी साथ साथ में देने का प्रोग्राम इसमें शुरू किया है। इसमें एक चीज यह है कि यह सिर्फ उसी दिन नहीं होता, इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू करते हैं बेचारे, ये जितनी आशा वर्कर्स हैं बहुत पहले से इसकी तैयारी करती हैं, पहले वो घर घर जाकर देखती हैं कौन कौन, सभी का एक लिस्ट बनाती हैं, परिवार सहित पूरे गांव के लोगों की, कौन कौन है, किस कौन कौन रह रहा है यहाँ पर, किस किस को बीमारी है, किस किस को या आपका फाइलेरिया की बीमारी संभावित हो सकती है कि नहीं, किस किस को एलिफेंटिस हाथी पांव है, किसी की हाइड्रोसील है, या किसी की कहीं ब्रेस्ट में कहीं स्वेलिंग है, वो सब पूरा एग्जामिन करके सब कुछ पूरी लिस्ट बनाती हैं, वो सारा कुछ करती हैं, और फिर एक खास नियत दिन, यानी कि जो जिस दिन डिवर्मेंट डे होता है, तो उसी दिन ही घर घर जाकर, डिपेंड करता है कि वो एरिया आपका, वो जिसमें 2 गोलियां देनी वाली होती हैं या जिसमें 3 गोलियां देनी है, वो उसमें आता है कि नहीं आता, फिर घर घर जाकर उन सबको अपने सामने दवाई खिलाती हैं वो। ये इसमें खास तौर से ये चीज जरूरी है कि ऐसा नहीं कि घर में अगर चार लोग हैं, 4 में से 2 अगर काम पर रहे हैं तो उनकी दवा घर में रख दो, घर में रहे वो बाद में खा लेंगे, नहीं, वो वहीं अपने सामने दवा देती हैं वो दवाई, और यदि वो नहीं है तो शाम को उसके घर में दोबारा जाती हैं बेचारी आशा आशा बहनें, और तब तक जब तक कि वो पूरा आपका साइकिल पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ये मैंने इतना जो लोगों का इसके अंदर रुझान और इतना ज़्यादा सेवा भाव जब मैंने देखा, मैं कई जगह गया हूँ इसके लिए, पीलीभीत, कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, रायपुर, महासमंद, नर्मदा, भरूच, डांग, शहडोल, उमरिया, पता नहीं कितनी जगह पे जाके मैंने देखा मैंने। मगर आशा बहनों का जितना मैंने योगदान इनका देखा, और जो बेचारे दिन रात मेहनत करके इतना काम करते हैं, बाकी मैं सल्यूट करता हूँ उन सबको। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है इसमें इस आशा बहनों का बहुत बड़ा योगदान है इसको सफल बनाने में। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि घर घर जाके वो पूरी लिस्ट बनाती हैं, दवाइयाँ देती हैं, तो जैसे हमारे श्रोताओं ने भी पूछा था वैक्सीनेशन के बारे में, तो कोई ऐसी दवाई नहीं कि इंसान पहले ले ले तो ये हो ही ना, या जिनको है उनको ही दवाई दे के तभी वो क्योर हो सकते हैं?
0: नहीं, अब इसमें एक चीज और आती है कि क्या ये दवाई सिर्फ उनको देनी है जिनको बीमारी है? ना, ये सभी को, चाहे बीमारी है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब किसी को मच्छर ने काट, अब एक गांव में कोई व्यक्ति है जिसको कि फाइलेरिसिस है, अब मच्छर ने उसको काट लिया, क्यूलेक्स मच्छर ने काट दिया, अब उसने किसी और को काटा, तो जरूरी नहीं कि उसको सिम्टम तो नहीं अपीयर हुए किसी व्यक्ति को, उसको तो 6 साल, 7 साल, 8 साल लग सकते हैं समय तो अपीयर होने में। तो ऐसा नहीं कि कोई सिम्टम शुरुआत में नहीं है, मगर जो व्यक्ति को उसने काट लिया और कहीं ना कहीं उसको माइक्रोफाइलेरिया उसके शरीर में डेवलप हो गया, उसको साइन या सिम्टम कुछ अपीयर नहीं होंगे उसके अंदर, मगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज, मच्छर उसको काट के दूसरी बीमारी को फैला सकते हैं। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दिखने में स्वस्थ लग रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर माइक्रोफाइलेरिया नहीं हो। तो इसीलिए ये जो माइक्रो जो भी ये दवाई मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसमें सभी व्यक्ति जो उस इलाके में हैं, चिन्हित हैं, कोई भी जितने भी लोग रह रहे हैं वहां पे, चाहे वो स्वस्थ है या रोग से ग्रसित है, सभी को ये दवा देनी होती है। मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ ये गोलियां ही इसका इलाज है, मगर वह भी वैक्सीन फिलहाल नहीं है।
1: जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पे। तो डॉक्टर साहब, आपने इसके बारे में हमें बताया। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, इस नाचीज को राजेंद्र कहते हैं और 48 वर्ष मेरी उम्र है।
1: और कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, करमपुरा।
1: अच्छा जी, बताइए राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर सर दोनों को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून,
3: नमस्कार।
2: हाँ, तीन मेरे सवाल है और एक मेरा मिथ है। पहला सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में तीन मौसम की 6 ऋतु पाई जाती है 12 महीने। अब मेरा सवाल ये है मौसम की फैलेरिया जो है और भी मच्छर जो होते हैं नहीं मिलते, कम से कम मिलते हैं। दूसरा सवाल की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने घर में एसी कूलर या पंखा ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें इस मच्छर से हमें निजात मिले या कम ही आए। और तीसरा मेरा मिथ ये है कि मैंने सुना कि इलाकों में फर्नीचर का ज्यादा काम होता है लकड़ी का, वहाँ जो है किसी भी किस्म के मच्छर जो है वो नाके बराबर मिलते हैं। और चौथा और आखिरी सवाल यह कि एक मुल्क है फ्रांस कंट्री, तो वो तो मच्छर क्या बला होते वो क्या इस्तेमाल बताए।
3: राजेंद्र जी नमस्कार, आपका प्रश्न कई सारे एरिया को कवर कर रहा है। तो आप दिल्ली करमपुरा से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने बोला कि जो हमारी 6 ऋतु होती हैं तो कौन सी ऋतु में ये मच्छर ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका थोड़ा साफ नहीं आ रही थी जहाँ तक मैं समझ पाया, जितना मैं समझ पाया उसमें ये समझ पाया कि ये किस ऋतु में ज़्यादा होता है। देखिए, जितने भी मच्छर हैं ये सब वर्षा ऋतु की देन होते हैं, और वर्षा ऋतु और वर्षा की ऋतु के बाद का समय, क्योंकि उस समय टेम्परेचर तापमान प्लस आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ये दोनों मच्छरों को पैदा करने के लिए बहुत ही उपयोगी समय होता है उनका। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, जो तापमान और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, दोनों उनके बड़े फेवरेबल पॉइंट होते हैं, प्लस पानी तो इकट्ठा ही है। तो इसमें हर तरह का मच्छर, चाहे वह एनोफिलीज हो, चाहे एडीज हो, चाहे एक्यूलेक्स मॉस्किटो हो जो कि मलेरिया फाइलेरिया डेंगू कर, बेसिकली कोई भी मच्छर पैदा करने का बहुत ही अच्छा मौसम होता है ये। और आपने बोला साफ सफाई, जाहिर सी बात है साफ सफाई तो हर चीज का इलाज है। साफ सफाई अगर होगी तो आपका एक लास्ट वाला प्रश्न है फ्रांस में कोई सब बीमारी क्यों नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ सफाई ही एक सब चीज का इलाज है। यदि हम अपना घर और अपने घर के आसपास के इलाके को पूरी तरह साफ सफाई रखेंगे तो जाहिर सी बात है मच्छरों वाली बीमारी नहीं, बहुत सारी मक्खियों वाली बीमारियां, गंदगी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास कहीं नहीं होंगी। फिर आपने कहा था कि एसी कूलर, देखिए एसी कूलर का इससे मच्छरों से ऐसा कोई वैसा असर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है बाहर और घर में एसी या कूलर चल रहा है तो कूलर में भी मच्छर पैदा हो रहा है और एसी की ठंडक आपके घर में ठंडक पैदा कर रही है, तो बाहर का इतना विशाल और इतना गहरा टेम्परेचर, बहुत ही ऊँचा तापमान यदि है तो मच्छर को भी तो आराम करने के लिए एक तापमान मिल सकता है ना, घर के अंदर आ जाएगा वो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए मगर ये सब एसी कूलर का रोल ये रहता है आपको इसमें, ठीक है। आपने बोला लकड़ी का, मुझे लकड़ी वाला प्रश्न क्या था आपको, वो थोड़ा मेरी सुनिए, आप क्या कह रहे थे? क्योंकि आवाज थोड़ा,
1: इनको एक मिथ है कि जहाँ लकड़ी का काम होता है वहाँ मच्छर कम होते हैं।
3: नहीं, ऐसा कहीं मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि लकड़ी के काम होने पर जहाँ होगा तो मच्छर नहीं होंगे, ऐसा कहीं मेरी जानकारी में नहीं है जी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पे, तो ये इसका असर किन बॉडी पार्ट्स पर ज्यादा असर आता है इसका?
3: जी देखिए, मैंने जैसा पहले बोला था ना शिल्पा जी, कि जो फाइलेरिसिस, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है, यूजली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, लसिका तंत्र को इफेक्ट करता है। हमारे शरीर का जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, जो कहीं ना कहीं वो क्योंकि जो एडल्ट पैरासाइट होता है ये इन सब जो हमारे लसिका तंत्र की नलियां होती हैं उसमें कहीं जाकर लॉज कर देता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे उनको फ्लूइड बैलेंस को

0: इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो प्राइमरीली जो अफेक्टेड एरिया होते हैं, ये एक तो लिम्फ चैनल्स हैं, हमारे लसिका तंत्र की जो नालियां हैं उनके अंदर है, प्लस लिम्फ नोड्स, और प्लस उसकी वजह से जो आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू है उस पर उसको उस पर उसका असर आता है। तो उसके असर की वजह से क्या होता है कि लिम्फेडिमा, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे सूजन आ जाती है हाथ में, पैरों में, या शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे आपका अंडकोश में वृद्धि हो सकती है, या कहीं ना कहीं जननांगों की तरफ वृद्धि हो सकती है, महिलाओं में स्तन के अंदर कहीं सूजन आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की, और बहुत ही विकराल रूप में एलिफेंटेसिस या हाथी पहुंच से हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो जांग के पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं, तो पूरा नीचे तक वो पूरा सूजन आ जाती है। और वो सूजन शुरू में तो तब भी थोड़ा सा पैर ऊपर करने में थी सूजन का असर कम हो सकता है, मगर बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि जो खाल होती है शरीर की, जो खाल है पैरों की खाल, बहुत मोटी हो जाती है। उसमें जो आपने कहीं देखा होगा लोगों को, जो कई दफ़े स्टेशन वगैरह पे कई दफ़े कुछ लोग भीख भीख मांगते वक्त वो कई दफ़े मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत पैर इतना मोटा होता है जैसे हाथी जैसा हो जाता है। और पुरुषों में हाइड्रोसील हो सकता है, उनके अंडकोश में वृद्धि हो सकती है, उसमें कहीं पानी भर सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसके विकराल रूप और इस तरह के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है ये।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है?
0: देखिए इलाज जैसे मैंने आपको बताया, इलाज वही है, तीन दो या तीन गोलियां जो सरकारी सिस्टम में फ्री मिलती हैं। डिपेंड करता है कौन सी इलाके में, यदि आपका वो इलाका है जहाँ पे बहुत ही विकराल रूप है तो वहां पर तीन गोली का असर, तीन गोलियां भी चल देते हैं। और गोली बहुत सिंपल है, DEC, एल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग, और ये सब सरकारी सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं फ्रीली। तो आप उसको, और जब जिस दिन जिस समय ये चल रहा होता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय आशा में तो घर घर आकर आपको दवाई देती हैं, मगर यदि आपको बीमारी हो गई है तो उसको डॉक्टर के पास में जाकर लग रहा है कि आपको हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उसके आपको पूरा दवाई आपको देंगे, नियत समय तक पूरा समय है उसके देंगे, तो वो आपको थोड़ा देखना है कि किस किस समय तक दे सकते हैं। ठीक है,
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा था कि इसमें सूजन आ जाती है, शुरुआत में सूजन आ जाती है, बाद में हाथी पांव सूजन आ जाती है, तो क्या ये सूजन धीरे धीरे उतर जाएगी? ये क्यूरेबल है?
0: नहीं, यही है कि यदि एक बार एलिफेंटेसिस हो, यदि पैरों में सूजन एक बार आ गई, तो वो एक ऐसी चीज हो जाती है कि वो थोड़ा सा काफी समय तक रहती है, और फिर वो एक बार आती है तो जाती नहीं है। और यही एक चीज है जो इसके साथ में कहीं ना कहीं एक हमारे बोलते हैं हम स्टिग्मा के रूप में देखते हैं, कि कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करती है, सोशली आप कहीं ना कहीं आइसोलेट अपने आप को फील महसूस करते हैं, तो ये सब चीजें कहीं आपको मानसिक रूप पर भी आपको आप पर आपके परिवार पर उसका असर आता है। तो क्यों हम ऐसी अवस्था तक पहुंचे, तो इसलिए इसलिए बचाव ही इसका इलाज है, और बचाव ही सबसे बड़ा इसका वह है। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि दवाइयाँ घर घर जाके देते हैं, वैक्सीनेशन नहीं है, दवाइयाँ ही इसका समाधान है, उसी से इसका बचाव हो सकता है, तो कभी कोई बच्चा ले या यंगस्टर्स ले या बुजुर्ग ले, तो क्या इन दवाइयों का को कोई साइड इफेक्ट्स भी है?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। पहले तो एक और चीज़ है, ये दवाइयाँ कुछ विशेष वर्ग हैं उनको नहीं देते हैं, बस उसमें खास तो ध्यान रखते हैं कि तो दो वर्ष से कम के बच्चों को नहीं देते हैं, गर्भवती महिलाओं को नहीं देते हैं, या कोई बहुत ही सीवियर गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है जो बेचारा बिस्तर पर पड़ा हुआ, या किसी को ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो कि उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इलाज के लिए हैं, उनके लिए। जहाँ तक आपने बोला कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट इससे कोई नहीं है, जो साइड इफेक्ट यूजली अमूमन कई सारी गोलियों को होता है कि हल्का सा जी मिचला सकता है या कुछ हो सकता है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि, और ये बात सही भी है, कई दफे क्या होता है गोली खाने के बाद में जिन लोगों के शरीर में माइक्रो फाइलेरिया है, ये दवाई का असर होने पर माइक्रो फाइलेरिया शरीर में मर जाता है, उसको उसकी वो माइक्रो फाइलेरिया खत्म हो जाता है, उस माइक्रो फाइलेरिया के कहीं उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन कई दफ़े शरीर में हो सकता है, उसमें कई दफ़े हल्का सा फीवर या इस तरह के रैशेज या कहीं उल्टी उल्टी आ सकती है। एक जगह हम गए थे जब सर्वे चल रहा था, तो उस टाइम में एक बच्ची थी, उसको अचानक से उल्टी उल्टी शुरू हो गई और रैशेज बॉडी में आ गए, तो सारे लोग नाराज हो गए कि दवाई क्यों, ये दवाई से तो ये हो गया, तो उनको समझाना पड़ा हमें कि ये जो माइक्रो फाइलेरिया जब खत्म होता है तो उसके जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि आपको मालूम पड़ गया कि आपके शरीर में था, आपको आप वैसे स्वस्थ थे, मगर आपको जब ये गोली खाई उसके बाद में एकदम ये सब चीजें हुई, इसका मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं माइक्रो फाइलेरिया था, उपस्थित था, अब वो कहीं खत्म हो गया तो उसका जो रिएक्शन हुआ तो उसकी वजह से ये सब अच्छा ये सब हुआ है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको एक पॉजिटिव वे में सोच के चलिए कि ये हमारे शरीर की बीमारी खत्म हुई है उसका असर है। तो कहीं कभी यदि कोई थोड़ा हल्का बहुत बुखार सर दर्द या शरीर में दर्द या थोड़ा सा हल्की सी जिम चलाना उल्टी या चक्कर वगैरह है तो ये नॉर्मल चीज़ है, कहीं इसको इसको गलत वे में कहीं नहीं लेना चाहिए। जी
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: रतवीर सिंह, गांव बिगान, जिला सोनीपत, हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये है मैम, क्या मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ क्या हरियाणा में भी ये फाइलेरिया की बीमारी?
0: देखिए जसवीर सिंह जी, आप थोड़ा लकी हैं कि उस तरफ ये बीमारी नहीं है। हमारे जो कुछ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो हैं, मैं आपको कुछ राज्यों का नाम बता देता हूँ जहाँ पर ये बीमारी काफ़ी है, जैसे कि बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उधर इवन गुजरात, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये बीमारी है थोड़ा सा काफ़ी। वैसे लगभग 20 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर ये बीमारी है, मगर ये जिनका मैंने नाम लिया उन जगहों पर काफ़ी थोड़ा इसके अंदर काफ़ी पब्लिक हेल्थ थोड़ा रूप में इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है इस इन इन इलाकों में, मगर हाँ हरियाणा थोड़ा सा बचा है। जी
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून
1: जी। ये लिखते हैं महिलाएं जो परिवार की धुरी होती हैं उन्हें बच्चों और पति और परिवार और बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है, तो उन्हें फाइलेरिया की रोकथाम के लिए क्या सलाह देंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से।
0: नरदेव सिंह जी, देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखो महिलाएं तो जाहिर सी बात धुरी हैं, उनके बिना तो कोई घर चल ही नहीं सकता, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं। वो कैसे अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचा सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने घर के आसपास, घर के अंदर और घर के आसपास सफाई रखें, मच्छरों को पैदा ना होने दें बिल्कुल भी। यदि सुबह और शाम, खास सुबह और शाम का एक समय, एक ऐसा समय होता है जबकि मच्छर के आवागमन काफ़ी होता है, कुछ मच्छर जो बाहर वाले होते हैं अंदर आते हैं, अंदर वाले बाहर जाते हैं, तो ये दो समय होते हैं सुबह और शाम के समय। सुबह और शाम के समय अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें, हो सके तो खिड़की दरवाजे में जालीदार खिड़की, जालीदार दरवाजे लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि घर में छोटे बच्चे सोते हैं रात के समय तो उनको पूरा मच्छरदानी में सुलाएं, अब बच्चों को सभी लोग मच्छरदानी में सोएं, या कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो आजकल कई सारी क्रीम वगैरह आती हैं या कुछ प्लगीज आते हैं जिसमें लगा के आप घर में लगा सकते हैं ताकि मच्छर घर में ना हो। और अगर बच्चे कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं तो बच्चों को कपड़े पूरे पहनाएं, आस्तीन, पूरी आस्तीन वाले पूरे शरीर में ढके हुए ऐसे कपड़े पहनाएं, या उनको ऐसी क्रीम लगाएं जो ताकि मच्छर उनको ना काटे, ये थोड़ा ध्यान रखें। और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और घर वालों की सेहत का भी ध्यान रखें, महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है ये।
1: डॉक्टर साहब ये तो आपने हमें बताया कि लक्षण के बारे में, मॉस्किटो से हमें बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बीमारी होती है तो क्या कोई रेड फ्लैग साइंस हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया ये कुछ सालों बाद होती है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो रेड फ्लैग साइंस कौन से हैं?
0: देखिए रेड फ्लैग साइंस का मतलब ये कि अचानक से लगे कि हाँ अब तो मुझे इलाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अचानक से यदि बहुत तेज बुखार आ जाए या बहुत तेज ठंड लगे, जो कि वैसे आप एक प्रश्न आया था कि मलेरिया में भी तो लक्षण होता है, मगर यदि प्रभावित अंग हाथ या पैर के अंदर लाली सी आने लगे या वो इलाका थोड़ा गर्म महसूस होने लगे जहां पर आपके लाली पैर हाथ में या पैरों में, खासतौर से आपका जो जांघ हो गई वहां पर या बगल हो गया वहां पर, या कोई आपको दगे के आपके हाथों में कहीं लाल लाल रंग की बन रहा है कुछ, लाल हो गया वो, या हाथ पर सूज गया है और वहां पे असहनीय दर्द हो रहा है या कड़ापन आ रहा है, यदि आपके पैरों के अंदर जो खासतौर से दोनों पैरों के अंगूठों और उंगलियों के बीच में आपको लगे कहीं मवाद आने लगी है, थोड़ा सूज गए हैं पैर और वहां से मवाद वगैरह आने लगी है, या कुछ पुरुषों के अंदर यदि अंडकोश में या कहीं स्क्रोटम में आपको लगे भारीपन हो गया है और कहीं इसमें पानी भरने जैसा महसूस हो गया और गंभीर सूजन या दर्द महसूस होता है, या यदि ऐसा लगे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस समय, और लगातार सूखी खांसी लगातार आपको आ रही है तो उसमें खून की जांच कराएं। खून की जांच में कई दफ़े यूसिनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है, जिसको हम TP, ट्रॉपिकल परमानेंट यूसिनोफिलिया बोलते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ ये सब चीजें थोड़ा हो रही, तो मुझे पूरा कहीं ना कहीं अब मुझे इलाज तो क्या पहले शुरू कर देना चाहिए, मगर ये रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि खून की जांच कराए, तो इसके लिए एक खून की जांच होती है या और कोई

जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, ऐसे गीत जब भी सुनते हैं तो ज़िंदगी जीने का मन करता है, ज़िंदगी में आनंद लेने का मन करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में, फाइलेरिया की एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, ये है मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, ये लिखते हैं, मेरा सवाल है कि जिस तरह बीमारी हो जाती है तो क्या उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और क्या ये अनुवांशिक भी होता है? अगर

0: परिवार में किसी को हुआ है तो फैमिली के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या उन्हें भी टेस्ट करवाना चाहिए?
1: नाम क्या बताया इनका?
0: इनका नाम है मोहम्मद
1: मोहम्मद इम्तियाज साहब।
0: इम्तियाज।
1: इम्तियाज साहब देखिए, नंबर एक चीज़ तो ये कि ऐसा कोई चीज़ नहीं कि प्योरीफाई, ब्लड प्योरीफाई करना ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कहीं अनुवंशिक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलेगी बीमारी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यदि, मगर दूसरे परिवार के लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ये है कि यदि घर में किसी को हो गई बीमारी तो जैसे मैंने बताया कि वो व्यक्ति 7-8 साल तक नॉर्मल रहेगा, दिखेगा बिल्कुल नॉर्मल, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर माइक्रोफेलर लार्वा डेवलप करता रहेगा, तो दूसरों को कहीं ना कहीं बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। मगर इसमें कहीं ना कहीं, इसीलिए जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, सबको एक साथ दवाई खिलाना नियत समय पे, 5-6 साल तक यदि लगातार वो दवाई यदि सबको खिलाई जाए, मतलब एक विश जैसे फरवरी में और अगस्त के महीने में, इस साल अगस्त में नहीं किया गया, कुछ इलाकों में ही किया गया, कुछ राज्यों में ही किया गया वो, क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी ये मास लेवल पे कर दिया था, गया था ये काम। तो अगले साल शायद फरवरी में दोबारा से ये होगा कि सभी को जिन जिन इलाकों में ये समस्या है वहाँ पर ये सबको दवाई दी जाएगी। तो वहाँ इसका महत्व है कि जिन लोगों को घर के बाकी सदस्य हैं, इसलिए जो दिखने में नॉर्मल लग रहे हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीटाणु और वो माइक्रो फाइलेरिया उसके शरीर में, खून में है, तो उनको वो खत्म करने के लिए आवश्यक है कि वो भी वो दवा लें।
0: आज डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर मच्छर ने किसी को काटा है तो ये बीमारी का असर 5-6 साल बाद दिखता है, तो ये जो 5-6 साल का पीरियड है उस पीरियड के दौरान भी कोई सिम्टम्स या कुछ असर दिखता है
1: यही तो इसकी बहुत ही एक अजीब चीज है
0: या
1: कि
0: सीधा 5-6 साल बाद ही
1: नहीं
0: दिखेगा?
1: नहीं नहीं इसमें देखो, यदि हाँ खून की जांच यदि करेंगे रात के समय, नाइट ब्लड टेस्ट यदि करेंगे, नॉक्टर्नल ब्लड टेस्ट अगर करेंगे, तो कहीं ना कहीं नॉक्टर्नल ब्लड स्मियर या कोई एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह करेंगे, तो उसमें मालूम पड़ सकता है कि उस व्यक्ति में वो माइक्रो फैलेरिया है कि नहीं है। आजकल तो कई सारे और भी चीज आ गई, नई नई तकनीक आ गई जिसमें मालूम पड़ सकता है, मगर जो व्यक्ति सेहतमंद लग रहा है मगर कहीं ना कहीं उसके खून में यदि जांच करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर माइक्रो फैलेरिया लार्वा मिले, तो माइक्रो फैलेरिया के उस मिल सकते हैं, तो ये उसके लक्षण, मगर क्योंकि ये जो इसका लार्वा है बहुत धीरे धीरे कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे लस्सी का तंत्र है उसको धीरे धीरे डैमेज करता है, और वो उसको धीरे धीरे उसको नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है, और तो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें से सूजन वूजन शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसमें समय लगता है इसके बीमारी को दिखने में।
0: तो ये जो आपने सूजन की कहा, तो ये सूजन को कैसे कम कर सकते हैं?
1: देखिए, अब यदि एलिफेंटियसिस यदि हो गया, यदि हाथी पांव हो गया, तो उसमें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है, इसमें सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि जहां जहां ये पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है इस बीमारी का, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ बीमारी ज़्यादा है, तो वहाँ पे फाइलेरिया क्लिनिक्स वगैरह बनाई हुई उन्होंने सेंटर्स पर, तो उन सेंटर्स पे या आशा बहनों के माध्यम से, एक हम बोलते हैं MMDP, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस पैर सूजन की वजह से कहीं डिसेबिलिटी हो जाती, उसको कैसे और ताकि ना बढ़े, तो उसके लिए कुछ उनको एक किट दी जाती है जिसमें उस किट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, टॉवल होता है, एक बहुत बड़ा टब होता है, और साबुन होता है लगाने के लिए, ट्यूब होती है, तो और प्लस उनको आशा बहन या जो सेंटर पर, हेल्थ सेंटर पर, या जो आपके आयुष्मान क्लिनिक वगैरह हैं वहाँ पर, आरोग्य मंदिर वगैरह जो है वहाँ पर, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कैसे उनको सेव अपने करना है, तो उसमें पूरा रेगुलरली उसको वॉश करना, उसको पैर को धोना जहाँ जहाँ सूजन है, और कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई घाव वगैरह बन गया उसका इलाज करना, पैर को सूखा रखना, पैर को ऊपर रखना, और कहीं ना कहीं कुछ एक्सरसाइज उनको बताई जाती हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन एक्सरसाइज होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सूजन कम करने के लिए, तो ये जरूरी है कि वो सब जिनको बताया, और यदि किसी को एक्यूट अटैक हो जाए, लगे कि अचानक से उनको बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, बिल्कुल लाल हो गया पैर, तो उस समय क्या करना है वो भी बहुत जरूरी है। यदि किसी को अचानक से कोई एक्यूट अटैक हो जाता है, सूजन का बिल्कुल लाली आ जाए पैरों में या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसमें गर्म पानी की सिकाई नहीं करनी है, बल्कि ठंडे पानी के कपड़े को ठंडे पानी में डाल के उसको पैरों पे जहां जहां आपको सूजन है, बहुत ज्यादा लाली आ गई है, उस पर पूरा उसको रखकर उसको फिर कपड़ा बदलो, फिर उसको रखो, और पैर को ऊपर करके रखना है, मतलब टांगों को ऊपर रखना है ताकि वो सूजन थोड़ा कम हो, और उसका पैर को बिल्कुल ड्राई रखना है। उसमें यदि गीलापन रहेगा तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा, प्लस उसको तौलिए से पोंछ कर रखें। ये सब चीज़ें उसको उसकी केयर करना, और ख़ासतौर से उनको जो बताया था कि चप्पल उनकी खास किस्म की हो ताकि वो कहीं पैरों में कोई घाव वगैरह ना पैदा हो जाए, तो ये सब चीज़ें उनको दिखाई जाती है, सब उनको समझाया जाता है कि कैसे कैसे उनको केयर करके रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ये सब चीज़ें उनको करना है। जी
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि डायग्नोस हो गया कि किसी को फाइलेरिया है, तो इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है?
1: देखिए, अगर मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात करें तो वो तो उसी समय घर घर महिलाएं घर घर आती हैं, आशा बहनें उसी टाइम में देती हैं। आपको अस्पताल जाएंगे तो ज़्यादा दिन का नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का कोर्स वो डॉक्टर है, जो डिपेंड करता है किस इलाके में आप हैं, तो वहाँ पे उनको उतने दिन की दवाई दी जाती है और ये उनको दी जा सकती है, वहीं वो उसका इलाज है वहाँ पर। जी,
0: तो क्या ये बीमारी पूरी तरह से क्यूरेबल है, पूरी तरह ठीक हो जाता है, या
1: प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल सही हो सकता है, मगर यदि एक बार यदि सूजन आने शुरू हो गई और एलिफेंटियसिस हो गया कहीं ना कहीं ये सब चीज़ होंगी, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है बाद में खासतौर से। मगर हाँ, यदि एक और चीज़ में थोड़ा बताना बोल रही थी, जैसे कुछ एक चीज़ें हैं जैसे हाइड्रोसील है, उसका सर्जिकल ऑपरेशन किया जा सकता है। कई दफ़े सूजन पैरों में बहुत ज़्यादा हुआ और अगर एलिफेंटियसिस इतना ज़्यादा, तो कहीं सर्जिकली उसको थोड़ा करेक्ट करके सही किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए भी सरकार ने सुविधाएं दी है कि वो सब मुफ्त में इसका इलाज संभव है।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड, ये लिखते हैं वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, ये लिखते हैं बुखार होने पर हम यूजुअली गोली ले लेते हैं 3 या 6, क्या ये पेन किलर ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट होता है? रेडियो डॉक्टर में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम चल रहा है, वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
1: नाम क्या बताया इनका?
0: इनका नाम है आशा पाठक।
1: आशा जी, एक तो पहली चीज, आप नीदरलैंड से फोन कर रहे हैं, नीदरलैंड से मैसेज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो वहां तक हम वहां पर तो खरी बीमारी की समस्या नहीं, मगर आपका प्रश्न शायद इस बीमारी से संबंधित आपका प्रश्न है कि क्या हम जो दवाइयां लेते हैं वो दवाइयां जो दर्द निवारक दवाइयां देते हैं, क्या उनका,
0: ये लिख रहे हैं कि यूजुअली बुखार होने पर हम गोली ले लेते हैं, तो क्या उनका साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि 3 बार ले लिया 6 बार ले लिया, वो लिख रही हैं।
1: देखिए, कोई भी एक चीज ध्यान रखिए, जो भी हम शरीर में बाहर से कुछ भी चीज लेते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनी हुई गोलियां हैं, कुछ भी, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है। मगर हाँ, अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, जो कि प्रेस्क्राइब डोज है, यदि वो ले जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं। यदि आप प्रेस्क्राइब डोज से ज्यादा लेंगे, बिना डॉक्टर सलाह के लेंगे, तो नुकसानदायक तो हो सकती कुछ भी चीज। जी
0: डॉक्टर साहब, हम इससे बचाव के लिए, हम सभी के लिए, कि इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, जो बताया मैंने पहले ही कि यदि मच्छर इसकी रोग की जड़ है, ठीक है, मच्छर को आपको किसी तरह से ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मच्छरों को खत्म कीजिए, घर के आसपास थोड़ा सफाई रखिए, और यदि आपके इलाके में दवाइयां दी जा रही हैं तो मास्टर एडमिशन है, तो उसमें सभी लोग चाहे स्वस्थ हों चाहे बीमार हों, सबको दवाई दिलाइए, प्लस सेहतमंद रहिए, सबका ध्यान रखिए।
0: और श्रोताओं के लिए मैसेज?
1: श्रोताओं के लिए मैसेज ये कि अपने आप को अपने आसपास घर के आसपास पूरा सफाई रखें, यदि किसी को लगे कि आपके आसपास किसी को बीमारी हो गई तो पूरा इलाज कराएं, और सरकार के सभी कार्यक्रमों में सहयोग दें।
0: तो दोस्तों, फाइलेरिया से बचाव की शुरुआत जागरूकता से होती है, मच्छरों से बचाव, स्वच्छता और समय पर दवा, ये छोटे कदम हमें इस बीमारी से सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आइए खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि स्वस्थ समाज की पहचान है बीमारी से पहले उसकी रोकथाम। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर एस के रसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
1: शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।
0: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा, हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, सही जानकारी सही आदतें, यही है स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे

चार बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने अपनी ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग की घटना में 5 लोग मारे गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एमआर अर्जुन हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, शुरू हो गया है आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन, और आज अल्फा जैन में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी शालिनी। दोस्तों, अल्फा जैन में खास सोमवार के दिन हम लेकर आते हैं मौका युवाओं के लिए। जी हाँ, युवाओं को मिलता है मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का, क्योंकि आज होता है प्रोग्राम यूथ स्पीक्स, और आज ये मौका मिला है ईशान को। तो ईशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। ईशान, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं।
2: जहन मैम, मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जामिया हमदर्द से परस्यू कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर में हूँ, एंड साथ ही साथ मैं एनसीसी का भी हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। मेरा एक दायित्व है अपने देश की, अपने समाज की सेवा करना, और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीसी एक राइट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए।
1: बिल्कुल, तो एनसीसी के बारे में और अभी तक के ईशान के जो भी अनुभव रहे हैं उनके बारे में जानेंगे आज के अपने इस खास शो में।

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एनसीसी की ईशान से। तो ईशान आप बता रहे थे कि आप एनसीसी का हिस्सा रहे हैं, तो आपने कब एनसीसी ज्वाइन किया और कैसे आपके मन में आया कि आपको एनसीसी का रुख करना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए?
1: जी, देखा जाए तो एनसीसी मैं 2024 से इसका हिस्सा हूँ, और साथ ही साथ मैं जब कॉलेज में आया था जामिया हमदर्द में, तो जो मैंने नोटिस किया कि कॉलेज लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इधर से उधर लोग भटक रहे हैं, किसी को दिशा की ज़रूरत है, किसी को नए ज्ञान की ज़रूरत है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अनुभव के ऊपर होनी चाहिए। जितना अनुभव लोगे ज़िंदगी से, जितना सीखोगे आगे जाके काम आएगा।
0: बिल्कुल।
1: स्टार्टिंग में मुझे एनसीसी के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैंने अपने परिवार में डिस्कस किया, तो मेरी मम्मी ने भी एनसीसी करी है,
0: ओके।
1: और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बोला कि ईशान एनसीसी करो, क्योंकि उसका बहुत फायदा है।
0: कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मम्मी से मिली, एक पुश मिला मम्मी की तरफ से कि आपको एक रास्ता मिले, एनसीसी से जुड़ने का एक मौका मिले। क्यों ऐसा लगा आपकी मम्मी को कि आपको एनसीसी का हिस्सा बनना चाहिए?
1: देखिए, वैसे तो मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, और उन्हें पता है कि इसका मन बहुत चंचल है, और एनसीसी में जो अनुशासन, जो सब्र करने की क्षमता होती है, वो अगर मैं सीख गया तो मेरी जिंदगी के लिए आगे जाके काम आ जाएगा।
0: और डिसिप्लिन होता है।
1: एग्जैक्टली, द डिसिप्लिन दैट्स नीड फॉर वन अ कैडेट एंड ऑलवेज अ कैडेट।
0: ओके, तो यानी एनसीसी का आप हिस्सा तो बन गए, 2 साल हो गए हैं आपको करीब करीब एनसीसी का हिस्सा बनते हुए। एनसीसी के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे आपसे ईशान, और साथ ही साथ ऐसी क्या सीख थी जो आपको एनसीसी का हिस्सा बनने के बाद मिली, जो आपके अंदर नहीं था, उसके बारे में भी करेंगे बात, लेकिन इस गाने के बाद।

0: वंदे मातरम। बहुत ही खूबसूरत गीत और इसी के साथ एक बार फिर आ गए हैं मैं शालिनी और मेरे साथ हैं ईशान जो एनसीसी का हिस्सा है और साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ईशान हम बात कर रहे थे कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया 2024 में, तो वो ईशान जो 2024 के पहले था और वो ईशान जो अब 2026 में जिसे 2 साल पूरे हो चुके हैं एनसीसी का हिस्सा रहते हुए, क्या परिवर्तन अपने अंदर आप महसूस करते हैं?
1: मैम, बहुत सारे परिवर्तन हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो मेरे अंदर आए हैं। एक होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले लगता था कि मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे समाज को भी बहुत कुछ देना है वापस। समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। जैसे एक नारा है विकसित भारत का, तो एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर क्षमता हो। एकता में बहुत कुछ होता है मैम, अनुशासन से बहुत कुछ होता है। और देखा जाए 2024 वाला जो ईशान था वो ज़्यादा पढ़ाई, किताबी कीड़ा बनना या एक तरीके से अपने कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन ये वाला जो ईशान है ये अब ये देखता है कि मुझे आने वाले कल के लिए अभी से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। एक होता है कि हम ज़िंदगी के साथ बस चल रहे हैं, लेकिन एक होता है कि हम क्या खुश हैं या नहीं। तो अगर मैं खुश हूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और वो मैंने देखा है अपने अंदर।
0: बिल्कुल, मतलब एनसीसी ने आपको क्या सिखाया, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आया, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीसी में डिसिप्लिन होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आम कैंडिडेट्स या फिर आम स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन एनसीसी का हिस्सा बनने के बाद वो आपको फॉलो करनी होती है, उन बातों के बारे में भी बताएं।
1: मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक तो एज अ मेल कैंडिडेट, मेल कैडेट, हमारे लिए हेयर कट पे बहुत एम्फसाइज किया जाता है। साथ ही साथ मैम, हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द सेंस हमें बेसिकली पता चलता है

0: ड्रेसिंग सेंस, चाहे आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, एनसीसी की टी शर्ट पहन रहे हो, शूज कैसे पहन रहे हो, तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. एंड सबसे तीसरा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मैम, मेंटल हाइजीन, मेंटल टफनेस, मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज अगर आप सोच से ही पराजित नहीं हो पाते हो, तो आप अपने चैलेंजेस को, अपनी समस्या को भी बहुत आराम से जीत सकते हो, जो मैंने देखा है. वो कहते हैं ना मैम, वंस यू लीव योर कम्फर्ट जोन, एवरी थिंग इज कॉन्कर्ड.
1: ओह वेरी गुड, बहुत ही अच्छे नोट पे हम इस गाने के साथ हमारे श्रोताओं को छोड़ जाते हैं. और इसी के साथ एनसीसी के बारे में हमारा ये जो कन्वर्सेशन है ये जारी रहेगा. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ.

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन और आज अल्फा जैन में हमारे साथ हैं आप ही के बीच से ईशान। तो ईशान, हम बात कर रहे थे एनसीसी की, आपने बताया कि एनसीसी ने कैसे आपकी जिंदगी को बदला, कैसे आपको बदला, लेकिन एनसीसी में क्या क्या विंग्स होते हैं और कैसे जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको सिखाते हैं, लीडरशिप के स्किल और बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं एनसीसी के कैडेट्स को, उन पर करने वाले हम बात, बताइए।
7: देखिए मैम, एनसीसी में 3 विंग्स होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर। मैं आर्मी का हिस्सा हूँ, तो हर एक एनसीसी विंग के अलग रीति रिवाज होते हैं। तो अगर हम बात करें एनसीसी की स्टार्टिंग से, मतलब जब देश आज़ाद हुआ, तो 1948 की बात है ये, उस वक्त सिर्फ 20,000 कैडेट्स थे पूरे देश में, सिर्फ 20,000 थे। आज तकरीबन 20 लाख हैं, तो इवॉल्व हुआ है। क्योंकि मैम देखा जाए, भारत देश ने युद्ध लड़े हैं पड़ोसी मुल्क से, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और एनसीसी एक ऐसा विंग है जिसे हम बोल सकते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। कभी इमरजेंसी पड़े तो एनसीसी का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये कैडेट्स को डिफेंस टैक्टिक्स सिखाता है। एंड अगर आपको फ्यूचर में डिफेंस में ही जाना है, आपको देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है डिफेंस के थ्रू, तो ये एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है। और बहुत सारे इसके की बेनिफिट्स भी हैं मैम।
6: ओके।
7: जैसे मैम, एकदम क्राइसिस में कैसे हमें एक्ट करना होता है, नॉट बाय इमोशंस बट बाय लॉजिक, बाय रैशनल थिंकिंग।
6: आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि कहीं आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हो और कभी अचानक से ऐसी स्थिति हो गई हो जब आपको संभालना हो, चाहे आप अपनी ड्यूटी पर हों या ना हो, तो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया सिचुएशन को?
7: मैम

0: अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो RDP रिपब्लिक डे परेड, उसमें मेरी ड्यूटी थी टू हैंडल द क्राउड। मैं, मेरे साथी कैरेट शहजादा एंड शमी, शमी मेरे बड़ी हैं, हम तीनों ने कैसे संभाला था, क्योंकि उस वक्त बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, दिल्ली में ही है, बारिश हो रही थी, एंड इट वॉज लाइक हमारे पास रेनकोट नहीं थे, पर हम अपनी यूनिफॉर्म में थे। तो हमने पहले तो अपने बैरे उतारे, एक जगह रखा, और हमने एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाई कि तू हमारे बैरे देख लियो, हमारे कपड़े, हमारे बस्ते बैग देख लियो, हम क्राउड को डायरेक्शन देंगे। हमारा काम बेसिकली क्राउड को डायरेक्शन देना था, और अगर कोई डिसेबल है तो उसे असिस्ट करना था। तो पर्सनली मैम, मैंने तो असिस्ट किया, डायरेक्शंस दी, स्पेशली गाड़ियां भी आ रही थी, मैं इनफैक्ट आगे भी गया रोड पे, मैंने वहां पे लोगों को डायरेक्शन दी, एंड साथ ही साथ बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन को भी हैंड ओवर करना होता है। जैसे किसी को रास्ता नहीं पता है कि कहाँ से जाना है, तो उन्हें बेसिक गाइडेंस देना। अब देखिए मैम, जनता में बहुत तरीके के लोग होते हैं,
1: ये
0: लेकिन
1: तो है।
0: आपको अपना सब्र नहीं खोना है। तो कुल मिला के मैम, एक कैडेट की शुरुआत उसके मेंटल टफनेस से होती है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी मेंटल टफनेस ही तुम्हें कैडेट बनाती है।
1: मतलब सिचुएशन चाहे आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, आपको स्ट्रेंथ के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना
0: जी
1: है।
0: मैम, बिल्कुल।
1: तो चलिए फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको एनसीसी के बारे में जान के और कहीं ना कहीं कैसे युवाओं को मानसिक तौर पर सशक्त बनाता है एनसीसी, इसके बारे में जान के अच्छा लग रहा होगा। तो हमारी ये बातें रहेंगी जारी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम यूथ स्पीक्स में। तो हम बात कर रहे थे एनसीसी की। ईशान, एनसीसी का आप हिस्सा रहे हैं पिछले 2 सालों से। कहीं ना कहीं जब आपने एनसीसी में कदम रखा, आपकी जब वहां पर शुरुआत हुई, तो क्या फिजिकल ट्रेनिंग आपसे करवाई गई?
1: देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एंड्योरेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, वो चेक की जाती है। तो हमें बोला गया था, हमारे कॉलेज में एक क्रिकेट ग्राउंड है तो उसके 2 राउंड लेने थे। ये देखना था कि कौन रुकता है या किसका रिदम टूटता है। हमने कंटिन्यूस जॉग किया, 2 राउंड ले लिए, हो गया। फिर हमसे पुशअप्स लगवाए गए, पुशअप्स 15। फिर हमें जंपिंग जैक्स के लिए बोला गया था। मैं आपको स्पेसिफिकली हर एक एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट गुड।
0: इनफैक्ट हमें जो श्रोता सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने, उनको अच्छा लगे ये सुनने के बाद, हमारी बातें सुनने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो जाए। और अगर जो नहीं भी बन पाए, समय निकल गया, लेकिन वो भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि समय भले ही निकल गया लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि जंपिंग जैक्स होते हैं, स्किपिंग, ये सब कराने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ हमारे अंदर अभी भी जान बची है, वो फिर से हमें जॉगिंग के लिए बोला। इस बार 100 मीटर था, पूरा राउंड नहीं, 100 मीटर भाग के जाओ, छू के आओ और वापस आ जाओ। तो 100 मीटर कंप्लीट किया, वापस आए। फिर तब जाके हमसे बोला गया कि तुम्हारा फिजिकल टेस्ट हो चुका है, अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, 1-on-1 इंटरव्यू।
0: ओके, तो ये कितनी देर का सेशन रहा होगा जब आपने फिजिकल ट्रेनिंग की? 1 घंटा 2 घंटा कितना रहा होगा?
1: मैम, मुश्किल से ये चला था 40 से 45 मिनट।
0: अच्छा, 45 मिनट लगातार?
1: हाँ मैम, कंटिन्यूस चलता रहा ये। बीच में हमें 1-2 मिनट का गैप लेने दिया, ब्रेक लेने दिया। कुछ बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम जैसे वॉमिटिंग भी होने लग गई थी।
0: हाँ, क्योंकि तो, आपको जनरली हाँ, आदत नहीं होती।
1: हाँ,
0: तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं।
1: और थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। मैं और मेरे कुछ साथी, कुछ साथी हमने अच्छे से फिजिकल टेस्ट निकाला। जिनको वॉमिटिंग या पेट दर्द, सर दर्द हो रहा था, उन्हें बिठा दिया गया, उन्हें बोला गया रेस्ट करो, फिर किसी और दिन आना।
0: ओके,
1: तो मुझे उनका नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जिन्होंने उस दिन अच्छा किया था, तो हम सबको यही बोला गया कि आपका इंटरव्यू होगा। एंड फिर मैंने बोला ठीक है, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड उसके अगले दिन
0: इंटरव्यू
1: हुआ। हाँ, अगले दिन हमें बुलाया गया, स्लॉट वाइज बुलाया गया था। मेरा स्लॉट था 4 से 4:30।
0: ओके,
1: मेरा इंटरव्यू वैसे 20 मिनट का ही चला, क्योंकि आधा घंटा इज मैक्स।
0: Okay.
1: कोशिश करते हैं इंटरव्यू भी जल्द से जल्द, क्योंकि हर एक बच्चे को इंटरव्यू करना
0: सही बात है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सबसे बात करनी,
1: बिल्कुल,
0: सबसे
1: बिल्कुल,
0: पूछना है। तो आपका 20 मिनट चला, क्या कुछ पूछा गया याद है?
1: इंटरव्यू का बेसिक मोटिव होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना। बच्चे के अंदर कितनी लॉजिकल रीजन है, कितना वो लॉजिकल सोच सकता है। तो पहले तो हमें बोला गया था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि एक बहुत जनरल क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। फिर दूसरा, हमें एक कंडीशन दी गई कि आप इस कंडीशन में हो तो आप क्या करोगे। अब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे जहां तक याद है, हमें बोला गया था कि अगर आपके 2 जूनियर्स लड़ रहे हैं ऐसा सीनियर, आप उनकी लड़ाई कैसे रुकवाएंगे।
0: ओके,
1: तो मेरा अप्रोच यही था, डिप्लोमेटिक अप्रोच रहेगा, दोनों की बातें सुनी जाए और दोनों की बातों पर तर्क किया जाए।
0: ओके,
1: और फिर एक दूसरे और एक कॉमन सोल्यूशन पे निकले, जिससे दोनों का भला हो और ना नुकसान हो, और अगर जिसकी गलती है उसे समझाया जाए कि वो आने वाले टाइम में ऐसा ना करे। ये हुआ। और फिर मेरे से आखिर में ये पूछा गया था कि एनसीसी कमिटमेंट मांगता है, लॉयल्टी मांगता है। अगर हम तुम्हें बुलाएं, तुम ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अटेंडेंस 75% है, मैंडेटरी है, अगर उससे नीचे हुआ हम आपकी सीट को रद्द कर देंगे।
0: अच्छा,
1: तो मैंने श्योरिटी दी, सर मैं डेफिनेटली आऊंगा, मुझे बस प्रायर नोटिस चाहिए, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ दिल्ली में। तो मुझे प्रायर नोटिस चाहिए 1 दिन पहले का, ताकि मैं समय का अच्छे से बैलेंस कर सकूँ, उल्लंघन नहीं बैलेंस कर सकूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकूँ। तो सर ने बोला ठीक है, हो जाएगा। और फिर अगले दिन हमारी लिस्ट रिलीज की जाती है, कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं।
0: ओके,
1: तो हम आ जाते हैं।
0: ओके, तो उसमें आपका सिलेक्शन
1: जी मैम।
0: चलिए, मतलब आपकी शुरुआत हो गई एनसीसी में इस तरीके से, एक टफ ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग बोले या एग्जाम बोले
1: इस पर।
0: हाँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे लगता है नियमित तौर पर ट्रेनिंग होने लगी होगी, उसके बाद कैसा रहा?
1: उसके बाद मैम हमें हफ्ते में 3 या 2 बार क्लासेस तो होती थी। सैटरडे को क्लास भी होती थी, लेकिन वो स्पोर्ट्स क्लास होती थी।
0: ओके,
1: वो अलग क्लास थी। अगर मैं बात करूं एनसीसी की क्लास, उसमें जैसे डीएसटी ड्रिल्स, सावधान, विश्राम, डीएसटी करना, ये सब करना, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को सिखाया जाता है, क्योंकि हमें बी सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
0: okay.
1: और साथ ही साथ सेकंड ईयर से तो सीएटीसी कैंप आ रहा था, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वो करना जरूरी है फर्स्ट सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। तो एज अ फर्स्ट ईयर कैडेट 2024 में मैंने बेसिक चीजें सीखी,
0: बेसिक चीजें यानी थ्योरी हुई या फिर सब कुछ ग्राउंड पे ही था।
1: जी मैम, मैं बता रहा हूँ, थ्योरी भी हुई, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले अभी फिजिकल उसका सुन लीजिए। डीएसटी, ड्रिल, सावधान, विश्राम, मार्च पास, स्टाइल मार्च हो गई, फिर तब जाके गन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी की जाती है, सलामी शस्त्र, बगल शस्त्र, ऐसे कर करके हमने सीखा और तब जाके ये हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। फिर इससे इसके बाद आता है हमारा थ्योरी क्लासेस, जिसमें हमें फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसमें वेपन हैंडलिंग भी सिखाई जाती है, जैसे वेपन के कौन कौन से पुर्जे होते हैं, बट मैगजीन,
0: मतलब पहले तो आप पहले जानो कि आपका वेपन है क्या, उसके सारे पार्ट्स जानो,
1: एग्जैक्टली,
0: देन उसके बाद में आप उसको हैंडल कैसे करना,
1: एग्जैक्टली, क्योंकि ये थ्योरी में पूछा जाएगा, सामने वाला पूछ सकता है आपसे कि ये गन का कौन सा पार्ट है, गन को असेंबल करना सिखाओ। तो हमारी बटालियन, तीन दिल्ली बटालियन निजामुद्दीन, हमें स्पेशली ट्रेनिंग देती है, क्योंकि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी जाते हैं फायरिंग के लिए, तो वहां पे हमें दिखाते भी हैं, सिखाते भी हैं कि कैसे पोजीशन लेनी चाहिए वेपन हैंडलिंग के लिए और कैसे करना चाहिए। ये सब होने के बाद फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, और फिर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक सबसे फेवरेट चीज होती थी मेरी लेक्चरेट, उस पर ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता था, ऑन एनीथिंग, करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, एनीथिंग, और आपको एक मिनट दिया जाएगा प्रिपरेशन का, और आपको बोलना है उसके ऊपर, तीन मिनट बोलना है दैट टू इन वन लैंग्वेज, इधर इट कैन बी हिंदी और इधर इट कैन बी इंग्लिश।
0: ओके, ऐसा नहीं आप इंग्लिश में बोले, जैसे आजकल चलता है सब जगह,
1: बायलिंगुअल
0: और इंग्लिश दोनों,
1: बायलिंगुअल नहीं चलेगा, बायलिंगुअल नहीं चलेगा, बिकॉज अगेन क्राइसिस कम्स इमीडिएटली, तो ये उसके लिए होता है।
0: ओके, कि अचानक से आपको कोई सिचुएशन मिल गई तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करे,
1: एग्जैक्टली, तो वो चीजें जल्दी से जल्दी बनाना, बिल्डअप करना, फैक्ट्स बिल्डअप करना, जल्दी क्विक डिसीजन लो, तो वो होता है। और ये एसएसबी ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर हमें आ रही एक प्रैक्टिस होती थी पिक्चर परसेप्शन, तो हम एक पिक्चर दिखाते थे और हमें उसे अच्छे से देखना होता 10 सेकंड के लिए, और जो परसेप्शन हमारा बन रहा है वो हमें एक एक करके बताना है, और जिसका परसेप्शन अच्छा होता था वो ही जीतेगा।
0: ओके, तो मतलब उसके हिसाब से मार्किंग होती थी।
1: हाँ, इधर यू कैन टेल द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, या बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है।
0: ये तो हुई आपके एनसीसी फर्स्ट ईयर की बात।
1: जी मैम।
0: ठीक है, इसके बाद आपने क्या कुछ सीखा अपनी ट्रेनिंग में, क्या कुछ खास रहा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: मंगल भवन मंगलहारी।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते हैं।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और बात हो रही है NCC की ईशान से। तो ईशान, हमने जाना कि NCC में कैसे क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन आम तौर पर ये माना जाता था कि NCC में ड्रिल, सैल्यूट, कुछ आमतौर पर इसी तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आपसे इतनी सारी बातें करके हमको पता लगा कि देर आर मैनी मोर थिंग्स टू लर्न इन NCC। लेकिन कहीं ना कहीं आमतौर पर ये राय तो है कि अगर आपको डिफेंस में करियर बनाना है तो आप NCC को अपना एक पड़ाव बनाइए। आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है?
3: देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है। एंड जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि NCC इज नॉट जस्ट मेरली अबाउट सैल्यूटिंग और गोइंग विद द ड्रिल और फिजिकल टफनेस, इट इज मोर बियॉन्ड दैट। NCC के अंदर कल्चर भी आता है, नॉलेज, विजडम, बहुत कुछ चीजें हैं। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, लास्ट ईयर देर वॉज अ कैंप इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, AN यूनिवर्सिटी, आइडिया इनोवेशन स्टार्टअप कैंप, वो भी NCC ने निकाला था। जबकि NCC एक डिफेंस प्लेटफॉर्म है और स्टार्टअप कैंप डजेंट मैच दिस, लेकिन फिर भी NCC ने इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया, स्टार्टअप कैंप, और वहां पे NCC के कैडेट्स ने ही पार्टिसिपेट किया। मैंने खुद दिल्ली डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया था इसमें एज अ नेशनल स्पीकर, और हमारा स्टार्टअप भी आया था, बहुत अच्छा लगा था स्टार्टअप। तो ये एक सिनेरियो के। दूसरा था इंडो भूटान यूथ फ्रेंडशिप कैंप, मैं उसका भी पार्ट था। वहां पे हमारे से कोई ड्रिल नहीं करवाई गई थी, वहां पे हमारी कल्चरल स्किल्स देखी गई थी, डांसिंग, कम्युनिकेशन, एंकरिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, हाउ डू यू कोऑर्डिनेट विद योर कलीग्स एंड बैचमेट, वो तो देखा ही गया था। एंड बहुत सेलेक्टिवली इसका सिलेक्शन हुआ था, मेरा खुद अच्छे से इंटरव्यू हुआ एंड तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, वरना ऐसे किसी नॉन RD होल्डर को इंडो भूटान में भेजना ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर मैं आपको बात करूं आगे भी, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है संकल्प, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, मैं खुद उसका पार्ट हूँ सोशल मीडिया का।
2: संकल्प NCC का ही कोई प्लेटफॉर्म है?
3: संकल्प इज नॉट एग्जैक्टली NCC, बट इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद NCC, इन द सेंस ये NCC से रिलेटेड जागरूकता, शिक्षा और लोगों को वाकिफ करता है।
2: अबाउट वॉट?
3: बहुत कुछ है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे लास्ट ईयर सीनियर थे कैडेट दुष्यंत सर, ही वाज लीडिंग द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज व्हाइल ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी जो सही नहीं थी, और आम लोग उनको मान रहे थे और फॉरवर्ड भी कर रहे थे।
3: एग्जैक्टली, तो ऐसे चीज का इनिशिएटिव लेते हुए दुष्यंत सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक ऑपरेशन सिंदूर से राइट इन्फॉर्मेशन फैलाई, सही इन्फॉर्मेशन फैलाई। और संकल्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको AI एंड ऑनलाइन चीजें कैसे यूज की जाती हैं वो बताता है। मैं खुद इसका पार्ट हूँ, कंटेंट क्रिएशन में हूँ मैं। तो जैसे लास्ट ईयर की बात है, जब
2: तो संकल्प के लिए आपने क्या क्या कंटेंट क्रिएट किया?
3: एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ, जैसे करंट डेवलपमेंट चलता है, जैसे लास्ट ईयर पे एक ची रनिंग कैंप हुआ था। ची रनिंग कैंप वॉज रिलेटेड टू फिटनेस, जॉगिंग, मैराथन, ये जितने भी चलते रहते हैं। तो ची रनिंग कैंप में हमारा मेन उद्देश्य ये था उस कैंप को प्रमोट करना, उस कैंप की रीच बढ़वाना, एंड साथ ही साथ उस कैंप का मोटिव क्या था,
2: इस कैंप का क्या मोटिव,
3: हेल्थ अवेयरनेस बेसिकली,
2: सभी लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हों, वॉक करें, रन करें।
3: एग्जैक्टली, अभी एक रिसेंटली एक और वो आया था साइक्लोथॉन, साइक्लिंग इवेंट था जो दिल्ली में ही कंडक्ट किया गया था, उसमें भी NCC कैडेट्स ने पार्ट लिया। संकल्प यहाँ पे एक इनिशिएटिव ये लेता है, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली राइट इन्फॉर्मेशन फैलाता है रिलेटेड डेवलपमेंट, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब जैसे मैं किसी से पूछूं ऑपरेशन सिंदूर क्या है, बहुतों को पता होगा, लेकिन अगर मैं किसी से ये पूछूं ऑपरेशन महादेव क्या था,
2: तो वो नहीं पता होगा,
3: शायद वो किसी को ना पता हो,
2: नहीं पता,
3: लेकिन अगर आप किसी संकल्प वाले से पूछे तो वो पता होगा, क्योंकि संकल्प इस पर रिसर्च करता है, संकल्प देख

0: है कि करंट डेवलपमेंट क्या चल रही है अभी, बी इट द नेशनल इशू बी द इंटरनेशनल इशू, लेकिन हम हर चीज पे नजर रखते हैं और उसी के हिसाब
1: और
0: से हम
1: ये बेसिकली सोशल मीडिया पे काम करते हैं
0: एग्जैक्टली
1: संकल्प,
0: तो इसके बहुत
1: तो
0: सारे
1: इसमें कितने
0: डिपार्टमेंट है,
1: सारे लोग, कितने सारे यूथ कनेक्टेड हैं?
0: इसमें बहुत सारे यूथ कनेक्टेड हैं। हम नॉट ओनली इन दिल्ली बट वी आर ऑल्सो इन आउट ऑफ दिल्ली, बहुत सारी हमारी रीच है। एंड इनफैक्ट हमारा, हमने इतना अच्छा इंटरव्यू भी किया था मेजर सतबीर सिंह का, जिन्होंने 1965 की बैटल लड़ी थी,
1: ओके
0: उनका इंटरव्यू हमने किया था, लास्ट ईयर की बात है।
1: हमने मतलब कितने लोगों ने कंडक्ट किया?
0: मैं हो गया, बहुत सारे थे मेरे बैचमेट थे और मेरे सीनियर्स भी थे, दुष्यंत सर हो गए, आदित्य सर हो गए, युवराज सर हो गए।
1: कितनी देर का रहा वो इंटरव्यू?
0: वो इंटरव्यू संकल्प के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है अभी, वो आधे घंटे तक का तो चला था, बहुत लंबी कहानी थी एंड उन्होंने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। आगे जाके अगर हमें संकल्प की बात करूँ, संकल्प के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशंस है, कंटेंट क्रिएशन है, ग्राफिक्स है, वीडियोग्राफी है, ये हर चीज़ डिफेंस से ही रिलेटेड हो डालते हैं, बट साथ ही साथ ये भी देखते हैं करंट डेवलपमेंट क्या चल रही है। रिसेंटली जैसे लास्ट ईयर की बात है, जब वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया था तो उस पर भी संकल्प ने पोस्ट डाली थी कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन, तो ऐसे ऐसे करके है। तो मैं तो खुद चाहूंगा कि युवा अगर सोशल मीडिया में भी एक्सेल करना चाहता है तो वो एनसीसी के थ्रू संकल्प में आ सकता है।
1: बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने जो करंट अफेयर्स, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको जानना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ आप किसी प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बने, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप अपने आंख नाक कान हमेशा खुले रखें एंड लॉजिक लगाएं। जो लॉजिकल रीजनिंग आपको एनसीसी में सिखाई जाती है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का ही हिस्सा है, और हमें ध्यान रखना है कि किसी तरीके से भी हम किसी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। तो फिलहाल एक गीत आपके लिए, समय हो गया है 4:52 और उसके बाद कोशिश करेंगे कुछ और बातें कर ली जाए।

0: ये तिरंगा शान से ऊंचाइयों को छूता रहे, यही हर भारतवासी की इच्छा होती है। और कहीं ना कहीं एनसीसी कैडेट्स हमारे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ कदम उठाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और अगर कोई अचानक से सिचुएशन आ जाए तो उस परिस्थिति में भी एनसीसी कैडेट्स अपनी योग्यता के हिसाब से काम करते हैं। तो ईशान, जाते जाते आपने इतना सब कुछ बताया एनसीसी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। आपको क्या लगता है जो चैलेंजेस आजकल के यूथ के सामने हैं, चाहे वो फिजिकली हों या मानसिक तौर पर भी हों, उनको देखते हुए और अपनी ट्रेनिंग को देखते हुए आप क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे हमारे देश के युवाओं के लिए?
1: मैं यही बोलूँगा, मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ करो, जानबूझ के नहीं, लेकिन जो भी गलती कर रहे हो उस गलती से सीखो, उस गलती को परखो। इट इज़ ओके टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, आई से दिस। एंड पता है, कंट्रीज लाइक भूटान, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डिसुप्स करके, वहाँ पे कंपलसरी है दैट यू हैव टू कम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व योर नेशन, बीट एनी फील्ड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, डिफेंस, एनी फील्ड, बट सर्व योर नेशन। सेवा परमो धर्म, दैट इज द मोटो फॉर इंडियन आर्मी।
0: और बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब हमारे देश में रहते हैं तो वो भारतीयता, वो देशभक्ति का जुनून हम सबके अंदर होना चाहिए।
1: Exactly.
0: तो ऑटोमेटिकली
1: Exactly.
0: हम जो भी करेंगे अपने देश की सेवा के लिए करेंगे।
1: बिल्कुल मैम, बिकॉज नॉट ऑल हीरो वेयर केप्स, यू कैन वेयर योर यूनिफॉर्म ऑल्सो एंड यू कैन नॉट इवन वेयर योर यूनिफॉर्म, बट यू आर अल्टीमेटली अ देशभक्त, यू आर अल्टीमेटली अ हीरो फॉर योर कंट्री, एंड सर्विंग योर कंट्री टू द फुलेस्ट इज एक्चुअली द राइटेस्ट ड्यूटी, वही तो धर्म है।
0: बहुत खूब ईशान, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने के लिए, और अपने जरिए अपने सभी जो युवा साथी हैं उन सबको एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ महत्वपूर्ण लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अपनी ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और अंत में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एमआर अर्जुन हरिहरन अमकास रूनन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सावन के इस मौसम में जो शाम होता है ना, यकीनन बहुत सुहाना है। और ऐसे में हमारा आपका साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर दिल से दिल तक प्रोग्राम सिटी लाइट्स के साथ मैं कंचन हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनों के साथ जुड़े होंगे FM रेनबो पर दिल से दिल तक।

जी हमारा आपका साथ पहली बार बिल्कुल नहीं, एफएम रेनबो आपके साथ हरदम रहता है और आप जुड़े होते हैं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। अब देखिए ना, आज सावन का सोमवार है, बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, उपवास किया होगा, तो ऐसे में अपना बहुत अधिक ध्यान रखिए। और वैसे आज दिल्ली का जो मौसम है ना, बहुत सुहाना भी है, थोड़ा सुहाना है, थोड़ा उमस भरा है, बदरा छाए हुए हैं और बीच में झमाझम बारिश भी हो रही है, तो बदरा और धूप मिलकर जो है ना लुका छुपी जो खेलते चले जा रहे हैं और ऐसे में हम और आप आनंद ले रहे हैं दिल्ली के इस मौसम का। तो एफएम रेनबो के साथ जुड़े रहिए दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स और मैं आपके साथ कंचन हूं। दोस्तों, आजकल घर परिवार में लोग पतंग उड़ाने का बहुत अधिक आनंद ले रहे हैं और खासकर पतंग उड़ाने को लेकर बच्चों में तो बहुत अधिक उत्साह भी होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पतंग

उड़ाने के दौरान बच्चे बहुत अधिक दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, इसलिए बच्चे जब भी पतंग उड़ाएं तो घर के बड़े उनके साथ ज़रूर रहें। हो सकता है आपके पास समय ना हो, लेकिन बच्चों को पतंग उड़ाते समय बिल्कुल भी अकेले ना छोड़ें, क्योंकि कई बार होता है कि पतंग लूटने के लिए बच्चे किसी रेलिंग पर चढ़ जाते हैं या पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो पतंग उड़ाने के दौरान बहुत ज़्यादा बच्चे उत्साहित भी होते हैं, तो इसलिए किसी भी खतरे की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। तो पतंग उड़ाने के दौरान हर सावधानी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बच्चे सुरक्षित तरीके से आनंद ले पाएंगे पतंग उड़ाने का। और जब बच्चे सेफ रहेंगे तो हमारे आशियाने में, हमारे घरौंदे में खुशियां जो है ना वो गुनगुनाती रहेंगी। प्रोग्राम चल रहा है सैटेलाइट्स, मैं आपके साथ कंचन हूँ।

जी, सावधानी बहुत ज़रूरी है, चाहे पतंग उड़ाने में हो चाहे ड्राइव करते समय हो। वैसे अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट के हवा से बातें करते हैं या बिना सीट बेल्ट बांधे हुए कार ड्राइव करते हैं या फिर बिना इंडिकेटर दिए हुए लेन चेंज करते हैं या फिर मुड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस जो है ना, वो उनका ख़ास इंतज़ाम है, स्मार्ट कैमरा लगे रहेंगे और सीधे अगर आपने कोई भी गलती की तो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर जो चालान है वो आ जाएगा और आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और सोचिए ज़रा, अगर हम लापरवाही से ड्राइव करते हैं तो वो कितना नुकसान हमारे लिए है। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, इसलिए आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके हाथ में है, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम अपने परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा समय दे सकते हैं। तो बिल्कुल सुरक्षित चलें, सावधानी से चलें, सारे नियमों का पालन करें तो कितना अच्छा है। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

मौसम इतना अच्छा हो रहा हो तो जी करता है ना कि जाएं कहीं बाहर, जाएं घूमने के लिए, जी भर कर शॉपिंग करें। और मौसम है पर्व त्योहार का। आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस के बाद ही जैसे पर्वों की झड़ी लग जाती है, राखी है, उसके बाद ये गणेश चतुर्थी है, और उसके बाद तो मत पूछिए, इतने सारे त्यौहार हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और फिर छठ पूजा, यानी पूरे साल जो है ना त्योहारों की झड़ी लगी रहती है। तो ऐसे में कहाँ पर शॉपिंग करें ये सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर मार्केट में जो है ना बहुत रौनक बनी हुई है। वैसे दिल्ली के जनपथ में है हैंडलूम हाट, और इस 15 अगस्त को यानी आज़ादी पर्व वाले दिन हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, और अभी यहाँ ट्रेडिशनल बुनाई कला और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एग्जीबिशन और प्रोग्राम्स चल रहे हैं। 24 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। वीव द फ्यूचर एग्जीबिशन जो है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक आम जनता के लिए खुला हुआ है। और त्योहारों का मौसम है तो आप यहाँ पर जाइए, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, ताकि जो बच्चे हैं ना वो भी देख सकें कि हमारी बुनाई कला जो है वो कितनी समृद्ध है। वहाँ पर जाकर आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं, तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी शाम का प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स में, आपके साथ कंचन।

चलकर हजरत निजामुद्दीन आएगी और गाड़ी संख्या 04124 हजरत निजामुद्दीन से हर सोमवार और गुरुवार को चलकर प्रयागराज जाएगी। 31 अगस्त तक ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, तो आप आसानी से जा सकते हैं अपने घर अपने गांव। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

वो धड़कता है कि कैसे सड़क को पार करें। तो एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में सड़क पार करने वालों की सहूलियत के लिए फुटओवर ब्रिज और स्काई वॉक बनने की योजना है। जीटी रोड पर वेलकम एरिया में फुटओवर ब्रिज और विकास मार्ग पर निर्माण विहार लालबत्ती के पास स्काई वॉक बनेगा। इससे सड़क पार करने में कितनी सहूलियत होगी, है ना। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स के बाद 6 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आप अपने अपनों को प्यारे प्यारे मैसेज भेज सकते हैं, और इस प्रोग्राम में आपका साथ देंगे हमारे दोस्त प्रवीण शर्मा। जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

दोस्तों, क्या आपको भी सड़क पार करते हुए डर लगता है? लगता है ना डर बहुत, अगर व्यस्त सड़क हो तो डर लगता है। बिल्कुल, ये जो दिल है ना

जी, जिंदगी में सब कुछ फर्स्ट क्लास रहे तो कितना आनंद होगा। वैसे प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स की बात आप सुनेंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। प्रवीण आपके साथ होंगे। 7 बजे होगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम कंट्री कार्निवाल, और इसमें मनन ठकराल आपके साथ रहेंगे। 8 बजे म्यूजिक मस्ती में एक बार फिर से प्रवीण शर्मा आपके साथ होंगे, और सीमा चौधरी रहेंगी प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी सीमा चौधरी रहेंगी आपकी याद आती रही में रहे में 9 बजे, और 10 बजे हो मनन ठकराल एक बार फिर से वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, और सीमा चौधरी एक बार फिर आपके साथ रहेंगी रंगे महफिल में 11 बजे। मैं कंचन लेती हूँ आपसे विदा। जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ। अपने बुजुर्गों का बहुत अधिक ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत अधिक ख्याल रखिए, और जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ दिल से दिल तक। दीजिए विदा मुझे। नमस्कार।

लीजिए प्रस्तुत है अब तक के एफएम रेन में मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारी की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ महत्वपूर्ण लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और

मल्टीप्लेक्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की है। इसका उद्देश्य सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस जारी करने और जांच की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा तय समय के भीतर पूरा करना है। भारत ने अपनी ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड में जेपीएस सीजेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देशवासियों को नागपंचमी की शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पर्व लोगों को प्रकृति, आस्था और संतुलन का संदेश देता है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एमआर अर्जुन हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो के समाचार। इंतजार कीजिए अगले प्रोग्राम का।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मन पसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और आज ट्रिपल एम यानी कि मैसेज मसाला मिक्स के साथ स्टूडियो में मौजूद आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, और वो ये दोस्तों कि आपको आज हमें ये बताना है कि क्या आपको अपनी खोई हुई वस्तु, खोई हुई चीज क्या दोबारा वापस मिली है? अगर हाँ तो वो वस्तु, वो चीज क्या थी और वो आपको कैसे वापस मिली? तो आज आपको हमें ये बताना है दोस्तों। आप अपना उत्तर हमें व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं, हमारा नंबर है, नोट करें, हमारा नंबर है 9681070 9868107070। और सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

एक बार पुनः आपका दोस्तों हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। ये हमारे हमें नमस्कार कह रहे हैं प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से, स्वागत है आपका प्रदीप जी।

अगला सतीश हमें मिला है अंशी शर्मा का। अंशी शर्मा जुड़ गई हमारे साथ हस्तनापुर मेरठ यूपी से। अंशी जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये कह रही है कि आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूंगी कि जब बात किसी चीजों की खो जाने की होती है तो और खो जाने के बाद मिलने की होती है तो मुझे कभी भी मेरी खोई हुई वस्तु वापस नहीं मिली है, खास

और जब मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं किसी यात्रा पर जा रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। भाई अंशु जी, ये तो बड़े दुख की बात है कि आपको अपनी खोई हुई वस्तु नहीं मिलती। होता है अक्सर, हमसे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी कई वस्तु ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी प्रिय होती हैं, बड़ी अजीज होती हैं, लेकिन अगर वो खो जाती है तो दुख तो जाहिर होगा ही, लेकिन वो नहीं मिलती है तो और ज़्यादा दुख होता है। और अगर वो खोकर मिल जाए ना, तो वो जो जो दुख है ना, वो समझो यूँ काफूर हो जाता है। यानी कि वो खुशी जो है हमें जो मिलती है ना, उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं अंशु जी, कोशिश करिएगा कि आपकी वो चीज़ खो ही ना। ध्यान रखिएगा अगली बार। बसंत कुमार ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ। बसंत कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग पूरे रेनबो परिवार को, आपको भी शुभकामनाएं। ये हाँ, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो भैया आपको भी, आपके पूरे परिवार को, समस्त दोस्तों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और हमारे बहुत सारे श्रोता मंच जुड़ गए हैं हमारे साथ। ये हैं जिला मुरादाबाद ग्राम धोलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं भाई। कह रहे हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। रोज मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं, और प्रोग्राम में आप सबकी आवाज़ अच्छी लगती है। धन्यवाद, क्योंकि आप हैं, आप कह रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला संदेश हमें मिला है यशवंत आडमुटे का। आडमुटे ये हैं धाराशिव महाराष्ट्र से। यशवंत जी कह रहे हैं कि एक बार हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं खो गया था और हमारे एक मित्र ने हमारा मोबाइल फ़ोन हमें घर आकर दे दिया। क्या बात है! यानी कि आपके मित्र को पता था कि आपका मोबाइल फ़ोन जहां खोया है, और वो लगता है आपके साथ होंगे। और बिल्कुल इस बात की बेहद खुशी है हमें कि दोस्तों के आपका आपका जो मोबाइल फ़ोन आपको मिल गया। बहरहाल सुनते रहिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

दूसरे ब्रेक के बाद आपको पुनः एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप है इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स से खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं प्यारे प्यारे गीत हमारे साथ। तो करते हैं एक बार फिर से आपके संदेशों का सिलसिला। ये हमें संदेश मिला है गाजियाबाद से, भारत भूषण जी का। भारत भूषण जी कहते हैं कि मुझे मेरी खोई हुई कार दोबारा वापस मिल गई थी, 10 दिन बाद मेरी कार मुझे वापस मिली और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा सहयोग था। आपका धन्यवाद, आपका आप बहुत खुशकिस्मत हैं और यकीन मानिए बड़ी अच्छे बड़ी खुशी की बात है कि आपको आपकी कार दोबारा वापस मिली, बेशक 10 दिन बाद ही मिली, लेकिन आपका जो प्रयास है, पुलिस का प्रयास है, इसके लिए हम इसकी सराहना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं।

ये अगला संदेश हमें मिला है, ये इनका नाम है रवि जोशी मेरठ, ये मेरठ से इन्होंने संदेश भेजा है। ये कह रहे रवि जी कह रहे हैं कि एक बार मेरा जो है पर्स गुम हो गया था, लेकिन वो मुझे मिला या नहीं मिला उन्होंने लिखा नहीं है। भाई आपको मिला या नहीं मिला, ये मुझे हमें लगता है शायद आपको नहीं मिला इसलिए आपने लिखा नहीं, लेकिन यकीन मानिए बड़ा दुख होता है कुछ चीज़ अगर हमें नहीं मिलती वापस, और हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही आवश्यक होती है, तो हमें यकीन दुख होता है। शायद आप अगली बार जरूर लिख के भेजेंगे कि आपको मिला या नहीं मिला। अनिल शर्मा जी सरिता बिहार से जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी कह रहे हैं कि पुरानी खोई चीज़ डेबिट कार्ड घर में ही कहीं गुम गया था, आखिरकार एक हफ्ते बाद अलमारी की सफाई करते समय पैंट की जेब में ही मिल गया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो खुशी की बात है कि अनिल जी कि आपका जो डेबिट कार्ड था वो आपके घर में मिल गया, अगर कहीं और खोया होता तो शायद हो सकता ना मिला होता। बहरहाल इसके लिए बधाई, आपका प्रयास सफल रहा।

ये है विजेंद्र घाटोर अकोला महाराष्ट्र से। ये कह रहे हैं इनका भी एक बार शायद पर्स कह रहे हैं पर्स गिर गया था, उसमें मेरी फोटो थी और इस वजह से वो मुझे वापस मिल गया। यानी कि किसी परिचित को वो मिला होगा और वो फोटो जो थी आपकी उन्होंने पहचान ली और वो इसलिए आपको वो चीज़ आपके जो गुम हो गया था पर्स वो वापस मिल गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बताने के लिए कि आपको अभी आपकी खोई हुई चीज़ दोबारा वापस मिली। और आगे कह रहे हैं नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां नाग पंचमी की।

दीपा बिजनौर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपा जी कह रही हैं कि हमारे अच्छे विचार और हमारे व्यवहार से ही जो हमारी सोच अगर हमारी पॉजिटिव होती है तो उसकी वजह से हमारी हमें चीज़ मिल जाती है। यानी कि हमारी अगर हम अच्छी भावना रखें, इनका कहने का शायद तात्पर्य यह है कि अगर हम अच्छे विचार रखें, अपनी भावनाएँ रखें, तो खोई हुई चीज़ जो है वो हमारी वापस मिल जाती है। यानी इसमें परमपिता परमेश्वर यानी ईश्वर का हाथ होता है, बिल्कुल होता है। यकीन मानिए, अगर आप विश्वास करते हैं अपने इष्ट देव पर, अपने जिनको आप पूजते हैं, तो आपकी चीज़ वो ज़रूर आपको वापस करवा देते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। कहीं भी जाए दोस्तों, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद। सुनते रहिए मैसे मसाला मिक्स, आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम है फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। देहरादून से आलोक पवार और मिनी जुड़ गई हमारे साथ, कह रहे हैं कि शुभ संध्या। प्रवीण जी, आपको भी शुभ संध्या। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैंने आज तक अपनी कोई चीज नहीं खोई है। जागरूक रहते हैं हम, सफर के दौरान सतर्क रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी और मिनी जी। यकीनन अगर हम सतर्क रहें कहीं भी सफर के दौरान, कहीं भी जा रहे हों, और तो जरूर हम अपनी चीज को सुरक्षित रख सकते हैं। चीजों को बिल्कुल भी घूमने नहीं दे सकते, यानी कि घुमाने से उन्हें बचा

मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से जुड़ गए हैं। सरफराज साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। खोई हुई चीज का दर्द वही जानता है जो उसे दिल से अपना मानता है। मिल जाए तो खुशी बेइंतहा होती है और ना मिली तो उसकी याद उम्र भर रुलाती है। क्या बात है सरफराज साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां भेजी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। गुड इवनिंग कर रहे हैं हमें प्रमोद चिंचोलकर जी उमरी अकोला से, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ये कह रहे हैं प्रवीण जी, हमारा लाइसेंस एक बार गिर गया था मोटरसाइकिल का, वो गिरने के बाद भी हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमको नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ज़रूर दोबारा बनवा लिया होगा हमें विश्वास है, अगली बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। लूणाराम नागौर राजस्थान से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं मुझे मेरी बचपन में खोई हुई चीजें एक नए रूप में छोटे बच्चों को जो भी चीज लाकर देता हूं उनमें मिल जाती हैं। क्या बात है, यानी कि आप अपनी जो भी जो दुख हैं, जो जो भी आपके संकट हैं उन्हें भूल जाते हैं अगर आप बच्चों को कुछ ला कर देते हैं, उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कान लेके आ जाते हैं, मुस्कान ले आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब लूणाराम जी, आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतना सुंदर संदेश भेजा। यकीनन बच्चों की मुस्कान में भगवान बसते हैं कहते हैं, और आप अपने सारे दुख जो हैं, सारे दुख क्लेश भूल जाते हैं, सारे गम जो हैं भुला देते हैं बच्चों को देख कर, उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।

रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कह रहे हैं। रंजीत जी कह रहे हैं कि मेरा आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अक्सर खो जाता है, मेरे घर के सदस्य उसको उलट पुलट कर पता नहीं कहां कहां पहुंचा देते हैं, फिर मैं उसे खोजने बैठता हूं, बहुत मशक्कत के बाद वो मुझे मिल ही जाता है और जब मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। रंजीत जी आपकी बातों से हमें लगता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शायद घर पर ही खोते होंगे, तभी आपके सदस्य उन्हें ढूंढते हैं और आपके जो कहते हैं ना आप कुछ चीज़ जब भूल जाते हैं कहीं रख कर तो वो चीज़ ढूंढ कर आपको दे देते हैं और चेहरे पर आपकी मुस्कान ला देते हैं। क्या बात है। तो भाई आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने घर के सदस्यों का, सभी मेम्बर्स का। रंजीत जी धन्यवाद संदेश भेजने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए अपनी बातें।

सोनू बिजनौर से जुड़ गए हमारे साथ। सोनू जी कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जो भी वस्तु खो जाती है बड़ी किस्मत और भाग्य से मिलती है, और भाग्य हमारा तभी साथ देता है जब आपकी भावना अच्छी हो, आपकी सोच बेहतर हो, सोच अच्छी हो और हमेशा दूसरों के भले करने की इच्छा आपके मन में हो। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये ऐसा संदेश हमें कुछ देर पहले ही मिला था, उसमें भी यही बात थी। यकीनन अगर हम सच्ची भावना रखें, अच्छे विचार रखें, पॉजिटिव सोच रखें, तो हमारी चीज़ या तो खोएगी नहीं, अगर खो भी जाएगी तो कहीं ना कहीं से किसी की दुआओं का असर ऐसा होगा कि वो चीज़ हमें ढूंढकर कोई ना कोई शख्स हमें वापस लाकर दे ही देगा। बहरहाल सुनते रहिए मैसेज मसाले मिक्स, क्योंकि हम जा रहे हैं और एक छोटे से गीत के बाद दोबारा लौट कर आ रहे हैं।

0: दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, हमारे सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, मैं सुनाजा मिक्स कहीं जाइए, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम है फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। अगला संदेश में मिला है हीरामणि वर्मा का दतरेंगी भाटीपाड़ा छत्तीसगढ़ से। ये कह रहे हैं कार्यक्रम से अभी भी जुड़ा हूँ सर, आज थोड़ा विलंब हो गया है, टॉपिक सुन नहीं पाया, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ जो कभी खो गई हो और आपको दोबारा वापस मिल गई हो तो वो चीज़ क्या थी और कैसे वापस आपको मिली, ये आपको हमें बताना है। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर तो जानते हैं, नंबर एक बार फिर नोट करें 9868107070। जी हाँ, 9868107070। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। भेरूलाल जी कह रहे हैं कि किसी की खोई हुई वस्तु के पुनः मिलने पर हमें अपार खुशी होती है। जब हमें कोई वस्तु मिल जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं, भले ही उस चीज़ की कीमत कुछ भी हो पर एक अपनापन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं। पूरा मुखी परिवार हमारे से जुड़ गया है। ये कह रहे हैं कि प्रवीण जी आपको नमस्कार, आपको भी नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे हैं हम, हमारा तो बचपन खो गया है, ये ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं मिलता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कह रहे हैं आपके आपके जीवन, आपका जीवन शुभ हो, शुभ संध्या, आपको भी धन्यवाद। यकीनन सही कहा आपने भाई, देखो कहते हैं ना उम्र जो है कभी लौट कर वापस नहीं आती, उम्र का जो दौर हम बीत जाता है यानी जो पीछे छूट जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उनकी यादें जो है वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, यानी यादें कभी ख़त्म नहीं होती, हमारे जहन का हिस्सा बन जाती है, हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं समा जाती हैं, किसी भी रूप में जुड़ जाती है हमारे साथ। अगर कभी हम चाहें ना उनमें खोना तो हम खो भी सकते हैं। अकेलेपन जब हम अकेले होते हैं ना, बैठे होते हैं कहीं, तो उस तन्हाई में हम उन यादों में अक्सर खो जाया करते हैं। तो यकीन सच का आपने कि बचपन जो है वो ऐसी चीज़ है जो कभी भी लौट कर नहीं आती, लेकिन बचपन की खूबसूरत जो यादें होती हैं ना वो तो हमारे पास रहती ही हैं, है कि नहीं। प्रदीप जी जुड़ गए हैं जनकपुरी से, कह रहे हैं कि एक बार मेरे बहुत सारे पैसे कहीं गिर गए थे तो बहुत दुख हुआ था मुझे, और वो मेरे गिरे पैसे मुझे मिल भी गए, लेकिन जिसके पैसे गिरे थे तो मैंने उसे वापस कर दिया, यानी कि पैसे अच्छा किसी के दोस्त के आपके गिरे थे और मैंने यही सोचा कि किस्मत में होगा तो किसी दूसरे रूप में मुझे मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। यानी इनका कहने का शायद अर्थ ये है कि इनके पैसे खो गए थे उनको नहीं मिले, लेकिन किसी और के पैसे इनको कहीं मिल गए थे, जो जहाँ मिले थे उसमें शायद उनका पता भी होगा, तभी आपने वो पैसे उन्हें वापस कर दिए। प्रदीप जी यकीन मानिए, कभी कभी हम जब हम बहुत ही मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कोई हमें चीज़ जो होती है वो कहीं अगर खो जाती है और कभी हम उसे लौटा दें ना जिसकी खोई है चीज़, तो यकीनन जो अंदर से दुआ निकलती है ना, बस उसका असर मत पूछिए, वो कहीं ना कहीं हमारे ज़रूर का काम आता है ज़िंदगी में। तो आपने एक भले का भला काम किया, तो यकीन मानिए प्रदीप जी आपका भी कभी ना कभी भला ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं किसी रूप में। दोस्तों कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे गीत के बाद, सुनते रहिए प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स, हम हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से गीत के बाद।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों ब्रेक के बाद अपना आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अगला संदेश में मिला है सनी कपूर का जर्मनी से। सनी कपूर जी आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप इतने दूर से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और यकीन मानिए हमारा प्रोग्राम बहुत सारे हमारे श्रोता जो है दूर दूर से संदेश भेजते हैं। यकीनन हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें हमारे प्रोग्राम सुनते हैं दिल से, शिद्दत से सुनते हैं। अच्छा सनी जी कह रहे हैं कि कैसे हैं आप, हम तो अच्छे हैं। कह रहे हैं एक बार हम मेरे $1100 शायद कहीं गिर गए थे सड़क पर और वो मुझे वापस मिल गए। जब मैंने जाके देखा तो कुछ लोग मेरे पैसे उठा रहे थे, तो क्या कहते हैं वो कुछ भले मानस थे, भले लोग थे, और उन्होंने मैंने जब कहा कि मेरे पैसे हैं तो उन्होंने मुझे वापस लौटा दिए। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। सनी जी धन्यवाद आपको भी संदेश भेजने के लिए। और यकीन मानिए इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, वाकई अच्छे लोग हैं, जो जब हमें कोई ऐसा कोई हमारे से कोई ऐसा हादसा होता है ना, जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है और कुछ लोग दे देते हैं, तो यकीन मानिए हमारे दिल में विश्वास जाग जाता है कि हाँ सचमुच हमें हमारी चीज़ वापस मिल गई। तो कहीं ना कहीं हम भी उसी तरफ चल पड़ते हैं, यानी कि हमें भी कुछ चीज़ मिलती है तो हम उसको इग्नोर नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जिसकी गिरी है या जिसकी गुम हुई है वो वहाँ तक पहुँच जाए। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इस फाइल में, इस किताब में उनका पता है या फ़ोन नंबर है। हम उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, हम उनके घर तक पहुँचा के आते हैं कभी कोई चीज़। तो यकीन मानिए उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखते हैं ना, सामने वाले के चेहरे पर, बस उसको शायद हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, आपने इतना खूबसूरत संदेश भेजा और अपने अपने जो है जज्बात शेयर किए। धन्यवाद।

वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने हमारा संदेश शामिल किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं इनको। धन्यवाद विजेंद्र जी, ये तो हमारा फर्ज है आपके संदेश हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते हैं अगला संदेश किसका है।

मीरापुर गांव भूमा से आर्यन ने संदेश भेजा है। आर्यन कह रहे हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक बार बस में ट्रेवल कर रहा था तो मेरे हाथ में एक टॉय एरोप्लेन था, एक खिलौना था, उसे मैं हाथ में लेकर सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मेरे हाथ में एरोप्लेन नहीं था, यानी मेरा खिलौना नहीं था। मैं बस रोने लगा, लेकिन मुझे आज तक मेरा एरोप्लेन नहीं मिला। भाई देखिए, बचपन की यादें हैं ना, ये वाकई में बड़ी अच्छी होती हैं। बचपन में हम पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शीशा जो होता है उसमें चेहरा कोई दिखाई देता है रात में, तो हमें लगता है कोई हमें झांक रहा है, कोई देख रहा है, हम डर जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ऐसा बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हमारे साथ जो हमें रह रहकर याद आती हैं। कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है कि नहीं। कहीं में जाइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती।

0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एक बार पुनः दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। ये संदेश में मिला है भुवनेश का, अशोक विहार दिल्ली से। भुवनेश जी कह रहे हैं कि ऐसा मेरी जिंदगी में शायद कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरी कोई चीज़ खो गई हो, क्योंकि मैं हमेशा अपनी चीज़ का ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल भुवनेश जी, क्या बात है। यकीनन आप जैसे सभी लोग बनने चाहिए, हमें तो यही चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपनी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वो खो ही ना। सभी को गुड इवनिंग। ये है नीता अमरावती से। नीता जी कह रही हैं टॉपिक तो मस्त है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है इस टॉपिक से सब कोई हुए सोच विचार फिर वहाँ से ताज़ा हो जाते हैं, यानी कि जो विचार है हमारे जहन में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गई, जैसे ही इनका फ़ोन आया मैं वहाँ चली गई और मेरे पास घर की चाबी थी। मैंने अपना जो था चश्मा वो पर्स में रख लिया, दूसरे दिन बाहर जाना था तो मुझे चश्मा नहीं मिल रहा था। मुझे याद आया कि मेरा चश्मा उसके घर में है, मेरे दोस्त के घर में है, लेकिन उसके घर में भी नहीं था। तो चश्मा मैंने अपने पर्स में रखा था लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। और अगले दिन मैं मार्केट जाने के लिए अपना चश्मा ढूंढ रही थी। वैसे जैसे मैं कार में बैठी तो मुझे मैंने देखा कि मेरा चश्मा जो है मतलब मेरे पास ही है। ऐसा कह रहे हैं बहुत बार ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही कहा, यानी कि इनको लगा कहीं छूट गया लेकिन वो इनके पास ही मिला। ऐसा होता है दोस्तों, कोई चीज़ ऐसी होती है हम चाहते हैं, हमें लगता है कि कहीं छूट गई हो लेकिन वो हमारे पर्स में ही मिलती है हमें, या फिर हमारे घर में ही मिल जाती है। ऐसा हमें होता है ज़िंदगी में, कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। धन्यवाद नीता जी, आपने अपना किस्सा हमसे शेयर किया, इसके लिए शुक्रिया। जावेद आलम मोहम्मद जायन रुखसा, ये हैं जावेद जी, कह रहे हैं राजस्थान जयपुर से। कह रहे हैं कि भाई मेरी जैकेट एक बार कहीं खो गई थी जो मुझे नहीं मिली, इसके लिए मुझे दुख है। और कह रहे हैं शायद उम्मीद भी नहीं है कि वो मिले। भाई यकीनन अगर वो काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी वक्त अगर गुजर गया है तो उसके मिलने की उम्मीद जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, बशर्ते कहीं वो ऐसी जगह खो गई हो जहाँ आपका कहीं गए हो, यानी आपके दोस्त का घर हो या कोई ऐसी कोई रेस्टोरेंट हो, कोई ऐसा होटल हो जहाँ आप गए हो, जहाँ आप अक्सर जाते हो, और वहाँ अगर आपकी छूट गई तो शायद वो आपको मिल सकती थी। रवि जोशी मेरठ से कह रहे हैं, रवि जी कह रहे हैं एक बार मेरा जो था पर्स जो था वो ई रिक्शा में कहीं रह गया था। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया और किसी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे उस किसी जगह बुलाया तो वो ई रिक्शा का ड्राइवर था जिसने मेरा पर्स जो था मुझे वापस लौटा दिया, संभाल कर रखा था उसने। वो आज भी मतलब मुझे जो याद करता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है और मुझे यकीन हो गया कि आज भी ऐसे ईमानदार लोग हैं। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं, यकीन मानिए अगर आप खुद अच्छे हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए अच्छी बन जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

कस्बे गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा सुन रहे हैं हमें। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ें, लेकिन अब वक्त हमें और बातें करने की इजाजत आपसे नहीं दे रहा है। फिलहाल आपसे इतना जरूर कहें कि रात 8 बजे आपसे फिर भेंट होगी। प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती, इसमें आप और हम मिलकर करेंगे इस डांसिंग फ्लोर पर डांस, यानी बहुत ही प्यारे प्यारे गीत होंगे आपके लिए। फिलहाल मैसेज मिसाल मिक्स से प्रवीण शर्मा को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप।

लीजिए प्रस्तुत है अब तक के एफएम रेनबो के समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में नवीन दायित्व ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ महत्वपूर्ण लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की है। इसका उद्देश्य सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस जारी करने और जांच की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा तय सीमा के भीतर पूरा करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज राष्ट्रीय रेटिना कौशल विकास केंद्र में मॉड्यूलेटेड रेटिना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये अपनी तरह की पहली सुविधा है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रेटिना संबंधी देखभाल में नैदानिक क्षमताओं को मजबूत करना है। भारत ने अपनी ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी।

झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एमआर अर्जुन हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। इंतजार कीजिए म्यूजिक मस्ती का।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया आपके अपने मस्ती भरे प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती, और आज आपका दोस्त म्यूजिक मस्ती में आपके साथ है प्रवीण शर्मा।

0: दोस्तों आप इस वक्त म्यूजिक मस्ती की हसीना और खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ कहीं में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे चंद्राल के बाद।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ब्रेक के बाद अपना आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त म्यूजिक मस्ती के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं मस्ती भरे गीत। तो करते रहिए हमारे साथ इस डांसिंग फ्लोर पर डांस।

0: बदली स्टाइल गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: लचक जब कमरिया हसारा जिला हिल मो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी FM रेनबो पर। दोस्तों यूं ही मस्ती भरे गीतों का लेते रहे आनंद और करते रहे मजे डांस इस म्यूजिक मस्ती में।

और दोस्तों अब फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है म्यूजिक मस्ती से इजाजत, आपसे फिर होगी भेंट आप, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, क्योंकि अगले प्रोग्राम को लेकर आ रही हैं सीमा चौधरी। तो आप कीजिएगा सीमा का स्वागत जो लेकर आ रही है प्रोग्राम आपकी याद आती रही। तो फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए अगली मुलाकात तक इजाजत, नमस्कार, शुभरात्रि।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में नवीन दायित्व ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल ने आज काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज राष्ट्रीय रेटिना कौशल विकास केंद्र में मॉड्यूलेटेड रेटिना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश की आजादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक पेश की। लगभग 2 लाख लोगों ने परेड में हिस्सा लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एमआर अर्जुन हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। तो ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दिल की यादों के झरोखों से कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। बस उन्हें दिल से महसूस कर सकते हैं और आंखें उन्हें बयां कर देती हैं। लेकिन जब पहली बार किसी का ख्याल दिल में ठहरता है तो हर मौसम खूबसूरत लगने लगता है, हर इंतजार मीठा लगता है और हर धड़कन जैसे किसी का नाम लेने लगती है। जी हाँ, शायद यही होता है पहला प्यार, जिसमें नशा भी है, खुमार भी है और एक खूबसूरत सा इंतजार भी है। यादों का कारवां लेकर आपकी याद आती रही, आपकी साथी है आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सीमा के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। होंगी दिल की बात और सुनवाएंगे वो गीत जो खुद आपके दिल के होंगे बेहद करीब।

याद से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

तुम्हारी चाहत का अंदाज भी कमाल है, कहते कुछ नहीं मगर सब कुछ कह जाते हो। कुछ इस तरह से

0: जी हाँ, कुछ स्पेशल फील करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़। ये वो मैजिकल नंबर है जिस पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके साथ और साथ साथ इस सफर में हम सफर बनकर चले चले जा रहे हैं। और अगर सुनना चाहते हैं वो गीत जो आपको कुछ याद दिला दे पुराना, तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक 102.6 दिल्ली एनसीआर में इस फ्रिक्वेंसी के साथ। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाना। लेकिन इससे पहले यहाँ पर लेंगे टिनी विनी सा ब्रेक, वापस लौटेंगे बहुत जल्दी, जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम तेरे बिन रह नहीं पाते, जी हाँ यही हाल है कुछ हमारे दिल का। क्या कहे, तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, क्योंकि आपके दिल की बात हम तक पहुंच रही है और जो बात आपके दिल की हम तक पहुंच रही है उसी पर आपको सुनवा रहे हैं गीत। यानी कि कुछ ये बात है, कुछ रिश्ते आदत नहीं जिंदगी बन जाते हैं, और तुम वो हो जिसके बिना हम खुद में भी अधूरे रह जाते हैं। तुमसे मिलकर ही तो मुकम्मल हुई मेरी कहानी, तुम बिन ये दिल भी अपना सा नहीं लगता।
3: नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते।
0: यही है कुछ दिल का हाल।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
4: आपकी याद आती रही मेरी यानी आपकी होस्ट और आपके दोस्त सीमा के साथ। आपके संदेश हमें मिल रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, आपके दिल के बाद यहाँ तक, क्योंकि प्रोग्राम दिल से दिल तक आपकी याद आती रही। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपके ये मैसेज हमें कहीं ना कहीं हमारी हौसला अफजाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमें स्फूर्ति से लबरेज भी करते हैं, और वे इसलिए हम दौड़े दौड़े चले आते हैं आपके लिए। बहरहाल घी वाला गाना आपके लिए प्ले किया, एंजॉय कीजिए इसे। सच में यादों के कारवां की बात करें तो ये बहुत ही स्पेशल फील आपको हराने वाला है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपकी याद आती रहे वे दर्जे सीमा। दिल ये है, दिल वो है, दिल जाने क्या क्या है। सोच लीजिए आप भी कि दिल को कितने सारी उपमाएं दी गई हैं। अगर बात अगर शायरी की हो तो भी, और अगर बात किसी आम आदमी की तो भी, क्या क्या वो कहता है दिल को, सोचिए सोचिए। बहरहाल इतने यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस लौटेंगे बहुत जल्दी। तब तक सोचते रहिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, हम बात कर रहे थे अभी दिल की। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल जाने क्या क्या है, दिल तो बच्चा है जी। इतनी सारी बातें दिल को लेकर, बेचारा दिल खरे तो क्या करे। दिल भी कितना अजीब है, जिसे अपना मान ले उसी के लिए हर धड़कन बेचैन हो जाती है। दिल को समझाया पर ये मान

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अभी मैं कहूँ कभी तुम कुछ कहो, और बातों बातों में ये शाम मोहब्बत के नाम हो जाए। कुछ तुम दिल के कह देना, कुछ हम आँखों से पढ़ लेंगे, क्योंकि खूबसूरत रिश्ते अक्सर शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं।

9:55 जी, अब बता दें आपको कि आगे क्या है आपके लिए खास। बस अब से कुछ ही देर में यानी कि 10 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 10:02 का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का। मनन ठकराल होंगे आपके साथ और रात 11:02 पर रंगी महफिल लेकर फिर आपके साथ मैं रहूंगी सीमा चौधरी। चेहरा क्या देखते हो जरा आंखों में झांक कर तो देखो, इन आंखों में छुपी मोहब्बत शायद चेहरे से भी ज्यादा हो। जी हाँ, ये जो हमारी मैडम टिक टिक है ना स्टूडियो की, ये कह रही है कि इस खूबसूरत सफर से विदा लेने का समय भी आ गया है। तो अब से कुछ समय बाद रंगी महफिल में फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत सीमा को, तब तक मिलते हैं रंगी महफिल में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ लेट मी रिमाइंड यू, यू आर लिसनिंग टू रेनबो शोकेस ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ विद मी मनन ठकराल। एंड इफ यू हैव ट्यून इन, वेलकम टू द शो। एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, दैट्स 9868107070। एंड यस, फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड पॉप एंड सोल ऑफ जॉर्ज माइकल वी नाउ मूव टू अ वॉइस that has become synonymous with power, emotions and extraordinary vocal range. Yes, it's time for the transition of the artist. We're going to talk about the second artist of the show, and she began singing professionally as a child in Quebec. She went on to perform before audiences around the world, singing in multiple languages, dominate international charts and became one of the best-selling female artists in music history. Think. Keep thinking. I'll leave you with this question mark. Meanwhile, you enjoy her, this very famous and globally accepted track. On the other side, we'll talk about her.

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रूपये के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद पाउडेल ने काठमांडू में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वह होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी। भारत को 178 रन की बढ़त। जापान में अगले महीने की 19 तारीख से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया है। तो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: તમારી વાણી આકાશવાણી.
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर समय है रंगी महफिल का. रंगी महफिल में आपके सफर के हम सफर में सीमा.

बात करेंगे कुछ महफिलें जो सिर्फ सजती नहीं दिलों में उतर जाती हैं, कुछ नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते यादों में बस जाते हैं। तो आइए इसी महफिल में रंग भरते हैं, रंग मोहब्बत के, संगीत के, यादों के और उन खूबसूरत एहसासों के जो दिल को छू जाए। स्वागत है आप सभी का रंगे महफिल के सुरीले सफर में, आपकी हम सफर सीमा के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आंखें दिल का आईना होती हैं, बिना कुछ कहे ही सारी बात कह जाती हैं। इन आंखों की मस्ती ने ऐसा किया असर, हमने देखा उन्हें और खुद को ही भूल गए।

आंखें कई बार बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देती हैं, बता देती हैं क्या चल रहा है आपके दिल में, क्या है हालात इस दिल के। लेकिन जब दिल के हालात होठों से छूकर गीत के रूप में निकलते हैं तो सीधा दिल में उतरते हैं, और जब दिल में उतरते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत बन जाता है और हर एहसास अमर हो जाता है। होठों से छुआ तो नख्मा बन गया हर एहसास, मोहब्बत ने छेड़ दी दिल में एक मीठी सी प्यास।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: सुरों से सजी महफिल में आप सुन रहे हैं रंगी महफिल, आपके सफ़र की हम सफ़र सीमा के साथ हो रही हैं दिल के बात और सुन रहे हैं वो गज़ल जो कहीं ना कहीं आपके बीते हुए लम्हों को फिर से दोहरा देती हैं। दिमाग में जहन में बहुत कुछ याद आने लग रहा है क्योंकि इस रात में तन्हाई होती है, खामोशी होती है, एक सुकून होता है और यही वो लम्हे होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए समय देते हैं, अपने कुछ पुरानी यादों को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं और जब छिड़ती है बात तो बात होती है रात की, बात की, फूलों की। तो क्यों ना आज उन खूबसूरत यादों को भी अपनी इस महफिल में हम सजा लें जहाँ हर खुशबू में मोहब्बत, हर पल में एक कहानी और हर गीत में एक दिल की बात है। रात फूलों की थी, खुशबू का नशा छाया था, याद तेरी आई तो फिर दिल ने एक गीत गाया और वो गीत कहीं ना कहीं जो अपने दिल की कहानी कहेगा कहीं। और यकीन मानिए जब हम इन गज़लों को कभी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद लिखने वाले ने, शायर ने हमारी ज़िंदगी की ये पूरी कहानी लिख दी जो हमारे साथ बीता, जो हमारे साथ वाक्य बीता, हो बहो कुछ इस तरह से इस गज़ल में है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी से गज़ल को जो बात कहती है रात की, जो बात छिड़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी सुनेंगे आप।
1: हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें,

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रागी महफिल, आपके सफर के हम सफर सीमा के साथ। शुरू से सजाइए सफर, एंजॉय कर रहे होंगे आप, उम्मीद है। दिखाई दिए यूं जैसे खामोश रात में चांद तराया हो, नजरें मिली तो लगा कोई रूहानी सा एहसास दिल को छूकर गुजर गया। तेरी एक झलक ने रूह तक को रोशन कर दिया। आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक 102.6 MHz पर दिल्ली और NCR में आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर हम आपके साथ लगातार बने हुए। ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। सुनने के लिए और एंजॉय करने के लिए बस ट्यून इन करिए आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक।

करें, कुछ बातों की कुछ दिल में आस होती है, कुछ फरियाद होती है। कोई फरियाद दिल में दबाकर रखना भी अजीब है। लब लब खामोश रहे मगर आंखें हर राज बयां करते हैं। कभी कभी जिसे हम पुकार नहीं पाते वही तो हमारी सबसे गहरी फरियाद बन जाती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? कोई याद, कोई बात, कोई फरियाद बन गई हो? वैसे तो शायद ही कोई ऐसे हो जिनके साथ ऐसा हुआ ना हुआ हो कि मतलब कोई बात हम जो चाहते हों और वो ना हो पाई हो। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा होता है और ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन वो हो बेशक ना पाए लेकिन ताउम्र उसके ना होने की कसक हमारे साथ रहती है। लबों पर खामोशी, आँखों में इंतज़ार रहा, जिसे कह ना सके हम वही वही तो दिल की फरियाद रहा, और फरियाद रहा ताउम्र रहा। बहरहाल ये वाला गाना, ये वाली गज़ल आपके लिए जगजीत सिंह जी के सुरीली आवाज़ में।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 12 बजने जा रहे हैं। लीजिए, अब आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हार्मूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 12:02 और 8 सेकंड्स। और लीजिए श्रोताओं, आपका इंतजार खत्म। आपके लिए लेकर आए हैं जीरो आर शो। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बताइए साथियों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहिए आप, और एंजॉय कीजिए इन गीतों को।

0: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम जीरो आर शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपको छोड़े जाती हूँ उस गीत के साथ, और एक बजे आपके साथ होंगी प्रीति कमल। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

तो श्रोताओं, समय हो गया है 1:04 और ये वक्त है मुख्य समाचार का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत

लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में हो रही बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शी यू की को हरा दिया। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: तो आइए श्रोताओं, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम सुहानी रात का। मैं हूं आपके साथ प्रीति, और आइए पहला गीत सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात, और इस कार्यक्रम में मुझे यानी प्रीति कमल को दीजिए अनुमति। और आइए अब प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क

विकसित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल ने काठमांडू में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत की सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपेक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 2:03:12। लीजिए भाई, सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय।
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस गीत के साथ ये कार्यक्रम अब हम यहीं संपन्न करते हैं। 3 बजे श्रोताओं आपके बीच होंगी प्रीति। अलमास रजक को यानी मुझे अब अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 3 बज गए हैं रात्रि के और ये वक्त है मुख्य समाचार का। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघर से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल ने काठमांडू में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ

हुर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, रात के 3 बज चुके हैं और ये वक्त हो गया है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो शुरुआत करते हैं पहले गीत को सुनने से, जो कि है फिल्म बाजीगर से और आवाज है कुमार सानू की।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे।

कार्यक्रम मेलोडी मिडनाइट मेलोडीज में ये रहा आपका आखिरी गीत, और अब 4 बजे होंगे आपके साथ अलमास रजा।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, और लीजिए अब पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया। आज भी कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में हो रही बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के दुनिया के नंबर एक के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियुकी को हरा दिया। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:02:53। और लीजिए भाई, सुनते हैं कार्यक्रम सारे गामा।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जी हाँ साथियों, सलाम करने का वक्त तो हमारा भी आ चुका है। इस गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी कुछ ऐसे ही खूबसूरत गीतों को लेकर आपके समक्ष मैं हाजिर रहूँगी। तो अलमास रजा को दीजिए अनुमति, 5 बजे आपके साथ होंगी प्रीति। आप सभी श्रोताओं को

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 5 बज गए हैं। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। झारखंड सरकार ने 2024 की JSSC CGL परीक्षा और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पद अधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया। आज भी कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो वो हॉर्मूज जल डमरू में पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। नई दिल्ली में हो रही BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शी यू की हो को हरा दिया है। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: और आइए श्रोताओं, अब वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना का।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना 4:00 से 5:00 तक।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं।